सुप्रभात, हम विविध भारती के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तद अनुसार 17 जून सन 2026। सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के

0: महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.1 MHz पर सवेरे के 6:05 हुए हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और इसी कड़ी में पहला कार्यक्रम होगा भक्ति संगीत वंदनवार।

चिंतन, आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, झरोखा। सुनिए विविध भारती से दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लिखा जोखा। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, आज भाग 222। गज तत्वाद्य संगीत सरिता में चल रही है ये श्रृंखला। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। आज इस श्रृंखला की छठवीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर त्रिवेणी। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। अभिनेता मोतीलाल पर केंद्रित है आज के फनकार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम सुबह 9:30 पर और रात 9:30 पर सुना जा सकता है। सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में सुबह 10 बजे अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की बातचीत का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। दिन में 11 बजे रंग तरंग, 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल। दिन में 1 बजे सुरीला सफर, दिन में 2 बजे त्रिवेणी, 2:15 पर दोपहर समाचार। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे।

तीन बजे से की सहेली कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस, इस पर चर्चा, डायरी लिखने की आदत, साड़ियों का संसार, आज बांधनी साड़ी की बातें होंगी, शब्द हमारा विचार आपके, आज का शब्द है प्रोत्साहन। आज का कार्यक्रम ममता सिंह और मंजरी वर्मा के साथ, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम में अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत सुनवाई जाएगी। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम होगा, 7 बजे जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग, रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका मेनू कार्ड, मूल कहानी ओ हेनरी की है, रेडियो नाट्य रूपांतरकार मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद, 8:15 पर सुनिएगा चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम होगा, 9:30 पर अभिनेता मोतीलाल पर केंद्रित आज के फनकार, रात 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात्रि 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशलक्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशलक्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: गज तत्वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: श्रोताओं, आज हम गज से बजाए जाने वाले एक और वाद्य दिलरुबा पर बात करेंगे। इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुगल कालीन वाद्य है, किंतु मुगल कालीन वाद्यों में इस नाम का अथवा इसके स्वरूप से साम्य रखने वाला कोई वाद्य दिखाई नहीं देता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है, अतः स्पष्ट है कि इस वाद्य की रचना आधुनिक काल में ही की गई है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति का आधार सारंगी मानते हैं। सुविधा युक्त गज वाद्य की आवश्यकता होने के कारण इसका निर्माण किया गया। यह भी संभव है कि इसराज की मृदु ध्वनि को गंभीर बनाने की दृष्टि से इसराज में ही कुछ परिवर्तन किए गए हों, फलस्वरूप दिलरुबा वाद्य की उत्पत्ति हुई हो। इस संभावना को भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रचलित ताउस वाद्य के नीचे लगे मयूर वाले भाग को हटाकर उसके स्थान पर सारंगी का मंथान अर्थात नीचे वाला भाग लगाकर इसका निर्माण किया गया हो। उत्पत्ति का कारण जो भी रहा हो, किंतु यह सत्य है कि दिलरुबा वाद्य सितार और सारंगी का मिश्रित रूप है। दिलरुबा वाद्य तीन आकार में प्रचलित है। आकार के अनुसार ही कुंडी और दान का नाप रखा जाता है। दिलरुबा में 19 पर्दे होते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सरकाया भी जा सकता है। इसमें मुख्य चार तार होते हैं। कुछ दिलरुबा में 6 तार भी लगाए जाते हैं। इसमें 20 अथवा 22 तरबों को लगाया जाता है, जिन्हें राग के अनुसार मिलाते हैं। कुछ कलाकार तरबों को अचल थाट में रखते हैं। दिलरुबा के तार अलग अलग पद्धति से मिलाकर वादन करने का प्रचलन रहा है, फिर भी सामान्यतः इसके बाज के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम में, इसके बाद के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में, तत्पश्चात के पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में और अंतिम पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में मिलाते हैं। तरबो हेतु पीतल के तार प्रयुक्त करते हैं। ऊपर आड़ के पास तरब के 5 तार तथा शेष तरब के तार दान के बाजू में लगाने का प्रचलन है। कुछ कलाकार इसको घुटने पर रखकर या गोद में रखकर बजाते हैं। इसकी कुंडी वाला भाग नीचे रहता है। दाहिने हाथ में गज को पकड़ा जाता है। यह गज तारों पर घर्षण करते हैं। दान के पीछे की ओर बाएं हाथ का अंगूठा रखा जाता है और आगे की तरफ से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से कर्ण, खटका, मुरकी, गमक और घसीट के साथ विभिन्न स्वर निकाले जाते हैं। दिलरुबा के नाम से स्पष्ट है कि हृदय को मोहित करने वाला एक सुंदर, मधुर और आकर्षक वाद्य है, किंतु दुख की बात है कि अब इसका प्रचलन कम होते जा रहा है। अब इसे दुर्लभ वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है। लगभग 50 वर्षों पूर्व दिलरुबा पर पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड का साउंड बॉक्स व हॉर्न लगाकर तार शहनाई वाद्य की रचना की गई। अब हम श्री विनायक बोरा का तार शहनाई वादन सुनते हैं।

अभी आप श्री विनायक वोरा से तार शहनाई पर बजाया राग अहीर ललित सुन रहे थे। गज तत् वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी अंतिम कड़ी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए भूले बिस्तरे की।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: आइए सुने भूले बिसरे गीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आज मौसी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, कम सुना गाना। मौसी फिल्म का एक गाना आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, ये
1: टिम टिम टिम तारों के दीप जले, नीले आकाश तले।
0: लेकिन आज के कार्यक्रम का आगाज इस गाने से करते हैं, आशा भोसले की आवाज, भरत व्यास के बोल, संगीत वसंत देसाई का। ये फिल्म सन 1958 में आई थी।

पुलिस संगीत कार्यक्रम में अब प्रदीप जी की आवाज गूंजेगी। नागमणी फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: नागमणी फिल्म का ये गीत गीत और राय की आवाज में था। प्रदीप जी की आवाज वाला संस्करण फिर कभी आपको सुनवाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि इस गाने को कवि प्रदीप ने लिखा और संगीत अविनाश व्यास का था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवान जो शहीद हुए हैं, जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से भूले बिसरे की

फिर ये तड़प कैसे, इतना तो बता जाना। फिर ये तड़प कैसे, इतना तो बता जाना।

0: के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: फागुन फिल्म का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में था। कमर जलाल आबादी के बोल थे, संगीत ओपी नैयर का था। अब कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक की बारी है, ब्रेक के उस पार कुछ और गाने हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में पिया मिलन फिल्म का गीत अभी आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत रमेश का था। मोहम्मद रफी और गीता रॉय की आवाज में 12 o'clock फिल्म का गाना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तरह।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प है कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हजार रात फिल्म का गीत येसुदास और शारदा की आवाजों में था। गीत राजदीप का था और संगीतकार थी स्वयं शारदा। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं हम है राही प्यार के।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, माफ कीजिएगा, मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में आपने सुना फांसी फिल्म का ये गाना। अब कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी गाने होंगे।

0: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति

0: भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

0: कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजाद ए मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है FM बैंड 102.1 MHz पर। सवेरे के 8:15 हैं और इस समय आप सुना करते हैं आपका अपना पसंदीदा फिल्म संगीत। लीजिए साथियों, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं AR रहमान के संगीत निर्देशन में रखीब अलाम के लिखे हुए गाने के साथ। आवाज़ है मोहित चौहान की और फिल्म का नाम है पैडी। आइए ना आप और हम मिलकर सुनते हैं।

आपका पसंदीदा राजस्थानी भाषा को समर्पित कार्यक्रम मरुधरारा गीत सुनिए ना हर बुधवार सुबह 10 बजे जोधपुर के छोरे बलवीर के साथ ओनली ऑन FM सन सिटी। ये FM सन सिटी चैनल है, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और गाने वो प्ले होते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके सीने में धड़कते हैं। आइए बढ़ते हैं एक पायदान और आगे और अब हम आपको सुनवा रहे हैं देवी श्री प्रसाद के संगीत निर्देशन में एक बार फिर से रखीब अलाम का लिखा हुआ गाना। आवाज़ है जावेद अली की और फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज़।

तेरे प्यार में दिल चाहता है हम भीगे, बारिश हो ना हो पर दिल की गहराई से तेरे प्यार में हम भीगे। अरिजीत सिंह और निकिता खांदे की आवाज़ों में तू झूठी मैं मक्कार फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है।

साथियों, आपका और दूसरों का जीवन अमूल्य है, इसे दुर्घटना की भेंट ना चढ़ने दें। इसलिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। पैदल यात्री हमेशा लाल बत्ती जलने पर जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करें। जो यातायात के नियमों का मान करेंगे, सब उनका सम्मान करेंगे। ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर सवेरे के 8:30 हैं और इस समय आप सुना करते हैं आपका अपना पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम नमस्कार।

0: अभिनंदन, स्वागत, सुप्रभात, नमस्कार। दोस्तों, आपकी नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, दुखों की सारी बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियां यह नया दिन कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए।
1: बिल्कुल दोस्तों, दुनिया में हंसी और अच्छे स्वभाव से ज़्यादा संक्रामक और कुछ नहीं होता है, और दोनों ही निशुल्क है। तो हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखिए और स्वभाव में विनम्रता रखिए।

0: जाए, दुखों की सारी बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियां यह नया दिन कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए।
1: बिल्कुल दोस्तों, दुनिया में हंसी और अच्छे स्वभाव से ज़्यादा संक्रामक और कुछ नहीं होता है, और दोनों ही निशुल्क है। तो हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखिए और स्वभाव में विनम्रता रखिए, फिर देखिए जीवन कितना सुंदर लगता है। इसी सुंदर सी बात के साथ इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार का आगाज़ कर दिया है। सभी का स्वागत, अभिनंदन।

0: कार्यक्रम में दोस्तों मिलवाते हैं अब आपको नमस्कार की टीम से। नमस्कार की टीम में आज ट्रांसमीटर से साथ मिल रहा है चंद्राराम पटेल और प्रकाश पवार का।
1: कंट्रोल रूम में हमारा साथ दे रहे हैं इंजीनियर सुनील जयपाल।
0: और कांच के उस पार एचपीटी कंसोल पर उद्घोषिका है निशिका बुराना।
1: और एफएम पर कंसोल संभाल रहे हैं बलवीर सिंह।
0: और कार्यक्रम की प्रस्तुति है राजेश लामरोड की। और कार्यक्रम की होस्ट मैं चंद्रकला सुथार
1: और मैं मीता मुल्तानी।
0: दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में पहले गीत की ओर।

0: इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: दोस्तों, मुश्किलों से कभी डरना नहीं चाहिए। साहस रखें और उनसे निडरता से लड़ते रहो। कभी भी किसी में कोई कमी या कभी आपको कोई असफलता मिले तो आप निराश नहीं हो, बल्कि उत्साहपूर्वक उस असफलता से आगे बढ़ने का आप हौसला बनाए रखें। इसी पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ, जो आपको सिखाएगी कि कोई भी कमी या असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सही नजरिए से देखने पर वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मित्रों, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास पानी लाने के लिए दो बड़े घड़े थे। इनमें से एक घड़ा बिल्कुल सही था, लेकिन दूसरा घड़ा जो था ना, वो बीच में से थोड़ा सा फूटा हुआ था। जब किसान नदी से पानी भरकर घर लौटता तो सही घड़ा पूरा भरा रहता, लेकिन फूटे घड़े तक पहुंचते पहुंचते आधा पानी ही बचता था। ऐसा हर रोज होता। सही घड़े को इस बात पर बहुत घमंड था, जबकि फूटा घड़ा बहुत ही शर्मिंदा रहता था। एक दिन फूटे घड़े ने किसान से कहा, मैं बहुत लज्जित हूं, मेरी इस कमजोरी के कारण आपकी आधी मेहनत बेकार चली जाती है। किसान मुस्कुराया और बोला, कल जब हम नदी से लौटेंगे ना, तो रास्ते में देखना। फिर मित्रों, अगले दिन किसान ने फूटे घड़े से कहा, क्या कहा? ऐसे कि क्या तुमने ध्यान दिया? बोला घड़ा, नहीं तो? तो उन्होंने कहा, रास्ते के एक तरफ ही बहुत ही सुंदर फूल खिले हैं, मैंने उस तरफ फूलों के बीज बो दिए थे, और तुम्हारी कमजोरी से रिसने वाले पानी ने ही उन्हें सींचा, और आज देखो, तुम्हारी इस कमी ने इस रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया है। तो मित्रों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है, ये बताएगी आपको चंद्रकला जी।
1: बिल्कुल मीता, और इस कहानी से सीख तो यही मिलती है, हमें यही सुनकर पता चल रहा है कि दुनिया में कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता है ना। और

0: सब में कोई ना कोई कमी होती ही है
1: हाँ।
0: अपनी कमियों से निराश होने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाइए आपकी जो बात आपको कमजोर लगती है वही तो आपको भीड़ से अलग और खास बनाती है

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पतली प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
3: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यार।

0: मिता, क्या होता है ना, अक्सर हम कहते हैं कि आज मेरा मन ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है, याददाश्त है, जो भी साथ नहीं दे रही है. क्या है जिंदगी में, क्या होता है मिता, मिता की जिंदगी में भागदौड़ में अक्सर हम खुद को ही कहीं पीछे छोड़ आते हैं. हमारा
1: बिल्कुल
0: मन, मिजाज और याददाश्त दरअसल एक ही सिक्के के तो पहलू होते हैं. मतलब एक भी सही नहीं तो सब पर असर पड़ता है ना. एक
1: हाँ
0: लोहे की चीज अगर बहुत दिनों तक इस्तेमाल नहीं होती है तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है. ठीक वैसे ही तो हमारा मन भी है, इसे जितना काम में लाएंगे उतना ही यह तेज होगा. नए शब्द सीखना, किताबें पढ़ना या किसी पुरानी तकनीक को नए अंदाज में पेश करना, यही तो मन की खुराक है.
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा चंद्रकला जी. हमारा मिजाज हमारे विचारों का आईना है. अगर हम इसे अच्छी बातों, संगीत और सकारात्मक बातचीत की धूल मिट्टी से साफ करते रहें तो यह हमेशा चमकता रहेगा. और रही बात याददाश्त की, तो यह तो इस्तेमाल करो या खो दो, यूज इट और लूज इट के सिद्धांत पर चलती है. आप जितना पुरानी यादों को कुरेदेंगे ना, नई जानकारी को याद रखने की कोशिश करेंगे तो यह उतनी ही साथ निभाएगी.
0: बिल्कुल. तो दोस्तों, आज से ही मन को आलस के कैद से आजाद कीजिए. थोड़ा पढ़िए, थोड़ा लिखिए, थोड़ा गुनगुनाइए, क्योंकि आप जितना इन्हें काम में लाएंगे ये बेहतर रहेंगे, लेकिन आप भी साथ साथ में सुलझे हुए भी रहेंगे और खुद को हमेशा तरोताजा महसूस करेंगे.
1: और फिलहाल तो श्रोताओं, इस गीत को सुन के आप जरूर तरोताजा हो जाओगे.

जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन।

0: से करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: चंद्रकला जी, जब हम सुबह सुबह आंख खोलते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं?
1: क्या करते हैं? बहुत सारी विचार हमारे दिमाग में आते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर हम बिस्तर पर लेटे लेटे ही आज के टू डू लिस्ट बनाने लगते हैं कि आज क्या करना है, किसे क्या जवाब देना है, हमें कौन सा काम करना है, किस काम को प्रायोरिटी देनी है, कौन सा बिल भरना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किसका मैसेज आया है और किसका फोन आया है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जानकार कहते हैं ना कि सुबह की ये फैसलों की झड़ी हमारे दिमाग को दिन शुरू होने से पहले ही थका देती है और इसे कहते हैं डिसीजन फैटिंग।
1: बिल्कुल, जब हम सुबह एक साथ बहुत सारे फैसले लेते हैं मीता, तो दिन चढ़ने तक जो हमारी ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों से तो हम यही कहेंगे कि बेहतर तो यही होगा कि हम सुबह की शुरुआत फैसलों से नहीं, बहुत सारे विचारों से नहीं, बल्कि सुकून से करें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ी खुली हवा में कुछ कदम चलें और अपने मन के विचारों के बोझ से मन को है जो मुक्त रखें, और अच्छा संगीत सुने।

0: 9 बजने वाले हैं, यहां हम न्यूज ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार जो आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। किशाऊ बांध परियोजना पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बनी, इससे प्रदेश की कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। राज्य सरकार ने बालोतरा में दुर्लभ खनिजों की खोज को स्वीकृति दी, प्रदेश में जल्द ही एनआईए कोर्ट खोलने पर भी मंजूरी। एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया और प्रदेश में कई इलाकों में बारिश से झुलसाने वाली गर्मी से राहत, किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू की। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। वर्षों से लंबित किशाऊ

0: बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर राजस्थान सहित छह राज्यों के बीच सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये सहमति बनी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के हिस्से का पानी अब राजस्थान और दिल्ली को दिया जाएगा। इसके बदले में ये दोनों राज्य हिमाचल प्रदेश की बिजली की लागत को साझा करेंगे। इस परियोजना से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी उनके तय कोटे के अनुसार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे यमुना नदी में शुद्ध जल का प्रवाह बढ़ेगा। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष 10% खर्च सभी छह राज्य मिलकर वहन करेंगे। इस संबंध में जल्द ही सभी राज्यों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद परियोजना को अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले को राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश को अतिरिक्त पानी मिलेगा, जिससे भविष्य में कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाई जाएगी। राज्य सरकार ने कल इस संबंध में कई फैसले किए। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई बैठक में तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ाने के उद्देश्य से बालोद्रा जिले के नवाताला और देवीगढ़ में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनिज ब्लॉक की नीलामी का फैसला शामिल है। इसके लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी दी गई है। राज्य की न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए एनआईए से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के 8 नए जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा। इनमें बालोतरा, डीडवाना कुचामन, फलौदी सलूम्बर, खैरतल तिजारा, डी कोटपुतली बहरोड और ब्यावर शामिल है। समाचार कक्ष से जयकिशन शर्मा।
0: कल एक अन्य बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स RSMM को खनिजों के खनन में दुनिया की नवीनतम तकनीकी अपनाते हुए जीरो लॉस माइनिंग पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। कल सचिवालय में RSMM की 76वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मार्केटिंग के जरिए उपक्रम का कारोबार और मुनाफा बढ़ाने को कहा। केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन और इसके स्थायी समाधान के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में इस संबंध में एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और मिट्टी की उर्वरता तथा जन स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 544 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिसमें से आधी राशि जारी की जा चुकी है। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 14 जिलों की 70 तहसीलों में पराली सुरक्षा बल तैनात कर कड़ी निगरानी रखने पर भी जोर दिया गया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज 486वीं जयंती है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रताप जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री बागड़े ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ा था। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। पाली में इस अवसर पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। शहर में रैली भी निकाली जाएगी। कोटपुतली बहरोड में वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसमें जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह शिरकत करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख

0: को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को बंद क्यों किया गया है। श्री सिंह ने मीडिया को बताया कि एनटीए परीक्षा प्रक्रिया को कदाचार मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी प्रश्न पत्र हर प्रकार से सुरक्षित रखे गए हैं। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज कोटा से छात्रों के लिए एक जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं। अभियान के तहत राहुल गांधी शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार के अवसरों और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने और बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए स्टॉप डायरिया अभियान 2026 कल से शुरू हुआ। चिकित्सा मंत्री द्वारा शुरू किया गया यह विशेष अभियान 31 जुलाई तक प्रदेश भर में चलेगा। जयपुर प्रथम के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य डिहाइड्रेशन के कारण बच्चों में होने वाली जनहानि को रोकना है।
1: प्रोग्राम 31 जुलाई 2026 तक निरंतरता में चलेगा, जिसमें हमारे यहाँ से चिकित्सा विभाग में आशा सहयोगिनी घर घर जाके 5 साल तक के बच्चे हैं उन्हें ORS और जिंक उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ साथ में हमारे जो निरंतरता में सहयोगी विभाग रहेंगे, महिला बाल विकास रहेगा, PhD रहेगा, पंचायती राज रहेगा, इन सब का हम सहयोग लेके इसमें बच्चों की जो मृत्यु दर है, जो डिहाइड्रेशन के कारण जो मृत्यु हो रही थी बच्चों की, उसको कोशिश करके इसको कम करने की कोशिश करेंगे।
0: और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल भी कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अब कहीं भी हीट वेव की स्थिति नहीं है और लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली है। विभाग के अनुसार शेखावाटी क्षेत्र के सीकर और चूरू में कल झमाझम बरसात हुई, वहीं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन बाद में मौसम बारिश से सुहाना हो गया। अच्छी बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। बालोतरा में भी देर रात तूफानी आंधी के साथ बरसात हुई। बारिश बाड़मेर में मौसम ने अचानक करवट ली, और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जिले में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज अंधड़ आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं घिर आईं और बरसात का दौर शुरू हो गया। इस दौरान जिला मुख्यालय के अलावा बाटाड़ू, शेव, बाईतू और नोखड़ा समेत कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई। मानसून पूर्व की बरसात से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। इस बीच खरीफ की फसलों की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों में खुशी का माहौल है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किशाऊ बांध परियोजना पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बनी, इससे प्रदेश की कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। राज्य सरकार ने बालूतरा में दुर्लभ खनिजों की खोज को स्वीकृति दी, प्रदेश में जल्द ही NIA कोर्ट खोलने पर भी मंजूरी। NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया। और प्रदेश में कई इलाकों में बारिश से झुलसाने वाली गर्मी से राहत, किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आपका पुनः स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। श्रोताओं, आज है 17 जून और 17 जून का दिन देश और दुनिया के इतिहास में बहुत अधिक महत्व रखता है। तो जानते हैं क्या है आज के दिन का इतिहास?

0: 1885 में फ्रांस की ओर से अमेरिका को दिया गया दोस्ती का प्रतीक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी 350 टुकड़ों में पैक होकर फ्रांसीसी युद्धपोत इसरे के जरिए आज ही के दिन न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंचा था।
1: श्रोताओं, वर्ष 1674 और दिन था आज का, छत्रपति शिवाजी।

0: समाज की माता जीजाबाई का निधन हुआ था आज ही के दिन।
1: सत्रह जून यानी आज के दिन आइसलैंड का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वहां का संविधान लागू हुआ और यह डेनमार्क से पूरी तरह से अलग हुआ था।
0: मित्रों, अमेरिका के शिकागो में पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट यानी गुर्दा प्रत्यारोपण किया गया था पहली बार आज ही के दिन। साल था 1991 और दिन था आज का यानी 17 जून को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। सत्रह जून 2008 को भारत के पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलुरु में सफल परीक्षण किया गया था। मित्रों, और श्रोताओं, सबसे महत्वपूर्ण है आज का दिन जो भारतीय इतिहास में हमारी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के रूप में भी यह दिन मनाया जाता है। तो याद करते हैं उनकी कुर्बानी को कि किस तरह से उन्होंने हमारे देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करके विजयी भव का नारा लगाया था।
1: बिल्कुल, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।

0: दोस्तों आज बुधवार है और सेगमेंट होता है इतिहास। आज इस सेगमेंट में हम चर्चा कर रहे हैं तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले के कजुगुमलाई के में स्थित वेटुवन कोइल के बारे में। यह चट्टान को काटकर बनाई गई वास्तुकला का एक अद्भुत और बेजोड़ नमूना है। 8वीं शताब्दी के इस मंदिर को अक्सर दक्षिण का एलोरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसे भी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर की तरह ही एक विशाल ग्रेनाइट चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराशकर बनाया गया है। वेटुवन कोइल का तमिल में शाब्दिक अर्थ होता है मूर्तिकार का मंदिर या काटकर बनाया गया मंदिर। यह मंदिर पूरी तरह से कभी भी पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण इसका गर्भगृह और निचला हिस्सा आज भी अधूरा है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा और शिखर मूर्तिकला की दृष्टि से पराकाष्ठा पर हैं। सामान्यतः तो मंदिर है जो नीचे से ऊपर की ओर बनते हैं, लेकिन वेटुवन कोइल एक विशाल पहाड़ी की चट्टान को आयताकार रूप में गहराई तक काटकर फिर बीच के बचे हिस्से को ऊपर से नीचे की ओर तराशते हुए मंदिर का रूप दिया गया है।
1: श्रोताओं, यह मंदिर अपनी वास्तुकला और निर्माण विधि के लिए भी उल्लेखनीय है। प्रारंभिक पांड्य शासकों ने कई गुफा और पत्थर के मंदिरों के निर्माण में सहायता की। यह पांड्य युग के एकमात्र ज्ञात अखंड मंदिर का उदाहरण है, जिसे पहाड़ी की चोटी से 3 आयामों में यथास्थान तराशा गया था। और यह मंदिर तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा एक संरक्षित स्मारक के रूप में रखरखाव और प्रशासन के अधीन है। एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया यह मंदिर, जिसका आयताकार भाग 7.5 मीटर गहरा है। मंदिर की नक्काशी में मंदिर का ऊपरी भाग दिखाया गया है, जबकि निचला भाग अधूरा है। मूर्तियां और नक्काशी उस काल की पांड्य कला की झलक देती है। ग्रेनाइट की चट्टान खिले हुए कमल की तरह दिखती है, जिसके 3 और पहाड़ियां हैं। और विमान यानी गर्भगृह की छत में पार्श्व देवताओं, शिव के सेवकों जैसे गण, मृदंग बजाते हुए चित्रित दक्षिणा मूर्ति, शिव अपनी पत्नी उमा के साथ, नर्तकियों, नंदी और बंदरों और शेरों जैसे जानवरों की विभिन्न आकृतियां बनी हुई है। इतिहासकार बताते हैं कि यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां दक्षिणा मूर्ति को मृदंग बजाते हुए दर्शाया गया है, जबकि अन्य सभी स्थानों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया जाता है।
0: यहाँ आपको कई देवी देवताओं की जीवंत मूर्तियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इस मंदिर के अधूरे रहने के पीछे स्थानीय स्तर पर एक लोक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक पिता और पुत्र के बीच एक प्रतियोगिता हुई। बेटे ने पहाड़ी के ऊपर हिस्से को तराशना शुरू किया और पिता ने पहाड़ी की तलहटी में बनाना शुरू किया। बेटे ने काम करते हुए इतनी जोर से हथौड़ी की आवाज की कि पिता विचलित हो गए। गुस्से में आकर पिता ने अपने ही बेटे पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और इसी वजह से यह खूबसूरत मंदिर हमेशा के लिए अधूरा रह गया। वेटुवन कोइल के ठीक पास ही जैन गुफाएं भी हैं, जहां तीर्थंकरों की शानदार मूर्तियां हैं। इसलिए यह स्थान हिंदू और जैन दोनों संस्कृतियों के ऐतिहासिक मिलन का गवाह भी है। आज यह स्थल है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। अगर आप प्राचीन भारतीय वास्तुकला, पत्थरों को जीवंत करने की कला और इतिहास में रुचि

0: रुचि रखते हैं तो दोस्तों वेटुवन कोयल कला का एक ऐसा महाकाव्य है जिसे हर कला प्रेमी को करीब से देखना चाहिए।
1: तो दोस्तों आप भी कब घूम रहे हैं, जाइए वेटुवन कोयल को देखिए और वहाँ की जो वास्तुकला है उसे नज़रअंदाज जरूर अपने में कीजिएगा कि कितना अद्भुत है वहाँ का पुरातत्व।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: दोस्तों, धरती हमारा घर है और इसकी मिट्टी जीवन का आधार है। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन और हमारी ही गलतियों के कारण हमारी धरती का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल रहा है और इस गंभीर समस्या को मरुस्थलीकरण कहते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज का दिन यानी 17 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि कैसे हम अपनी जमीन को बंजर होने से बचा सकते हैं और सूखे जैसी आपदाओं का मिलकर सामना कर सकते हैं। यह दिन केवल समस्याओं को गिनाने का नहीं बल्कि उनके ठोस समाधान खोजने और उन पर अमल करने का संकल्प है।
1: बिल्कुल दोस्तों, मरुस्थलीकरण और सूखा किसी एक देश की समस्या नहीं, यह पूरी मानवता के अस्तित्व पर संकट है। 17 जून का यह दिन हमें याद दिलाता है कि यदि हमने आज अपनी मिट्टी और पानी को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों के पास जीने के लिए सुरक्षित धरती नहीं बचेगी।

0: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
1: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ,
2: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड जोधपुर।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
7: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
8: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
9: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: हाय जाट, डायरेक्टर काजरी जोधपुर से संजय व्यास की बातचीत, जिसका विषय है खेत बचाओ अभियान।
11: मित्रों, खेत जिस पर हम फसल के रूप में सोना उगाते हैं, वो केवल जमीन का टुकड़ा नहीं हो सकता। उसकी उर्वरा शक्ति और पोषक तत्व ये तय करते हैं कि फसल की गुणवत्ता और मात्रा कितनी होगी। ये एक संपदा है जिसकी हिफाजत करने की आवश्यकता है। और हम अपने इस खेत को, जमीन के टुकड़े को किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो चीजें उर्वरा शक्ति और पोषक तत्वों के रूप में खेत हमारी फसल को देता है, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी पूंजी है जिसे छीजने से, जिसे खत्म होने से, जिसे व्यय होने से हमें बचाना होता है। खेत को बचाने की चुनौती एक बड़ी चुनौती है, जिसे शायद हमारे श्रोता आमतौर पर समझना भी चाहेंगे कि किस तरह से खेत हमारे हाथ से निकलते

जा रहे हैं और जिसे हमें पुनः रिक्लेम करने की आवश्यकता है, पुनः हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है, बचाने की आवश्यकता है। और खेत बचाने का अर्थ क्या है? खेत कोई ले नहीं जा रहा है, जमीन को कोई भूमि को ले जा नहीं सकता, लेकिन भूमि के भीतर जो ताकत है, शक्ति है, वो कहीं ना कहीं कम तो नहीं हो रही है। और ये अगर शक्ति कम हो रही है तो हम कह सकते हैं कि खेत हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो बंजर जमीन का एक टुकड़ा भर रह जाए जिस पर हम फसल उगा ही ना पाए, तो हम ये कहेंगे कि खेत हमारे हाथ से निकल गया है। तो इस तरह से हमें अपने खेत को वापस क्लेम करना है, उसे बचाना है। और ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं, ये विशेषज्ञ हमें बताएंगे। आज विशेषज्ञ के रूप में विशेष आमंत्रित मेहमान हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के निदेशक डॉक्टर हनुमान सहाय जी जाट।

0: क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के निदेशक डॉक्टर हनुमान सहाय जी जाट, बहुत बहुत स्वागत सर आपका।
1: धन्यवाद जी।
0: सर ये एक अभियान आपने चलाया है और बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, खेत बचाओ अभियान, स्वस्थ मृदा सुरक्षित फसल और समृद्ध किसान। तो आमतौर पर इस तथ्य की तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं, किसान का तो ज़रूर जाता होगा लेकिन जो खेती किसानी करने वाला वर्ग आमतौर पर नहीं है उसको लगता होगा कि खेत बचाना क्या है, खेत पर बाड़ लगा दो तो शायद उसमें जानवर नहीं आएंगे, फसल नहीं खाएंगे, या फिर उसकी जो बंटवारे के कागज़ वगैरह ठीक कर लो तो कोई कब्जा करने नहीं आएगा और खेत हमने बचा लिया। लेकिन खेत बचाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे कि खेत बचाने का मतलब क्या है, ये जो अभियान आपने चलाया इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी और ये क्या है सर?
1: देखो जी, जो खेत बचाओ अभियान की जो शुरुआत हुई है, मुझे लगता है उससे पहले हमें उसके मूल कारण में जाने की जरूरत है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी।
0: यस सर।
1: तो यदि हम देखते हैं पूरे भारतवर्ष की यदि मैं बात करूं तो देखते हैं तो जो दो तीन चीज़ें जो मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में वो समस्याएं खड़ी कर रही है, एक हमारा कि अंधाधुंध जो हमारे रासायनिक उर्वरक है उनका उपयोग करते हैं। यदि आज आप देखोगे पूरे देश में कि जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का एक रेशियो होता है फसल की डिमांड के हिसाब से डाला जाता है, लेकिन किसान ज़्यादातर नाइट्रोजन का तो उपयोग करता है, फास्फोरस पोटेशियम के दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कम से कम यूज करता है। उससे क्या होता है कि हमारी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो उर्वरा शक्ति ठीक से नहीं बन पाती क्योंकि इम्बैलेंस हो जाता है, फर्टिलाइजर्स का असंतुलित हो जाता है। इसलिए तो फसल में हमारी जमीन तो खराब होगी होगी, बाकी हमारी जो फसल का उत्पादन है वो भी नहीं हो पाता।
0: जमीन में हम केवल यूरिया डाल रहे हैं, ये हम
1: यूरिया ज्यादा डालते हैं जी,
0: ज्यादा,
1: बाकी जो डीएपी है, एमओपी है, जो फॉस्फोरस पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले फर्टिलाइजर वो कम डालते हैं क्योंकि जो पौधा आपका जो लेता है तत्व वो सारे एक संतुलित मात्रा में लेता है। ऐसा नहीं कि आप नाइट्रोजन ज्यादा डाल दोगे तो उससे उत्पादन ज्यादा हो जाएगा।
0: क्या कारण है सर कि किसान को क्यों लगता है कि केवल जो यूरिया है वही ज्यादा जरूरी है? क्या उससे पौधे की ग्रोथ एक बार की दिखती है इसलिए उसको लगता है कि काम हो गया है मेरा?
1: क्योंकि यूरिया डालने से क्या होता है, जैसे आप यूरिया डालोगे यूरिया में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन जैसे आप डालोगे तो दो तीन दिन बाद में आपको फसल के ऊपर इसका इफेक्ट नजर आने लग जाता है
0: जी।
1: पत्तियां आपकी डार्क ग्रीन हो जाएगी, पौधा भी आपको स्वस्थ दिखेगा, लेकिन पौधे इसके अलावा जो फास्फोरस और पोटास जब ये डालते हैं तो उतना इफेक्ट जल्दी से नहीं आता जितना कि आपका यूरिया का आता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि यूरिया डालने से अच्छी फसल हो जाती है, लेकिन हर पौधे की हर फसल की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। यदि उस रिक्वायरमेंट से यदि हम ज्यादा डालेंगे तो एक तो जमीन में पड़ा रहेगा, दूसरा फसल के कोई काम में नहीं आएगा, और यूरिया तो ऐसा है जिसका वोलेटिलाइजेशन भी हो जाता है और नीचे लीचिंग भी हो जाती है, उसमें कई चीजें हैं। तो एक तो अंधाधुंध हम जो प्रयोग करें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का उसको कम करना, दूसरा जो हमारे जो रासायनिक जो पेस्टिसाइड्स हैं या वीडिसाइड्स है उनका भी किसान आवश्यक मात्रा से ज्यादा डालता है। तो एक तरफ खाद ज्यादा डाल रहा है, दूसरी तरफ आपके रासायनिक साइड्स है पेस्टिसाइड्स है वो ज्यादा डाल रहे हैं, और तीसरी तरफ यह है कि उसके अंदर गोबर की खाद है या कंपोस्टिंग है या ग्रीन मैन्यूरिंग है या क्रॉप रोटेशन वो कम अपना रहा है। तो यदि हम ये सारी चीजें करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि जो आपकी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो घटती जाएगी, जिससे जो जमीन वो बंजर होने का अंदेशा रहता है। उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा हमारे माननीय कृषि मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के, उन्होंने पूरे भारत में एक ये योजना शुरू की है जिसका नाम है खेत बचाओ अभियान, जो 1 जून से लेकर 30 जून तक पूरे देश भर में चलेगी ताकि किसान अपने खेतों को बचाए, जो आने वाली पीढ़ी है ताकि उनको भी उसमें अनाज उत्पादन करके वो अपना भरण पोषण कर सके
0: जी। आपने कहा कि उसकी जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की वो खराब हो जाती है, कम हो जाती है अगर आप अंधाधुंध उपयोग करेंगे, जिस चाहे तो आप खाद का आपने बताया रासायनिक खाद का या फिर जो कीटनाशी जो केमिकल्स यूज करते हैं उनकी वजह से। तो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्या जो भी फसल हम लेते हैं उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी से आते हैं, इसलिए जरूरी होता है मिट्टी का स्वास्थ्य?
1: जी देखो, मिट्टी का यदि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मिट्टी में यदि हम देखते हैं तो जो हमारे 16 से 20 भी बताते हैं हम दोनों ही जो एलिमेंट्स है वो पौधे को जीवन यापन करने के लिए चाहिए ही चाहिए। आपके जो 20 हमारे एलिमेंट्स है वो चाहिए ही चाहिए। यदि 20 में से मान लो सपोज कि नाइट्रोजन आपका मान लो कि 1% नाइट्रोजन चाहिए फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए, तो उसके हिसाब से फास्फोरस चाहिए, उसके हिसाब से पोटाशियम चाहिए, उसके हिसाब से माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए। जब इन तत्वों में इम्बैलेंस होगा तो जो पौधे की भड़वार है जो पौधे का विकास है वो कम होगा। तो सॉइल हेल्थ यदि आपकी कमजोर है तो उसमें उत्पादन भी कम होगा, उत्पादन कम होगा तो आपकी फायदा है फसल उगाने से वो फायदा भी कम होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप बैलेंस फर्टिलाइजर यूज करें। बैलेंस फर्टिलाइजर आपका जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है एनपीके है चाहे आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उन सबका बैलेंस रूप में जितना उपयोग देंगे उतना ही आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, न्यूट्रिशियस प्रोडक्शन होगा, और जिसको हम खाएंगे तो मुझे लगता है जो हमारी हेल्थ है या हमारे जानवरों की हेल्थ है उनमें भी सुधार होगा
0: जी। आपने कहा सर

0: जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, मृदा स्वास्थ्य, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको सुधारने के लिए मान लीजिए किसान भाई जो हमारे वो खेत बचाओ अभियान से जुड़ गए हैं, तो उस स्वास्थ्य को सुधारने के लिए वो कर क्या सकते?
1: इसमें कई चीज़ें हैं जी। इसमें ये चीज़ें हैं कि एक तो हमारा जो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमें करने की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऐसे कहेंगे कि जितने भी फसल की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप रासायनिक उर्वरकों से ना दें, उसका कुछ पोर्शन 20% 25% आप जो जैविक खादें हैं, चाहे आपका FIM है जो आपके पास होता है, चाहे आप कंपोस्टिंग है, चाहे वर्मी कंपोस्टिंग है, चाहे आपकी ग्रीन मैन्यूरिंग है, इन सबको जब तक हम समावेशित करके नहीं देंगे तब तक आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता। इसलिए हम जोर इसीलिए दे रहे हैं, इस पर ही दे रहे हैं कि आप जितने भी समन्वित न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तरीके हैं प्लस आपके जो बायोलॉजिकल्स है, चाहे आपका PSB है या दूसरे जो भी हमारे राइजोबियम है, इनसे आप उपचारित करें और उपचारित करके लगाएं, तो जब हम समन्वित सब चीजों को एक साथ करेंगे तो आपकी जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा, और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारी फसल ठीक रहेगी, हमारी फसल ठीक रहेगी तो हमारी भी सेहत ठीक रहेगी।
0: आपके खेत की मिट्टी की तबीयत किस तरह की है, इसके लिए बहुत सारे परीक्षण होते हैं। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी मृदा के भी डॉक्टर होते हैं, तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि हमारी मृदा किस हद तक अब स्वस्थ है या उसमें क्या क्या ऐसे तत्वों की कमी हो गई है जिसको हमें सुधारने की आवश्यकता है?
1: हाँ जी, इसके अंदर क्या है कि जो मृदा परीक्षण करने की ज़रूरत है, हम हर किसान भाई को हम हमेशा निवेदन करते हैं और हम आपके माध्यम से भी निवेदन करते हैं कि सभी किसान भाई जो भी उनका जो मिट्टी का नमूना है वो हमारे संस्थान में लेके आएं, या जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की जहाँ पर लैब बनी है वहाँ पर लेके आएं और अपने जो मिट्टी का नमूना है उसकी जाँच करवाएं। तो उसके अंदर जो मिट्टी के नमूने में जो जाँच करते हैं वो करीबन 12-13 तत्वों की हम जाँच करते हैं, उससे हम किसान को ये बता सकते हैं कि आपकी ज़मीन में इन इन पोषक तत्वों की कमी है और इन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आपको ये खाद आपको रासायनिक उर्वरक के रूप में देना है, ये खाद आपको जैविक खाद के रूप में देना है, या क्रॉप फसल का विविधीकरण करना है, क्रॉप फसल चक्र अपनाना है, तो हम उनको सब परामर्श देते हैं। तो किसान भाई से हम निवेदन करते हैं कि 2 साल में या 3 साल में एक बार अपना खेत का मिट्टी का नमूना उसकी अवश्य हमारे पास जाँच करवाएं और उसके आधार पर ही आप रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करें।
0: एक और जो समस्या या चुनौती है मृदा स्वास्थ्य को लेकर के, वो फसल अवशेष का निस्तारण किस तरह से करें? तो अक्सर किसान भाई उसको अवशेषों को खेत में ही जला देते हैं, इसका खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है?
1: देखो जी, फसल अवशेष होता क्या, फसल अवशेष में बहुत सारे आपके जितने भी पोषक तत्व होते हैं ना, फसल अवशेष में पोषक तत्व होते हैं,
0: तो चाहे खेत के लिए, खेत की मृदा के स्वास्थ्य के लिए वो फायदा कर सकता है अगर उसका ढंग से हम उसको निराकरित करें।
1: हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो फसल अवशेष होते हैं, क्योंकि फसल अवशेष होता है उसमें भी आपके सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, तो यदि फसल अवशेषों को यदि हम जला देंगे तो यदि जलाने से जो मैं आपको बताता हूँ बड़े बड़े क्या लॉस होते हैं, यदि हम फसल अवशेष जलाते हैं तो उसमें जो कार्बन होता है 100% जल जाता है जी, जो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 80% तक वो जल जाती है जी, जो उसमें फास्फोरस होता है 50% के आसपास वो भी जल जाता है जी, और ऐसे ही जो दूसरे तत्व हैं चाहे आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी जल जाते हैं, तो फसल जलाने से इतने सारे लॉस होते हैं। दूसरी तरफ क्या होते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे दूसरी जो गैसेज है वो भी उनसे निकलती है, तो फसल अवशेषों को जलाना कभी भी जो हमारी सॉइल हेल्थ के लिए फायदेमंद नहीं होता। हम तो कहते हैं जितने भी फसल अवशेष होते हैं उनको खेत के अंदर ही मिला दिया जाए, ताकि खेत में एक तो आपके पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और आप यदि दूसरे साल में जो आप फर्टिलाइजर देते हैं उनके अंदर भी आप 10-20% या 25% तक की आप कमी ला सकते हैं। तो किसान भाइयों से यही निवेदन करते हैं कि फसल अवशेष को भूल करके भी ना जलाएं, या तो आप खेत में मिला दें या उनको कंपोस्टिंग जो पिट बनाते हैं वहां पर उनका यूज करके उनको खाद के रूप में भी आप दे सकते हैं।
0: बिल्कुल, और हमारा जो सर इलाका है शुष्क क्षेत्र, यहाँ पर एक तो जल की कमी अपने आप में बड़ी चुनौती है, तो उसके संरक्षण की भी आवश्यकता है, और दूसरा कुछ क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है ऐसा महसूस किया गया है। तो ये जो दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक तो ये कि पानी का संकट है, उससे कैसे निपटें, उसके लिए क्या ऐसे इनोवेटिव तरीके हम अपना सकते हैं, और दूसरा जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती है जो हमें अब सामने दिख रही है, उसको हम किस तरह से उस चुनौती से कैसे निपट सकते हैं?
1: देखो, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जी, यदि हम आज का सिनेरियो देखता हूँ और आज से 30 साल पहले का सिनेरियो देखता हूँ, दोनों में रात दिन का फर्क है। फर्क इसलिए कि एक तो जो क्लाइमेट चेंज आपका टेम्परेचर है वो देखोगे, यदि आप वर्ल्ड लेवल पे भी आपका 0.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ रहा है, और वही सेम सिनेरियो देश के अंदर भी हो रहा है। यदि वल्नरेबिलिटी की बात करें तो हमारा देश में जो एरिड इकोसिस्टम्स है, दूसरे इरीगेटेड इकोसिस्टम है, ये ज़्यादा वल्नरेबल है एज कम्पेयर टू अदर इकोसिस्टम्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे जो क्रिटिकल जो चीज़ है वो है जल, वर्षा जल। वर्षा जल का जो हम संचय करें जो भी हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनमें आप उनको संचय करें, चाहे चाहे आपका वो आपका टांका हो, चाहे आपका खड़ीन हो, चाहे आपकी डिग्गी हो या आपके दूसरे जितने भी पौंड हो, उनमें आप उनको संचय करके रखें। फिर भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की बहुत सारी स्कीम्स

0: जैसे डिग्गी फुमारा स्कीम है, आपकी फार्म पॉइंट की स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, तो किसान को मैं यही निवेदन करता हूं कि जितना भी पानी बारिश का होता है उसको अपने खेत से बह के बाहर दूसरे खेत में ना जाने दिया जाए, वहीं पे आप उसको स्टोर करें और उस स्टोर करने के बाद उस पानी को आप लाइफ सेविंग इरीगेशन के रूप में दें। यदि फसल जैसे जिस समय आपको लग रहा है कि फसल में अभी सूखा पड़ने वाला है तो आप ऐसा सिंचाई का तरीका अपनाएं जिससे कि आपकी इरीगेशन की एफिशिएंसी बढ़े, तो आप उसमें ड्रिप इरीगेशन सिस्टम कर सकते हैं, आप उसमें स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम कर सकते हैं, आप उस बेड प्लांटिंग और फरो इरीगेशन भी कर सकते हैं ताकि कम पानी में आपको ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन लिया जा सके। तो किसानों को हम यही करते हैं कि आप स्प्रिंकलर और ड्रिप का जितना उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे पास हार्वेस्टेड वाटर है उसमें वो यूज करें और जितने खेत में आप इरीगेशन दे सकते हैं उतने दें और अपनी फसल को बचाएं।
1: बिल्कुल, और शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए काजरी एक शीर्ष संस्थान है, तो ये किसानों के लिए अभी वर्तमान में क्या ऐसे काम चला रहा है संस्थान?
0: हम काजरी में टोटल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम कंप्लीट एग्रीकल्चर के लिए सॉल्यूशंस देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमारा जो संस्थान है किसी एक क्रॉप के ऊपर नहीं है, ना एक कमोडिटी के ऊपर है, हमारा संस्थान सभी डिपार्टमेंट्स को कवर करता है, चाहे वो आपका क्रॉप ब्रीडिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एग्रोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे वो सोयल साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको एक्सटेंस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो हमारा ये जितने भी एरिड रीजन में जो हमारे शुष्क क्षेत्र है, इन शुष्क क्षेत्रों में जो भी नवाचार हमारा संस्थान कर रहा है उनको हम हमारे जो प्रचार प्रसार का डिपार्टमेंट है या जो हमारे संस्थान के साथ 3 KVK लगे हैं उन KVK से हर नवाचार को हम किसानों के खेत तक ले जाते हैं ताकि किसान को नई चीजें मिले और किसान ताकि उसकी आमदनी बढ़ सके, क्योंकि आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रकृति आपका जो बारिश में पैटर्न भी चेंज हो रहा है, इन सब चीजों को कोप अप करते हुए हमारी कोशिश यही रहती है कि किसान की आमदनी कैसे दुगुनी बढ़ाई जाए, और मुझे लगता है कि इस आमदनी दुगुनी बढ़ाने के ऊपर हम प्रयासरत हैं और मुझे लगता है कि किसानों को इसका जरूर फायदा मिलेगा।
1: किसानों के लिए सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: किसान भाइयों से मैं यही संदेश देना चाहते हूँ कि आपकी जो खेती है, जो आपका खेत है, आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, बहुत ही अच्छा संसाधन है और इसके ऊपर आपकी आपका जीवन टिका हुआ है, तो हमारी खेतों की जो सेहत है इसको आप जो सुधारने के लिए प्रयास करें, आप इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें, आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल अपनाएं और जो भी कोई समस्या आती है आप जैसे ही समस्या आती है या कृषि विभाग या जो हमारा काजरी सेंटर है आप उसे तुरंत आप उसके संपर्क में और उसके लिए हम आपका जो भी सोल्यूशन उसका होता है उसके लिए हम आपके लिए रात दिन हम आपके साथ खड़े हैं और आपका सोल्यूशन हम करने के लिए तैयार है।
1: डॉक्टर हनुमान सहाय जाट, निदेशक केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए आपका।
0: धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता डॉक्टर हनुमान सहाय जाट, डायरेक्टर काजरी जोधपुर से संजय व्यास की बातचीत, विषय था खेत बचाओ अभियान, प्रस्तुति एवं संयोजन था राजेश लामरोड़ का।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें, PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा करना प्रकृति पर कोई उपकार नहीं, यह तो हमारी अपनी सांसों और आने वाली नस्लों के वजूद की जंग है। क्योंकि जब तक प्रकृति सुरक्षित है तभी तो हमारा अस्तित्व है। वैसे तो प्रकृति के पास खुद को ठीक करने की जादुई शक्ति होती है, उसे हमारे किसी कृत्रिम प्रयास की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमें तो केवल उसके रास्ते के जो अवरोध हैं, इंसानी दखल है, उसको हटाने की ज़रूरत है। और अगर हम ऐसा कर देते हैं तो प्रकृति खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर लेती है। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें और अपने आसपास के वातावरण को थोड़ा सा भी सहारा दें, तो प्रकृति उस छोटे से प्रयास को एक बड़े वरदान में बदल देती है।
1: दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़ी जमीन पर कुछ करना होगा, और इसी उधेड़बुन में हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन एक जापानी तकनीक है जिसे मियावाकी तकनीक कहा जाता है, और यही है आज की हमारी खास बात, जिससे हम अपने घर के किसी कोने, किसी सूनी पड़ी जमीन या शहर के एक छोटे से हिस्से में स्थानीय पौधों को एक दूसरे के करीब लाकर अदृश्य धागे में पिरोते हैं, तो प्रकृति वहां अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। मतलब इस तकनीक के जरिए हम छोटी सी जगह में भी घना जंगल तैयार कर सकते हैं, यानी कम जगह में बहुत तेजी से घना जंगल उगाने की एक आधुनिक जापानी तकनीक है।
0: बिल्कुल, इसकी खोज जापान के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्र डॉक्टर अकिरा मियावाकी ने की थी। इसमें केवल उसी क्षेत्र की स्थानीय मिट्टी और जलवायु में उगने वाले पौधों, जैसे नीम है, पीपल है, बड़ है, शीशम है, आंवला है, अर्जुन है, इनको चुना जाता है। पारंपरिक तरीकों से अलग इस तकनीक में पौधों को बहुत पास पास लगाया जाता है।
1: इसमें झाड़ी, छोटे पेड़, मध्यम पेड़ और ऊंचे वितान वाले पेड़ों को मिलाकर लगाया जाता है, जिससे बिल्कुल प्राकृतिक जंगल जैसा दिखता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, और ये तकनीक कैसे काम करती है? इसमें पौधे हैं जो बहुत पास पास होते हैं, इसलिए वे सूरज की रोशनी पाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस होड़ के कारण वे बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और पास पास होने के कारण उनकी पत्तियां जमीन तक धूप नहीं पहुंचने देती, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती है और अनचाही घास पर खतपतवार है जो नहीं उग पाते हैं। इस पद्धति से पौधे सामान्य के मुकाबले 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, और केवल 3 साल में ही जंगल पूरी तरह तैयार होकर आत्मनिर्भर हो जाता है। यह आम के बगीचों से 30 गुना ज्यादा घना होता है, जिससे जैव विविधता बढ़ती है और पक्षियों और कीट पतंगों को बेहतरीन ठिकाना मिलता है। जहां एक प्राकृतिक जंगल को बनने में 50 से 100 साल लग जाते हैं, वही मियावाकी तकनीक की मदद से इंसानी प्रयासों द्वारा मात्र 3 साल में एक आत्मनिर्भर और घना लघु वन तैयार किया जा सकता है। अगर आप भी अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा देखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस तकनीक को अपना कर खुद का और प्रकृति दोनों का सहयोग कर सकते हैं। यही है आज की खास बात।

0: श्रोताओं, अब हम करते हैं काम की बात और आज काम की बात में हम आपको बताएंगे बचत के तरीके। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा कई तरह के विविध योजनाएं शुरू की गई थी, उसके बाद भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भी कई नई योजनाओं को प्रारंभ किया गया। भारत में वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो शानदार बचत योजनाएं मौजूद हैं, उनमें सरकारी गारंटी और शानदार ब्याज दरें मिलती हैं। सरकारी और डाकघर बचत योजनाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित होती हैं और इनमें जोखिम न के बराबर होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं PPF, सार्वजनिक भविष्य फंड। यह 15 साल की लंबी अवधि की योजना है जो कर छूट का लाभ प्रदान करती है और इसमें करीब 7.1% तक ब्याज मिलता है। इसी तरह श्रोताओं, अगली योजना के बारे में हम बात करते हैं, वो है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है जिसमें आपको निश्चित ब्याज दर लगभग 7.7% का लाभ मिलता है। एक होती है MIS यानी डाकघर मासिक आय योजना। इसके तहत आप मासिक रूप से एक निश्चित ब्याज प्राप्त आय प्राप्त कर सकते हैं जिसमें 5 साल की अवधि होती है। अगला है किसान विकास पत्र। यह योजना भी एक निश्चित समयावधि में आपके पैसे को दोगुना करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। और मित्रों, बालिकाओं के लिए एक प्रसिद्ध योजना है सुकन्या समृद्धि योजना SSY। 10 वर्ष से कम आयु की बेटियों के लिए यह एक बेहतरीन योजना है जिसमें लगभग 8.2% ब्याज मिलता है। यह आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ भी प्रदान करती है। अब बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए बचत योजना जो है वो है SCSS। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। यह तिमाही आधार पर लगभग 8.2% का आकर्षक ब्याज देती है और 5 साल की लॉक इन अवधि के साथ आती है। इसी के साथ महिलाओं के लिए भी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC भी बनाया गया है। यह 2 साल की योजना है जो सभी आयु वर्ग की महिलाओं या लड़कियों को 2 लाख रुपए तक के निवेश पर 7.5% की निश्चित ब्याज दर प्रदान करती है। साथ ही अन्य लोकप्रिय विकल्प भी हैं जैसे फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। इस तरह से सभी प्रमुख बचत योजनाएं हैं जिनसे आप निश्चित दर पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं और हर माह अपनी बचत का हिस्सा डालकर बचत कर सकते हैं।
1: बात कर लेते हैं दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का 5वां दिन पूरी तरह से ड्रॉ के नाम रहा। आधिकारिक रूप से 15 जून कम मजबूत मानी जाने वाली टीमों के लिए बेहद शानदार साबित हुआ और सबसे पहले केप वर्डे ने अपने रक्षात्मक खेल के दम पर यूरोपियन चैंपियन और 2010 के विश्व विजेता स्पेन को 0-0 की बराबरी पर रोक दिया। इसके बाद बेल्जियम और मिस्र का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा, जबकि सऊदी अरब और उरुग्वे ने भी 1-1 से बराबर खेला। आखिरी मैच सबसे रोमांचक रहा, जहां ईरान और न्यूजीलैंड ने 2-2 से बेहद मनोरंजक ड्रॉ खेला और ईरान न्यूजीलैंड के इस मैच के साथ ही वर्ल्ड कप में एक नया इतिहास दर्ज हो गया है। टूर्नामेंट के इतिहास में किसी एक ही दिन में 4 मैच ड्रॉ होने का यह वाकया 68 साल बाद हुआ है। दोस्तों, इससे पहले यह अनोखा संयोग है जो 15 जून 1958 को स्वीडन वर्ल्ड कप में देखा गया था। ये थी फीफा वर्ल्ड कप की जानकारी। आइए सुनते हैं ये गीत, समापन गीत।

0: दोस्तों आज के नमस्कार के अंक को देते हैं यही विराम। इस सफर में मैं थी आपके साथ चंद्रकला सुथार
1: और मैं मीता मुल्तानी। तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

0: ये FM सन सिटी चैनल है। लीजिए सुनिए राजस्थानी भाषा को समर्पित कार्यक्रम मरुधरारा गीत।
1: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
2: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
1: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
3: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
4: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
5: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
6: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
7: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
8: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
9: FM सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।

लाशारा ढेरा रण भूमि में शत्रु सांस न पी तो हो। लाशारा ढेरा रण भूमि में भालो शत्रु सांस न पी तो हो। बैरियारा माथा काट काट रण हल्दी घाटी जीतियो हो। इतिहास रखियो इन बात ने छाने के बादशाह हार ने खुद ही चीखियो हो। क्या वह है भया कि इतिहास रे सुनहरा आखरा में नाम उणोज लिखी जा करे है जको आप रे जीवन ने मिसाल बना देवे है। लोगा सारू खपा देवे है, देश सारू काम आ जावे है, खुद ने जलम भूमि रे सारू न्योछावर कर देवे है, आप रो सर्वस्व त्याग कर देवे है और दूजा सारू आदर्श बन जावे है। और भया आ बात एकदम साची बैठे है, मेवाड़ घरारे राजकुंवर की करमाते। जगो भया विक्रम संवत 1597 रे जेठ महीने री चांदना पगड़ी तीज ने कुंभलगढ़ में जन्म लियो। नाम धरी जियो प्रताप, पण पिता श्री कैवताहा लाड सूजन ने कीको। कुंभलगढ़ में जलम लियो कीको जयवंती री कोख, कुंभलगढ़ में जलम लियो कीको जयवंती री कोख। उदय सिंह रे आंगणे उगा सोले सूरज सोख, सोले सूरज सोख। तो भया आज इणीज वीर शिरोमणि साचो राष्ट्रभक्त अधम्य साहसी दृढ़ प्रतिज्ञ छापा मार जुद्रो जनक कर्तव्य निष्ठ त्याग और तपरी प्रति मूर्ति हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप तिथि मुजब जलम जयंती है और पूरो भारतवर्ष महाराणा प्रताप रे चरित्र रो गुणगान कर रियो है, इनारे वीर गाथा रो गुणगान कर रियो है। यूं तो भया कैलेंडर रे मुजब जलम दिन आया करे है 9 महीने, पण अपने इन धुरा धरती रे माथे आपे तिथि मुजब इनारो जलम दिन मनाया करा हा। कण कण थारो गुणगान करे थारी वीर कथारो बखान करे, कण कण थारो गुणगान करे थारी वीर कथारो बखान करे। के शेर जलमियो इन धरती पर हल्दी घाटी मैदान लड़े, आ हवा भी गीत गावे है प्रताप रो त्याग सगड़ा ने बतावे है। तो भया आज महाराणा प्रताप री वीर गाथा रे रंग सू रंगियोड़ो है और मातृशक्ति रे लोक संगीत सू सजियोड़ो है। आपरो पसंदीदा मायण भाषा ने समर्पित राजस्थानी लोक रंजन रो लूंठो रेडियो कार्यक्रम मरुधरारा गीत। कार्यक्रम रो आज रो नुवो अंक लेर हाजिर होयो हूं मैं इन संगीत मय रथ रो सारथी और आपरो दीवानो दोस्त बलवीर। मैं हूं छोरो जोधपुर रो। आप सगड़ा हितारु श्रोताओं ने, सीर का साइनो ने, नया नवेलो ने और बड़ा बढ़ेरो ने मारा राम राम। तो देखो कि कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुनावा जलम री बधाई देव तो और लोक गीत प्रताप री महाराणा प्रताप री जलम री बधाई।

0: सौम्यता है इसकी पहचान।
1: ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली।
0: FM Sun City, Sun City, Sun City.
2: FM Sun City पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
3: FM Sun City रे इन आंगने इन वक्त आप सुन रिया हो मायड़ भाषा री ओळखाण कराव तो मायड़ भाषा जन जन ताई पुगाव तो आप रो पसंदीदा राजस्थानी भाषा रो लूंठो रेडियो कार्यक्रम मरुदरा रागी जको आज स्वाभिमानी और शूर वीरता री खान महाराणा प्रताप री वीर गाथा रे रंग सु रंगियो रो है। महाराणा प्रताप री वीर गाथा आपती पुगावा पण उनसु पहला करा आपरो स्वागत नंदन वंदन हमेशी भात मारे अंदाज में। मिश्री सु मीठी लागे थाणी मारी प्रीत, मिश्री सु मीठी लागे थाणी मारी प्रीत, बार बार अभिनंदन करा सुनो मरुधरा रा गीत, सुनो मरुधरा रा गीत। आप सगला पधारिया हो इन आंगणे इन सारू आपरो ढोल थाळी रे साथे स्वागत करा हां। आपने बधाने लेवा हां आपने इन माटी री परंपरा रे मुजब आपरो तिलक करा हां आपने फेटो पहरावा हां और भया साथे आ ढोल थाली है आपने FM Sun City री जकी नारी शक्ति है उनारे वास्ते। वे घर में जठे भी वे चाहे वे बासन बर्तन करे झाड़ू कटको करे बड़ा बुजुर्गारी सेवा करे या पछे घर रो कोई दूजो काम काज करे आपरे भोजनशाला में भोजन पकावे की भी काम काज करे उनारे कानारे कने मरुधरारा गीत गूंज तो रहवे है और जद आ ढोल थाली बाजे तो थोड़ी एक जेज घूमर घालिया करे है तो थोड़ी एक जेज आप घूमर घाल लो और आपरे साथे मैं भी ठुमका लगाए लूँ।

काहे घूमर घाल रिया है अपन एफएम सन सिटी सुनन वाली नारी शक्ति। अबे देखो कि इन ढोल थाली ने अबे तो विराम देवनो पड़ी, क्योंकि अबे कार्यक्रम ने भी धक्के बधावनो हैं। महाराणा प्रताप री वीर गाथा आज एफएम सन सिटी रे माथे। देखो भया कि मेवाड़ महाराणा उदय सिंह जी री महारानी और पाली नरेश अखे राज सोनगरारी राजकुमारी जेवंता बाई री कोख सु तारीख रे मुजब 9 मई 1540 ने प्रताप जन्म वियो हो, और तित ही जेठ महीने रे चानना पगरी तीज 1540 में कुंभलगढ़ राजस्थान जलम होयो प्रताप रो जको हो इन धरारी शान। दिन घड़ी दिन भाग सोवन थाल बाजिया और घणे हरक बधाइयां बाटी जी। वसुधा कुल विख्यात समृत कुल सिसो दिया राखण जसरी रात प्रगटियो राणा प्रताप सिंह। भाया बालपणे सोई प्रताप री माता और सोनगरा कुलरी जायोड़ी वीरांगना महारानी जयंता बाई प्रताप ने नैतिकता री शिक्षा दी, जीवन रो पाठ पढ़ायो, शस्त्र ज्ञान रे साथ ही देश भक्ति री भावना जगाई और गीर सुमेर रे युद्ध में अद्भुत रण मचावन वाला जोधार नाना अखेराज सोनगरा और साथ ही हल्दी घाटी रे युद्ध में तलवार सु बैरियारा माथा उड़ान वाला मामा महान सिंह ना वीर वरणिया संस्कार नाना नारा सु मिलिया प्रताप ने। और भाया पुरखारी कैड में राणा लाखा बप्पा रावल महाराणा सांगारी मरोठ धारी आन बान शान रा विरोचित गुण प्रताप रे हीये में भरियोड़ा हा। और सांगो पाक सिखलाई और अभ्यास रे परिणाम स्वरूप अस्त्र शस्त्र चलावण में घुड़ सवारी में युद्ध नीति में और सामरिक विद्या में प्रवीण हो गया राणा प्रताप। और भाया होले होले ओ बखत बीत तो गयो बरस बीतता गया महाराणा उदय सिंह जी आपरी रानी भटियाणी धीर कवर रे राजकुंवर जगमाल ने मेवाड़ री गादी माथे बैठावनी चावता हा, पण भाया जनता तो प्रताप ने चावती ही। महाराणा उदय सिंह जी रे देव लोक होया रे पछे उनारे 100 बरस पू गया रे पछे सलुम्बर और उनरे आगती पागती रा सिरदार भेड़ा होर 28 फरवरी 1572 रे दिन 32 बरस री उम्र में गोगुंदा में राज तिलक कर कुंभलगढ़ रे राज सिंहासन माथे आरूढ़ करियो प्रताप ने। और देखो भया की धरती पुत्र मेवाड़ सिंहासन ने धारण करण सु पहला इनकी शोभा बधाऊं सु पहला महाराणा प्रताप एक सौगंध ली कि मैं आज भगवान इकलिंग रे सामी और माँ भवानी रे सामी आ सौगंध खाऊं हूं कि जद ताई चित्तौड़ धरा ने मुगला सु आजाद नहीं कराऊंला तद ताई नी तो मैं थाली में रोटी खाऊंला और नी बिछावन माते सोऊंला। और भाया इन सौगंध ने महाराणा प्रताप आपरी हारी उम्र निभायो। राखो मूछा राठोड़ी में लहू नदी बहादूला राखो मूछा राठोड़ी में लहू नदी बहादूला मैं अथक लड़ूला बहरिया सू उजड़ियोड़ो मेवाड़ बसा दूला उजड़ियोड़ो मेवाड़ बसा दूला। जकी सौगंध खाई उम्र भर वा सौगंध निभाई भाया। तजिया घर आंगणा गढ़ गवाड़ा गौर तजिया घर आंगणा गढ़ गवाड़ा गौर पातल भटकिया डू

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
2: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
3: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
4: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: अरे FM सन सिटी ट्यून कर।
6: FM सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।

102.1 FM Sun City, जोधपुर शहरी धड़कन जठे मिले है आपने शुद्ध मनोरंजन अब आज सुन रिया हो मायड़ भाषा रो सजीव रेडियो कार्यक्रम मरुधरारा गीत जिन्हें आप सुनिया करो हो हर बुधवार दिन सुबह 10 बजे सु लेर 11 बजे ताई पूरे एक घंटे आनंद उठाई रिया हो जोधपुर छोरे बलवीर रे साथे

देखो भया कि मेवाड़ री गादी माथे विराजमान होया रे पछे कूटनीतिवान महाराणा प्रताप बैरिया ने देश सुबारे भगावण खातर मुगला विरोधी राज्य ने एक करियो जिनमें है ग्वालियर मारवाड़ सिरोही और सगड़ा सिरे सरदार उन्होंने लेर राजपूताना राज्य रो एक संघ बनायो और दिल्ली बादशाह रहामी ताल ठोकी युद्ध कौशल और रणनीति में माहिर महाराणा प्रताप सांगो पांग युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। सहसु पहला तो भाया मेवाड़ रा मैदानी भाग खाली करवाए और लोगों ने पहाड़ा माते बसाई दिया। मेवाड़ री जनतारी रुखाड़ी रो भार भील सरदार वीर राणा पूंजा ने बढ़ायो। गोगुंदा और कुंभलगढ़ री सावटी किलेबंदी करवाई और सेनारा सिपाहियां ने जुद्रो चक्रव्यूह समझाई दियो। महाराणा रो ऐलान सुन सगड़ो मेवाड़ बैरिया सु लड़न खातर तैयार वेगो और भाया 18 जून 1576 में हल्दी घाटी रे ऐतिहासिक युद्ध में मुगल दरबार री शाही सेना राज मान सिंह कछवाहा आमेर समेत 20,000 सिपाही और करीब करीब 1,00,000 री सेना रे साथ है हल्दी घाटी रे मैदान में जार आसेना उबी वेगी और मेवाड़ी सेना रा ग्वालियर राजा राम सिंह तवर कुंवर शालीमार तवर सलुम्बर राज किशन दान जी चूड़ावत झाला मान सिंह जयत सिंह सज्जावत झाला बीदा मान सिंह सोनगरा भवानी सिंह और प्रताप सिंह तवर देवगढ़ राव सांगा रामदास राठौड़ बदनौर भीम डोडिया लावा सरदारगढ़ कैलवा राठौड़ शंकरदास राणा पूंजा सोलंकी मीरपुर सू हकीम खां सूरी पठान सेठ भामा शाह ताराचंद जी कावड़िया महाजन गोपीनाथ पुरोहित और भाया इनारे साथे कल्याण सिंह परिहार रतन चंद मेहता जगन्नाथ जी महासासणी और चारण जैसा और कैसा समेत 3,000 सूरमा हामी सामी जाए उभाविया और आपस में युद्ध करियो और हल्दी घाटी ते मैदान भी चले। मेवाड़ रा वीर सपूत तीर तलवारा और कटारा सु एड़ो रिदक मचायो के बैरी री सेना लड़नो ही भूल गई। ऊंचा ऊंचा डूंगर और इनारी अब की घाटिया में बैरिया ने छकायो उन्होंने दड़कायो भील सिपाही तो तीरारी बौछारा कर दी। मेवाड़ी तलवारा चमकण लागी बनास नदी रो पानी लाल होय खड़कण लागो वीर मेवाड़ रा वीरा रे खून सु मुगला रे बहरिया सु रगत री तलाई लाल वेगी यूं क्या होने भाया बटे तो रगत री तलाई बनगी। छापा मार युद्ध नीति सु बहरिया री सेना में हड़कंप मच गो और रजपूती सेना खून सस्तो और इज्जत महंगी कर दी। और युद्ध आपरी आंखियां सु देखन वाला मुगल साहित्यकार इतिहासकार अल बधायुनी आपरी पोथी में लिखियो के युद्ध क्षेत्र री भूमि ऊंची नीची उबड़ खाबड़ और रास्ता टेढ़ा मेढ़ा काटा वाला होण कारणे माणी हरावल में हड़कंप मच गई जिनसु माणी हरावल पूरी तरिया हारण लाग गई। मेवाड़ी सेना पहाड़ा में मोर्चो लियो तो शाही सेना गोगुंदासु पाछी हट गई और मौको देख भील शूरवीर तीरा और भाला सु हमलो कर दियो और शाही सेना ने भगाई दियो और दिल्ली बादशाह रो अजय होवण रो सपनो अधूरो रह गयो और भाया इन युद्ध सु महाराणा प्रताप री उजड़ी किरण आखी दुनिया में फैल गई और हल्दी घाटी

आजादी रे दीवाना रे वास्ते एक पावन तीर्थ बनगी भाया। जननी जड़े तो एड़ो जन जैड़ो महाराणा प्रताप, जननी जड़े तो एड़ो जन जैड़ो महाराणा प्रताप, अकबर सूतो ओज के जान सिरावण साप, जान सिरावण साप। मात भूमरी आण खातर बलिदाना चढ़णो जाने, जे बहरी आंख दिखावे तो मारने बढ़णो जाने। धरती री नदिया सूख जावे, आभे में बिजली कड़कावे, दुश्मन रो रगत पीवण ने तलवारा खड़क जावे, तलवारा खड़क जावे। आभाया रणभूमि है राजस्थान री।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: इस फीकी फीकी फुहार में चलिए प्रकृति से रिश्ता जोड़ा जाए।
5: लालजी नर्सरी लाए हैं हर तरह के पौधे, छायादार फल और फूलों के पौधे, सभी प्रकार के इंडोर और आउटडोर पौधे।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया, विराम मंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: फोन 9116956319। लालजी नर्सरी, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम?
1: अरे जा कहाँ रही हो, सवारियाँ छोड़ के आ रही हो?
0: तो इंजन बंद कर, गाना बहुत बढ़िया आ रही है।
2: एफएम सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
3: 102.1 एफएम सन सिटी आप रो अपनो रेडियो चैनल जिन्हें आप सुनिया करो हमेशा सुबह सु लेर रात ताई, क्योंकि अठे मिले है आपने शुद्ध मनोरंजन। इन बखत आप रे परिवार और मित्र मंडली रे सागे बैठ रे आनंद उठाई रिया हो मायड़ भाषा रो लूंठो रेडियो कार्यक्रम मरुधरारा गीत रो, जको आज स्वाभिमान और शूरवीरता री खान महाराणा प्रताप री वीर गाथा रे रंग सु रंगियोड़ो है। ओ कार्यक्रम आप सुन रिया हो जोधपुर छोरे बलवीर रे साथे। जद याद करा हल्दी घाटी ने नैना सुर रगत उतर आवे, जद याद करो हल्दी घाटी ने नैना सुर रगत उतर आवे, सुख हो जावे है बल्कि वफादारी और बहादुरी रे वास्ते जिनरे पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल दिरीजिया करे है। रणरी चौकड़ी भर भर चेतक बन गयो निरालो हो, राणा प्रताप रे घोड़ा सु हवारो पड़ गयो पालो हो। देखो भया की बड़ेरा बतावे है कि एक बार गुजरात रे तपते तावड़े सु वठारे रेगिस्तानी मैदान सु एक घोड़ा बेचन वालो व्यापारी महाराणा रे दरबार में आयो। उनरे कने 3 काठियावाड़ी नस्ल रा घोड़ा हा जिनारा नाम चेतक त्राटक और अटक हा। वो व्यापारी महाराणा सु बोलियो के महाराज ए तीनों घोड़ा सगला दूजा घोड़ा सु न्यारा है, वफादारी और ताकत री ए मिसाल है, आप जेड़ा वीर राणा वास्ते ए अनमोल साथी बन सके है। तो राणा कहो के दिखाओ ओ घोड़ो कीकर वफादारी और ताकत में ए तीनों ही घोड़ा तगड़ा है। तो भाया वो व्यापारी एक घोड़ो जिनरो नाम अटक हो उनरे पगा में मोटी रस्या बांधी और जिनसु की वो अटक नाम रो घोड़ो हिल भी नहीं पा रियो हो। वो व्यापारी उन घोड़ा सु अड़गो जहा ने एक ऐडी आवाज निकाली दर्द सु भरियोड़ी के घोड़ा ने लागे कि उनरो मालिक संकट में है। तो आवाज सुन र घोड़ो हवा में उछल कूद करन लागो भाया। वो घोड़ो आपरी पूरी ताकत सु मालिक कने पोगन री कोशिश करी पर मोटी रस्या सु उनरा पग बंधियो रहा, जिन्हने भाया वो घने उछल कूद कर तोड़न री कोशिश करी पर रस्या नी टूटी। पर भाया रस्या रिये तोड़न री कोशिश सु उनरा पग खून सु लथपत वेगा, पर उन हालत में भी वो आपरे मालिक तय पुगन री कोशिश करतो रियो और इन बिचाले उन वो घोड़ो जो कहो त्राटक नाम रो उनरी मौत वेगी। राणा प्रताप ओ देख तो घोड़ो जो हो त्राटक उन देख है तो देखता ही रह गया है। इत्तो वफादार घोड़ो, इत्तो साहसी घोड़ो और इन दृश्यावरे पछे राणा उन व्यापारी सु चेतक और त्राटक नाम रा दोनों घोड़ा खरीद लिया हा। इन बिछाले प्रताप रो छोटो भाई शक्ति सिंह भी घोड़ा रो दृश्य देख रियो हो। उनरे मन में भी एड़ो शक्तिशाली घोड़ो राखन री इच्छा थी। तद महाराणा प्रताप त्राटक नाम रो घोड़ो तो आपरे छोटे भाई शक्ति सिंह ने दे दियो और चेतक ने आपरे कने राख लियो। अब बखतरे साथे राणा और चेतक दोनों एक दूजे रा साथी बन गा। चेतक राणा ने जंगला और पहाड़ा में हवारी फुर्ती सु ले जाव तो और बैरी उन्होंने पकड़ ही नहीं सकता। और इनरे पछेरी कहानी तो आप सगला ने ठा है, इतिहास रे सुनहरा आखरा में दर्ज है कि कीकर चेतक हल्दी घाटी रे युद्ध में राणा रो साथ दियो, आपरी जान न्योछावर कर स्वामी भक्ति रो परिचय दियो, आगे नदिया पड़ी अपार घोड़ो कीकर वहला पार। भाया जद बैरियारा सिपे सालार अपने महाराणा प्रताप लारे लागोड़ा हा तो इतिहास में दर्ज है भाया और बड़ेरा बतावे है कि आगे नदिया पड़ी अपार घोड़ो की कर वेला पार, राणा सोचे इन पार तदताई चेतक तो उन पार। महाराणा प्रताप और चेतक रे बारा में कहूं हूं भाया कि हिंदुआ सूरज चेतक माथे भालो हाथा माए हिंदुआ सूरज चेतक माथे भालो हाथा माए चेतक रो असवार जूझियो हल्दी घाटी रे माए हल्दी घाटी रे माए इन मातृभूमि माते न्योछावर होने वाले चेतक ने भी नमन है भाया।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: जो बातें सुनता है, जो बातें करता है, जो अपनी कहता है, जो अपनी सुनाता है, जो गाता है, गुनगुनाता है, आपका अपना एफएम सन सिटी। एफएम सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
2: एफएम सन सिटी 102.1 एफएम, जिन्होंने आप ट्यून इन करियो हो आपके मोबाइल और रेडियो सेट माथे, और दूर दराज इलाका और सात समंदर पार न्यूज ऑन AIR ऐप रे माध्यम से श्रोता सुनिया करे है, और भया आप रो मनोरंजन करिया करे है सुबह से लेर रात ताई। आप रो अपनो रेडियो चैनल एफएम सन सिटी जठे मिले है आपने शुद्ध मनोरंजन। अब आर सुन रिया हो मायड़ भाषा में बात बनतल कर तो मायड़ भाषा नुवी पीढ़ी री जबान तई लाव तो लोक रंजन रो लूंठो रेडियो कार्यक्रम मरु धरारा गीत। आज रो कार्यक्रम स्वाभिमानी और शूरवीर तारी खान महाराणा प्रताप।

बराबरी वीर गाथारे रंग सू रंगियोड़ो है। देखो भया की महाराणा प्रताप रो साथी और स्वामी भक्त चेतक री वीरता सू भरी कहानी की जेज पहला में आपती पुगाई ही। और देखो कि चेतक री भात महाराणा प्रताप रो एक और स्वामी भक्त और वीर साथी हो जिन रो नाम हो राम प्रसाद। और राम प्रसाद भया कोई सेनापति जागीरदार या कोई सैनिक रो नाम नहीं हो भया, और नाम हो महाराणा प्रताप रे हाथी रो जो को की हाथियारे रेजिमेंट में हो। और राम प्रसाद भया घणो ही बलशाली और शक्तिशाली हो और साथ ही स्वामी भक्त हो। राम प्रसाद नाम थो हाथी भी थो वीर, महाराणा प्रताप रो स्वामी भक्त वीर। तो भया महाराणा प्रताप रो स्वामी भक्त हाथी राम प्रसाद रे बलिदान री कहानी आप दी पुगाऊ हूँ। देखो भया की हल्दी घाटी रे युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़तो राम प्रसाद हाथी दुश्मनारे खेमा में घणो ही कहर मचायो। बैरियारी सेना रे कई हाथिया ने तो वो खुद ही मार दियो हो। भया उन जमाने में हाथी रो भी आमी सामी द्वंद्व युद्ध हो तो हो, और कई बैरिया ने और उनारे सैनिका ने तो आपरे पगारे नीचे मसल तो और आप ही सुंड में पकड़ियोड़ी तलवार सू बैरिया ने काट तो धके बद तो रियो हो। दुश्मन री सेना में उनरे नाम सू खौफ पैदा वेगो। तद बैरिया री सेना आपरा साथ हाथी और उनारे माथे महावत ने बैठा रे राम प्रसाद ने चारों तरफ सू घेर एक चक्र व्यू बनायो, पण भया राम प्रसाद उना सू काबू में नहीं आयो। घना जतन कर राम प्रसाद रे पगा में बेड़िया बांधी और उन्हें पकड़ बादशाह रे दरबार में पेश करियो। उन हाथी ने देखने भाया दिल्ली बादशाह घना ही खुश होया। उन रो नाम राम प्रसाद सु बदलन वीर प्रसाद रख दियो हो, और आवाज देऊन लगा पीर प्रसाद हाथी। और दिल्ली बादशाह आपरे सिपे सालार ने उन हाथी ने आप इस सेना में शामिल करन रो कहो और आदेश दियो कि इनरी खातिरदारी करो और इनरो ख्याल रखो इनरो ध्यान रखो और अपनी शाही सेना में इनने शामिल करो भाया। पण राम प्रसाद तो देश भक्ति और स्वामी भक्ति रे जज्बासु भरियोड़ो हो और आप स्वामी महाराणा प्रताप रे सू अड़गो होन कारणे उनासु बिछड़न रे कारणे दुखी हो भाया। वो लगातार 18 दिना ताई अन्न पानी रो त्याग कर दियो, की भी खायो पियो नी और कमजोरी रे कारण आपरा प्राण त्याग दिया, पण बैरिया री सेना में वो शामिल नी वियो और इतिहास रे सुनहरा आखरा में आपरो नाम दर्ज करवायो। राम प्रसाद रे प्राण त्याग्या रे पछे अकबर कहयो भया कि जिन रो हाथी मारे सामे सिर नी झुकायो उन महाराणा प्रताप ने मैं की कर झुकाऊं। राम प्रसाद ने नमन है एड़े स्वामी भक्त ने जको बैरियारी सेना ने उखाड़ फेंकियो जंजीरा में बंदियो, पण प्रताप रो साथ नित जियो। तो भया वीर भोग्या मरुधरा माथे मिनक तो मिनक जिनावर भी वफादारी और देशभक्ति री मिसाल बन जाया करे है। उन देश ने कोई भी बैरी बाल बाको कर सके है कहीं नहीं कर सके भाया। तो भारतवर्ष है जठे कण कण री रक्षा रे खातर वीर जलम लेवे है किणे भी रूप में वो आपरो सर्वस्व त्याग कर देवे है। इतिहासकार अबुल फजल लिखियो कि हल्दी घाटी रे युद्ध में रजपूती वीर जान सस्ती और खून महंगो इज्जत महंगी कर दी। शूरवीरा रे साथे विशाल खाए पशु जीव जिनावर भी पौरुष प्रकट करण सु आपरो पराक्रम बतावण सु नी चूकिया। नमन है भाया राम प्रसाद ने।

मातृभूमि संतान इन धोरा धरती री संतान महाराणा प्रताप आखी उम्र भाया आप दासू अटखेलिया करण वालो स्वाभिमानी देशभक्त दृढ़ प्रतिज्ञ राजपूताने रो रूपक कुशल राजनीतिज्ञ रणकला में निपुण नीतिवान और अनेक सद्गुणारी मिसाल वीर सपूत महाराणा प्रताप देश में आजादी री अलख जगाए 19 जनवरी 1597 में आपरी देह छोड़ अमर वेगा बाया और हर भारतवासी रे हिवड़े में बस गावे अकबर पत्थर अनेक कई भूपद भेड़ा किया अकबर पत्थर अनेक कई भूपद भेड़ा किया हाथ ने लागो एक पारस राणा प्रताप सिंह। एफएम सन सिटी री पूरी टीम री तरफ से आप सगला रो धन्यवाद आभार के आप इन कार्यक्रम ने घणो पसंद करो हो आप रे हिवड़े बसायो हो और आप रे पसंदीदा कार्यक्रम री सूची में सेसु ऊपर रखो हो और साथ ही आप रे परिवार और मित्र मंडली रे सागे बैठने इन कार्यक्रम रो आनंद उठाया करो हो। अब देखो कि कार्यक्रम रो टाइम अटे पूरो वेगो है चालता चालता ओइच कहूं कि हिंदुआ सूरज स्वाभिमानी शूरवीर महाराणा प्रताप जड़ा रण बांकुरा वास्ते मां भारती मायड़ भू मरुधरा वीर भोग्या वसुंधरा क्या करे है अकन कुवारी नित नवी सदा सुहागण नाम अकन कुवारी नित नवी सदा सुहागण नाम कहड़ अमादी कामरा वीर भणागर नाम। अबे जोधपुर छोरे बलवीर ने दिराओ सीख राम राम सा।

अभी आप सुन रहे थे मरुधरारा गीत कार्यक्रम। यह FM सन सिटी चैनल है, लीजिए अब सुनिए रेडियो रेस्टोरेंट।

ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज़ पर। लीजिए साथियों, आगाज हो रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो रेस्टोरेंट का।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
2: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया, बिराम मंडो।
1: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
3: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
4: आप सुन रहे हैं FM सन सिटी

0: सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, क्योंकि भैया ये FM सन सिटी है और FM सन सिटी का जादू जो है वो सर चढ़कर बोलता है। भाई साहब, पहली बार चाय बनाने पर किचन का जो हाल होता है उसे देखकर लगता है कि वहां चाय नहीं कोई परमाणु परीक्षण हुआ हो। और लोग कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ प्याज ही ऐसी चीज है जो कटने पर काटने वाले को ही रुला देती है, और मैं कहता हूं भैया कि जितने आंसू प्याज काटने पर आते हैं ना, उतना तो ब्रेकअप होने के बाद भी नहीं आता। आप सुनना शुरू कर चुके हैं FM सन सिटी का चटपटा मसालेदार शो रेडियो रेस्टोरेंट, जिसमें खाने की खुशबू होती है बातों के जरिए और जहां हर बात में थोड़ा स्वाद है। मैं हूं इस शो का शेफ, आपका दीवाना दोस्त बलवीर। मैं हूं छोरा जोधपुर का, कहता हूं आपको हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, गुड मॉर्निंग। और भैया, जब मैं हूं आपके साथ तो चिल मारो ना यार। अगर आपकी मम्मा कहती है कि बेटा तूने खाना बनाने में जितना गैस फूका है उतने में तो नया घर आ जाता, और दोस्त लोग कहते हैं कि भाई तेरा खाना खाने के बाद एम्बुलेंस का खर्चा तू उठाएगा, तो भैया ये शो आपके लिए ही है। क्या आपके किचन में भी कुकर की सीटी बजने से पहले जो सुरसुराहट होती है वो किसी हॉरर मूवी के बैकग्राउंड जैसी होती है? तो आप सही जगह पर हैं मेरे यारो। आइए रेडियो रेस्टोरेंट की खिड़की खोलते हैं।
1: की खुली जरा, जरा पर्दा सरक गया।
0: भाई साहब, मैंने जैसे ही खिड़की खोली मोहल्ले भर की मक्खियां और मच्छर को लगा कि मैंने उनके लिए कोई ग्रैंड वेलकम पार्टी रखी है और वो VIP गेस्ट की तरह अंदर घुसाए हैं। अब मैं अपनी टीम के साथ उन सबको निकालता हूँ, तब तक आप सुनिए बैक टू बैक गाने। चिपके रहिए अपने रेडियो सेट के साथ और सुनते रहिए FM सन सिटी जोधपुर के छोरे बलवीर के साथ।

0: थ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
5: आप बने हुए हैं FM सनसिटी के साथ।

0: कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
4: FM सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
5: भाई साहब, खाना बनाना एक कला है और उस कला के बाद फैले बर्तनों को धोना बहुत बड़ी सजा है। और भैया, जो लोग कह रहे हैं ना कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, यकीन मानिए उनके घर में बर्तन धोने के लिए मैड आती है। आप सुन रहे हैं फूड लवर का चटपटा मसालेदार शो रेडियो रेस्टोरेंट, आपके दीवाने दोस्त बलवीर के साथ। और भैया, जब मैं हूँ आपके साथ तो चिल मारो ना यार। भाई साहब, आज की मॉर्निंग ना मॉर्निंग कम और एक मीठी सी दावत ज्यादा लग रही थी। हुआ यूं कि आज अभी जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो रास्ते में ट्रैफिक जाम की वजह से मुझे मेरी बाइक रोकनी पड़ी। बगल में थी एक मिठाई की दुकान जहां पर हलवाई साहब लोहे की बड़ी सी कढ़ाई में काले भूरे रंग के एकदम गोल मटोल घी में तैरते हुए गुलाब जामुन छान रहे थे। और इसकी खुशबू जैसे ही मेरे आँख नाक में चढ़ी, मेरी बाइक का गियर बाद में बदला, पहले मेरे मुंह में पानी आ गया। मतलब कि मेरे आगे का ट्रैफिक साफ हो गया और पीछे वाले हॉर्न बजाते रहे, पर मेरा दिल तो बस वहीं चाशनी के समंदर में गोते लगा रहा था। अच्छा, एक बात बताइए, हम जोधपुर वालों में ऐसा कौन है जो डाइटिंग के लाख दावे कर ले पर गुलाब जामुन देखकर पिघल ना जाए? कोई नहीं ना, हम जोधपुर वाले हैं भाई साहब। और भैया, जब मैं उन गुलाब जामुन को कढ़ाई से निकलकर चाशनी में डूबते हुए देख रहा था तो मुझे याद आया कि ये तो हमारे बचपन में मम्मी का इमोशनल ब्लैकमेल करने का हथियार था। याद कीजिए, जब भी घर में कोई मेहमान आने वाला होता तो मम्मी डिब्बे में गुलाब जामुन छुपा कर रखती और कहती, खबरदार जो डिब्बे को हाथ लगाया, ये मेहमानों के लिए है। वैसे सच कहूं तो गुलाब जामुन सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये तो हमारी लाइफ की पूरी फिलॉसफी है। चलिए आज इसी फिलॉसफी के साथ किचन में जादू जगाते हैं। भैया, कभी आपने गौर किया है कि एक बढ़िया सॉफ्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए क्या प्रोसेस है? कसम से सीरियस होकर सोचना आप। सबसे पहले मावे को खूब रगड़ा जाता है, हाथों से खूब मसला जाता है, फिर उसमें उसे तपते हुए गरम घी में डाल दिया जाता है। मतलब कि चारों तरफ गर्मी और प्रेशर, और जब वो तप कर सिक कर निकलता है बाहर, तब जाकर उसे चाशनी की मिठास में डुबोया जाता है। भाई साहब, हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। जब भी हम पर जिम्मेदारियों का प्रेशर बढ़े, जब लगे कि हालात आपको चारों तरफ से रगड़ रहे हैं या मुश्किलें आपको गर्म घी के में तपा रही है, तो उस समय घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। तब याद करिए गुलाब जामुन को। आप टूट को जो है टूटना नहीं है इन हालातों में, बल्कि लाजवाब सॉफ्ट स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनने का ये प्रोसेस है आपका, है ना? सच है साहेब, ये मुश्किलें ही तो हमें अंदर से निखारती है ताकि हम जिंदगी की मीठी चाशनी को सोख सकें, उसको अपने काबिल बना सकें। ये बॉस की डांट, घर की जिम्मेदारियां, मकान मालिक का रेंट, यहाँ तक कि चश्मा खो जाना, ये सब लाइफ की गर्म कढ़ाई तो है। तपो भैया, तपो, जितना तपोगे लाइफ की चाशनी उतनी ही अंदर जाएगी हमारे। और भाई साहब, अब तो मार्केट में गुलाब जामुन की एक नई डिश आ गई है, आपने भी चखी होगी, गुलाब जामुन विद आइसक्रीम। मतलब भैया, गरम गरम गुलाब जामुन और ऊपर से चिल्ड वनीला आइसक्रीम। कुछ लोग इस कॉम्बिनेशन पर उंगली उठाते हैं, पर मैं तो कहता हूं कि यही तो असली मजा है। हमारी जिंदगी भी ऐसी है, कभी एकदम गर्म तो कभी एकदम ठंडी, कभी अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो कभी कोई बहुत बड़ी खुशी हमें दे जाती है। लाइफ में जब तक ये सब चलता रहना, इसका विरोधाभास न होना तब तक जीने का मजा ही क्या है।

0: सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपति आर्य जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

अगर सब कुछ सीधा साधा चलता रहे तो लाइफ बोरिंग सी हो जाएगी, इसलिए गुलाब जामुन की तरह बदलाव का मजा लीजिए। तो भैया छोड़िए कैलोरी की चिंता और बढ़ाओ म्यूजिक का वॉल्यूम, क्योंकि आ रहा है वो गाना जो आपके मूड को बना देगा झकास। तो बस टिके रहिए एफएम सन सिटी के साथ और सुनते रहे जोधपुर के छोरे बलवीर को। आया है इस गाने पर तो आप झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, इसीलिए मैंने कहा झकास।

0: FM Sun City पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
1: भाई साहब, पेट भरने के लिए तो सूखी रोटी ही काफी है, पर खुश रहने के लिए थाली में प्यार और स्वाद की जरूरत होती है। और इस स्वाद के चक्कर में जब पेट बाहर आएगा तो सिक्स पैक का तो आप सपना भूल ही जाओ। फिर तो आपका एक ही काम होगा, पेट को अंदर खींच कर देखना और फिर गहरी सांस छोड़कर फिर से दोबारा देखना, और जिम वाले भैया की रील देखकर उसे लाइक करना और खुद को तसल्ली देना कि चलो कल से डाइटिंग शुरू करेंगे। इसलिए भैया, लाइफ में टेंशन हो तो उसे कढ़ाई में डीप फ्राई करो, ऊपर से लाल मिर्च पाउडर डालकर तब तक भुनो जब तक कि वो लाल ना हो जाए, फिर कूट डालो और जो फालतू की बातें करें, फालतू की बकवास करें, उसे दूर से ही रवाना करो। मेरी दादी कहती है, बेटा कभी भी मसाले नाप तोल कर मत डाला कर, क्योंकि जिंदगी में खुशियों का स्वाद और कढ़ाई का तड़का हिसाब किताब देख कर नहीं, बिना गिने अंदाजे से ही रंग लाता है। इसलिए जब आज मैं नाप तोल कर खाना बनाता हूँ तो मेरा तड़का भी हंसता है और कहता है, भाई तू खाना बना रहा है या ज्वेलरी शॉप में गहने तोल रहा है? तो साहेब, अब वक्त हो चला है कढ़ाई में जो रेसिपी पकाई है उसको साइड में रखकर गैस को आराम देने का, क्योंकि पेट में चूहे कूद रहे हैं, बल्कि वो धरने पर भी बैठे हैं। इसलिए अभी करता हूँ रेडियो रेस्टोरेंट का शटर डाउन, पर आप अपने दिल का शटर डाउन मत करिएगा, वरना जिंदगी के प्रेशर कुकर में प्यार की सीटी बजना बंद हो जाएगी। और हाँ, एक बात और, जोधपुर के हलवाई ने कहा है कि जिंदगी में मिठास उतनी ही रखो जितनी जलेबी में चाशनी, वरना लोग आपकी मिठास चट कर जाएंगे और खुद की कड़वाहट आपके हिस्से छोड़ जाएंगे। मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए एपिसोड में नई बातों, नई कहानियों, नए बहानों के साथ। तब तक इस हफ्ते जले हुए बर्तन मांजते रहिए, चमकाते रहिए। और अभी जोधपुर का छोरा आपको कहता है सायोनारा।

0: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुम्बकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन

0: करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजावेलु और वीपी शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक जी एनएच राजशेखरन को उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.1 MHz पर दिन के 12:05 हुए हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और इसी कड़ी में पहला कार्यक्रम होगा यादों की महफिल।

राहुल देव बर्मन की तर्ज पर आपने सुना आनंद बख्शी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज में। सनी फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: किशोर कुमार को आप सुन रहे थे जावेद अख्तर के बोल के साथ मशाल फिल्म के इस गीत में हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: अनजान के बोल आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की तर्ज के साथ। लता मंगेशकर की आवाज जमीन आसमान फिल्म के इस गीत में आपने सुने। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर

0: हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं समय कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: झूठा सच फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान

0: 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सोहनी महिवाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, अनु मलिक का संगीत। कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और मेन्यू कार्ड, गीतों का मेन्यू कार्ड नहीं बल्कि मेन्यू कार्ड नामक नाटिका आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। मूल कहानी लिखी है ओ हेनरी ने, जिसका हिंदी नाट्य रूपांतरण किया है मुरली मनोहर जोशी ने और निर्देशन है मुख्तार अहमद का। तो आज रात 8 बजे सुनिएगा नाटिका मेन्यू कार्ड हवा महल में। और इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

प्यार झुकता नहीं फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें, माफ कीजिएगा लता मंगेशकर की आवाज में ही ये गीत फिलहाल आपने सुना। एसएच बिहारी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की शुरुआत के पहले आपको बता दें आज की इबारत यानी टेक्स्ट क्या है। तो आज की इबारत है, हर सवाल का जवाब हो ये जरूरी तो नहीं, हर जवाब का सवाल हो ये भी कहां जरूरी है। अब आप ही सोचिए कब कौन कहां किससे क्यों और कैसे मिलेगा और क्या कहेगा, ये कोई जानता है भला? नहीं, यह जानकर भी कुछ सवाल और जवाब अनजान से राहों में भटकते रहते हैं। वैसे सवालों को उनके जवाबों से मिलाने की कोशिश में ही तो हम कभी सवालों के पीछे जवाब लिए तो कभी जवाबों के लिए सवाल ढूंढने घूमते रहते हैं। पर जिंदगी भाई वो तो इन सारे सवालों जवाबों से परे होती है। तो ये है आज की इबारत और टेक्स्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों या कहें कि जब से सुरीला सफर शुरू हुआ है तो हम एक इबारत रोजाना फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, हमारे फेसबुक पेज के जरिए आप इस इबारत या टेक्स्ट को जानते हैं और इसमें ही कुछ शब्द छुपे होते हैं जिनसे गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। अगर आप अब तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो टाइप कीजिए फेसबुक पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai और आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के पेज पर पहुंच जाएंगे। हिंदी में लिखा है ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और इसमें जाकर आप हमारे सभी कार्यक्रमों की जानकारी भी हासिल कर पाएंगे और सुरीला सफर की पोस्ट भी आपको वहीं मिल जाएगी जिसके कमेंट के जरिए आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारे साथियों ने आज की इबारत और टेक्स्ट पढ़कर ये अंदाजा लगाया है कि कुछ सवाल जवाब की बातें होने वाली हैं। सुरीला सफर में तो खैर वैसे भी सवाल जवाब की बातें होती ही हैं, लेकिन हमारे एक साथी लिखते हैं कि कब हुआ, कहां हुआ और कैसे हुआ काम, सवालों से मिलता है हर बात का नाम, जिज्ञासा जगाती है ज्ञान की आस, उत्तर से खुलते हैं समझ के प्रकाश। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, लेकिन

क्योंकि कार्यक्रम में गीत भी तो जरूरी हैं, तो गीत आपको सुनवाएंगे। उससे पहले आपसे हम पूछना चाहते हैं कुछ सवाल। तो ये बताइए कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आपको अब तक नहीं मिले, या ऐसे कौन से जवाब हैं जिनके सवाल आपसे पूछे ही नहीं गए, और कौन सा सवाल ऐसा है जो आपको सबसे कठिन लगता है, और कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि इसे तो पूछना ही नहीं चाहिए किसी से भी। किस तरह के जवाब आपको पसंद नहीं आते, और किस तरह का जब जवाब देने का आपका मन नहीं होता है तो किस तरह से आप टालते हैं कोई बात। तो ये सारी बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं, अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं कि कभी आपसे अगर पूछा गया हो ऐसा सवाल जिसने आपको असमंजस में डाल दिया हो कि इसका जवाब क्या दें। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सवाल का जवाब हमें पता होता है लेकिन हम कह नहीं पाते, क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी होती है। तो इस तरह की कोई परिस्थिति अगर आपके सामने आई हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, और कुछ फिल्मों से जुड़ी बातें भी आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने आपके मन में कई सवाल छोड़ दिए, या कोई ऐसी फिल्म भी हो सकती है जिसने आपके मन के सवालों को हल कर दिया हो कोई जवाब देकर। तो ये सारी बातें होंगी इस एक घंटे के दौरान। तब तक हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का पहला गीत। हालांकि आप सभी ने बहुत सारा अंदाजा तो लगाया है, कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। आवाज किसकी है ये पहचानिए।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गीत मन्नाडे की आवाज में आप सुन रहे थे और हमारे साथियों ने ये भी बताया कि अनूप कुमार पर फिल्माया गया है ये गीत, तो बिल्कुल सही जवाब। वही हमारी एक साथी कहती है कि इतने सारे सवाल एक साथ धीरे धीरे पूछिए सवाल, तो भाई एक साथ इसलिए हमने सारे सवाल आपसे कह दिए ताकि आप अपनी सुविधा अनुसार धीरे धीरे जवाब देते रहें और

अगर आपको चाहिए तो बीच बीच में तो हम अपना सवाल दोहराते भी रहेंगे। वैसे हमारे एक साथी ने कह दिया है कि उन्हें ना पसंद आने वाले सवालों में से पुरुषों के लिए है उनकी आय और महिलाओं के लिए है उनकी आयु, ये सवाल पसंद नहीं आते। वैसे हम कहेंगे तो इसका उल्टा भी हो सकता है भाई, महिलाओं से भी अब उनकी आय ना पूछी जाए और ना ही पुरुषों से पूछी जाए उनकी उम्र, तो ये सवाल तो बिल्कुल ही हमें छोड़ देने चाहिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सवालों जवाब पर तो कई फिल्मों में गीतकारों ने गीत लिखे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कार्यक्रम के अनुसार समय के अनुसार गीत शामिल किए जा रहे हैं। हाँ, तो इस गीत में पूछा गया कि कौन आया मेरे मन के द्वारे, एक सवाल था, लेकिन जब कोई हमारे मन के द्वारे या कहें कि घर के द्वारे तक आ ही जाता है तो हम पूछते हैं उससे सबसे पहले एक सवाल, और जब भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले भी वही सवाल पूछते हैं। कुछ ऐसा ही एक गीत है जिसमें किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं, तो अगर आप वो गीत पहचान सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो कि शायद सभी के लिस्ट में है, और इस गीत में बोल किसके हैं ये आपको हमें बताना है।

0: शैलेंद्र का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे ससुराल फिल्म में।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल

0: उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसमें सवाल जवाब का सिलसिला जारी हो चुका है और कई सवाल हमने आपने पूछे, ये कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका जवाब आपको अब तक नहीं मिला, या ऐसे कौन से जवाब हैं जिनके सवाल आपसे पूछे नहीं गए, कौन सा सवाल ऐसा है जो कठिन लगता है और कौन से ऐसे सवाल हैं जो पूछे नहीं जाने चाहिए।
3: हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गणगौर।

0: बिल्कुल पूनम जी की कोई भी समाज सभ्यता एवं संस्कृति रहे जीवन चक्र में अगर आप अध्ययन करा तो लोकगीत जी का है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभावे। मानव समूरी सांस्कृतिक मनोरंजनात्मक संस्कारात्मक और संवेदनात्मक थातिर रूप में लोकगीत ही संरचना रहे जीवन रहे प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावित कराया करा है। कोई भी उत्सव हो चाहे मंगलाचार आयोजन हो या अपने घर में कोई तीज त्योहार हो या आप घर में कोई हरजस गवा या बच्चों जन्मे या अपना देखो देखो के बनी की कोई अपने सामाजिक संदेश देना हो या कोई प्रेरणादायक बात कहनी हो तो भी मैं कठिन कठे अपने लोकगीत जी का है शामिल हुआ करे।
1: बिल्कुल सही क्यों आराधना जी। और राजस्थान की धरती तो फगत धोरारी धरती नहीं है बल्कि धींगाणे धर्म और अनमोल लोक संस्कृति री हेड़ू है। अठेरी हवा में भी एक कोड और अपनोपन है जिको आखे जगत रे मिनखा ने आप प्रकार ने खींचे है।

0: और अटेरा लोकगीत तो अपने आप में बहुत ही निराला है और बहुत ही सुंदर है सुनन में, इतना मन मोहना है कि मतलब सुनते ही लगे कि हाँ बस जट बारे भी बैठा हुआ नहीं तो लागे कि अपा राजस्थान रे माई नहीं यहाँ।
1: अब पूनम जी राजस्थान रे आप बात करा तो इन सकते अपन भारत जो है वो भी विभिन्न कहवे नहीं संस्कृति और समावेश लियोड़ा है, तो अठेरो जो पहनावो है, खान पान है, बोली है, भाषा है, सब है जिसका अलग अलग है, फिर भी अपन सब में एकता है और ऐसी चीजें ही अपन एकता में पिरोर रखे है। और एक कहावत भी है कि हर एक कहने कोस बाद जो है अपने बोली और पानी जो है बदल जाया करे, तो आज आप बोली और पानी और गीत संस्कार की बात कर रहे हैं, इन ही आधार पर अपन जो आज रो कार्यक्रम जो है वो आप तैयार करने सखियां वास्ते लेन आया हाँ।
0: बिल्कुल, तो जुड़िया रही जो आज इन सुरमी दोपहरी में माने साथे।

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर सुगणगौर, बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति रीति रिवाज परंपरा लोक गीतारी। तो राजस्थानी समृद्ध लोक संस्कृति परंपरा और लोकगीत भी अनूठा है। राजस्थान का लोकगीत केवल संगीत ही नहीं है, वे अपनो जीवन रो उत्सव रिश्तारी मिठास मान्यता और इतिहास रो जीवंत कहानियां भी है। तो इन्हीं लोक गीतारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने रो सराहनीय काम कर रहा है उदयपुर कंटेंट क्रिएटर काजल दुलावा जी। तो आज फोन लाइन द्वारा यहाँ सुजुड़ परा राजस्थान रा लोक गीतारी विशेषता या रो महत्व और भी आने डिजिटल माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने रो प्रयास के बारे में बात करेला। तो आकाशवाणी जोधपुर गणगौर माई घने मन सु स्वागत है काजल जी आप रो।
1: धन्यवाद, नमस्ते आराधना जी। आकाशवाणी जोधपुर को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मुझे। तो मेरा नाम काजल दिलावत है और मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, साथ ही कल्चरल फैक्ट्स और लोक संस्कृति के बस प्रचार प्रसार करती रहती हूँ सोशल मीडिया के थ्रू।

0: जी काजल जी, तो सबसे पहला आप हूँ जानना चाहूंगा कि आप कंटेंट तैयार करो जेके मैं भारतीय लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है और आप नर्सिंग रा स्टूडेंट हो, तो आप रो भारत संस्कृति री जी की जुड़ाव है, विभिन्न प्रकार की संस्कृति से जुड़ाव जी को आप रो रही हो, वो के न कारण हुई हो?
1: वो एक तो है प्रोफेशन और एक वे रुझान, तो अपनी जो इच्छा है वह तो आप बचपन हुई देख रहा हाँ, संस्कृति ने जान रहा अतरो नजदीक हो, तो दूसरी आज की जो पीढ़ी है वह अतर ज्ञान नहीं जान रख सके, वे अतरो सिर्फ वाइब करवा पे जान रखे, लेकिन अगर आप वहां बतावा वना भाषा में अगर आप वहां बतावा तो वे भी समझे ना, पीढ़ी कभी भी बात पहुंचे नहीं तो अटे रहते ही रह जावा।
0: बिल्कुल काजल जी, तो राजस्थान रे लोकगीत जी का है वीणी परंपरा घनी समृद्ध और रंग बिरंगी है, तो सबसे पहले तो आप माने श्रोतावा ना बताओ कि कौन कौन सा प्रमुख लोकगीत है वे गाया जावे और उनारी काई विशेषता है?
1: देखो आपने अटे जो गीत वे जन्म उल्लैन मृत्यु तक रावे वे, मतलब कटे कई कमी नहीं रेवे, अटे प्रेम और श्रृंगार रा गीत वे, अटे विवाह गीत वे, अटे कशो मौसम बदले तो भी ऋतु गीत वे, अटे भक्ति गीत शौर्य वीर रस गीत, आपने तो वीरा री धरती है यहाँ, तो अटे तो कटे कमी नहीं है वीर रस और गीता री, जैसे पेशेवर गीत भी वे जन्मे लांगा है मांगनियार कालबेलिया ये सब जो जातियां है ये गावे, ताकि हमारी आजीविका चल सके, जन्मे मांड भी केवे जो बहुत ज्यादा फेमस है वो भी है, जन्मे अपनो अत्रो सुंदर गीत है केसरिया बालम वो भी एक मांड हुआ फिर अत्रा गीत है, जन्मे अपनी जो लोक संस्कृति है लोक कथा है वन्य प्रचार वे, तो आज जमाना नहीं वो तो बहुत टाइम हुई वो चीज वेरी है, क्योंकि लोक गीत रे माध्यम इस लोग जान पाए।
0: बिल्कुल सही बात है जी, आप बार बात करी केसरिया बालम रे, यह माना जाए कि वो स्वागत गीत है, कुछ जगह यह माना जाए कि वो प्रेम प्रतीक्षा रो भी गीत है, बट ये आप बात करा चिरमी जिस गीत रही तो बीमे भी नारी मन री भावनाएं जी की झलकिया करे, तो ये दोनों ही विधा बारे में आप कहीं कहना चाहोला?
1: देखो मारे हिसाब तो ये दो ही विधा जो है ये विरार विधा है, एक तो केवे की मतलब चिरमी है, चिरमी जो है वो भी सब यूं केवे पति और पत्नी के बीच का विरा है, लेकिन नहीं अपने राजस्थान में विरा सबों वे अपने जो पीरा मना के वणा भी वे, तो ऐसे चिरमी जो गीत है वे ये अपने पिता ने याद करवाते, या अपने जो अपने पुरानी जे यानी गीत में लाइन भी आवे कि कैसे बाबू सारी लाड ली है चीर में, तो चीर में खुद ने बतावे और पिता रो प्रेम बतावे कि मने वटे मिल दो, जैसे ही केसरिया गीत है यो एक प्रेम गीत है, यो ढोला और मारूरी एक बहुत फेमस सी एक कथा है अपने राजस्थान में, जन्मे नरवर रा राजा है ढोला और पुंगल जी रानी है मारवणी, तो ना दोहरों जो प्रेम है वन में जो मारू है वह केसरिया बालम यो गीत एक जो गीत गावे है बनाने यो गीत देवे की था गाजो और दाढ़ी दाढ़ी लोक गायक जो वे मिलियो नरवर की आप याद देवड़ा जो डोला ने, तो बनारे बेहद सुंदर एक दोहो है मन में यू कहवे की केसरिया माने देश में नित्य तीन रतन, एक डोला दूजी मारुणी तीजो कसबल रंग, कसबल यानी कि सुरख लाल कलर जो कि एक सुहागन का प्रतीक होता है, तो इस प्रकार से ये केसरिया बालम वाला गीत है, लोग इसे स्वागत गीत ने मान ले हुए है, लेकिन अन्य पीछे भी एक बहुत सुंदर सी कहानी है, अन्य भी देख ले तो कतरो सही देख।

0: बिल्कुल काजल जी, अपने मरुस्थल रे जीवन और प्रकृति री झलक आपने कई लोग की तरह मैंने देखने मिले है। विशेष रूप से बात करा वीरे गीतरी तो इन्हें मैंने प्रकृति और पक्षियों रो जिको है कई महत्व है।
1: देखिए आपने जो मरुस्थल है ज्यादा आप मनक तो इतना मल्ले नहीं, अगर आपने मल्ले तो प्रकृति मल्ले अटे पक्षी मल्ले तो पेड़ मल्ले वनो बाता कर ली दी। अगर आपने जो पति है वे बाणे जहरा वे, अगर आपने जो नायिका है वनारो नायक कटे बाणे क्यों तो को है तो वे कन्नू बात करे कन्ने शेयर करने करे। आजकल तो फोन मतलब आजकल तो फोन भी है, पहले तो कुछ फोन भी नहीं आ तो वे किसी कुर्जा, जैसे कि कुर्जा इतना सुंदर पक्षी है, यो एक प्रवासी पक्षी है जो की सर्दिया में मारवाड़े तालाब रेतीला धोरा पे आवे तो वनडे यानी जीता में बहुत ज्यादा लायक को है कि एक वीरानी जो महिला है वह रोते रोते यानी पक्षी ने कहवे कि उड़न परदेश जावे तो मारो संदेश जो है वो मारे पति ने दे दीजिए कि उड़ती कुड़ जाए मारो संदेश देती जाई रे। तो ऐसे करके गीत होते हैं कि मेरा संदेश पहुंचा दो कि पति के पास की उनको याद कर रही है कि उड़ जाई मारा भंवर जी मिला दे रे। तो कई गीत है जैसे कागा गीत भी होते हैं कि आजकल तो ऐसे कौवे दिखते नहीं है, कौवा दिखता ना और अंडे भर में मतलब अपशगुनी भी माने कोई कोई तो, लेकिन आपने ऐसे तो कहवे कि उड़ उड़ जैसे कि गीत है बहुत सुंदर सा कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला जद मारा पीव जी घर आवे। तो इसमें नायिका जो है इस गाने में ना नायिका यो लालच भी देवे कौवा ने अगर वनडे पति रो आवारो शुभ समाचार अगर दे दे तो थारी चौथी पूरी सोना उमड़वाई दंगा। तो ये पूरा प्रेम का ही तो होता है कि यो जो प्रेम है यो विरह है यो कागला कटे के दू कटे कुर्जा ने के दू। जैसे पीपल रा पेड़ रे भी गणी वेवे की पीपल रे पेड़ ने कहवे की अटे पीपल रो पेड़ जिन्या नानो थको हो तो माँ और मारे जो पति आवना दई अना वायो हो भाई वो भी मोटो हो गयो लेकिन आज तक अनारी खबर नहीं है ये वना बहुत सारी खबर नहीं है ये क्यों करें वे याद करें अना पक्षियां पेड़ अनारे प्रति।

0: बिल्कुल काजल जी, जी राजस्थान जिको है वो वीरारी धरती है जिको कही जाए तो अठे वीर रस से जुड़ा भी बहुत सारा लोक गीत है। तो शौर्य और पराक्रम में किन प्रकार है जिको आप अभिव्यक्त करना चाहो लोग गीता द्वारा?
1: देखो आपने अटे या पूरी आप सही क्यों की तो अटे वीर रस की तो बिल्कुल कमी नहीं है, चाहे महिला वो चाहे पुरुष वो। अटे जैसे कि पुरुष रे बात है आपने अगर कहे तो महाराणा प्रताप रे अतरा सुंदर सुंदर गीत है कि हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो महाराणा प्रताप कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, दुर्गादास राठौर जी रे बारे में अतरा बढ़िया गीत है, चंग गीत जे गावे कुशल सिंह जी चंपावत रे बारे में जना अंग्रेजों लड़ाई, और महिलाओं के जो है वो वीर प्रसूता रे गर्व में गाणु गावे है जैसे कि एक बहुत सुंदर और बहुत फेमस सी लाइन है कि इलान देनी आपनी हालरिया हुलराए। तो हमें यूं कहवे माँ की अपने बेटे को पालने में जिन्हें

0: तो बिल्कुल काजल जी, अपन अठे लोक देवी देवता री आराधना में गाया जावन वाला भक्ति गीता में राजस्थान री संस्कृति में कई स्थान दियोड़ो है, और इना ने गाता टाइम किन प्रकार भाव है जी को अपने होना जरूरी है?
1: अपने जी राजस्थान संस्कृति में भक्ति गीत है, आप सबू ज्यादा बड़ो एग्जाम्पल तो अपने मीराबाई है की कतन यू के गौतम बुद्ध वना संन्यास ले ली, दो भगवान में परा गया, लेकिन आपने जो मीराबाई है वना तरह सुंदर सुंदर पद लिखा, वे भी सब दुनिया मोह माया छोड़ दिता वे तो रानी हा फिर भी, तो बन में भक्ति गीत अपने जो पब्बू जी है अपने गोगा जी लोक देवी देवता है अनारा भी गीत बड़ा फेमस है, और अनामुस वनारी जो कथा है वह अपन सुनवा मिले, रामदेव जी रा वो गीत बहुत ज्यादा वो साले आजकल तो यूं कि अजमेर जीरा बीरा माता मेणा देरा लाल, तो यो गीत आवे तो आपको पतो पड़े कि वाह कई आपनो संस्कृति, और अना गीता में ना यह सब बड़ी बात है कि हमें जो सामाजिक एकता जो है वो मल्ले, आपने राजस्थान में कभी जात पात को सिस्टम हो ही नहीं कि आपने जो लोक देवता वे भी आपने शाह की यो रास्ता भी नहीं बना, गीत में भी नहीं नजर आवे तब वनारे दर पे आवे, रात्रि जोगो है जैसे कि मांगलिक कार्य कहीं भी शुरू हुए तो रात्रि जागा जमा ये देवे, अणमे आपने जितना भी लोग देवी देवता है वनाने याद करियो जावे, और यो सब एक पॉजिटिविटी लावा वाटे वे।

गीत है कि मत दो बाई ने गाल बाई मारी चिड़कोली, तो ये सारी चीजें माँ बेटी का रिश्ता भी बताती है। ब्याह में जो घोड़ा गीत वे जो बारात रो डेरो जो वे ठिकाणों वे वो देखवा जावे, है ना, जल्लो गीत गावे जल्ला गीत गावे, तोरण बनियान बांधवा आवे बनियान गीत तोरण गीत, और ओलियो ओलियो तो सब याद वे की ओलियो यानी याद, बेटी रे घर विदा वे तथा का सेलियान माँ कोयल लड़ी ओलियो ऐसा गीत गावे ताकि पूरा माहौल जो वे वो भावुक वे जावे।

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर से गणगौर और आज आप हमारे सागे उदयपुर से मेहमान जुड़ रहा है काजल दुलावत जी जैसु बात कर रहे हैं राजस्थान री गीता री संस्कृति पर। तो काजल जी राजस्थानी लोक गीता में नारी सौंदर्य जी को है और वीर सौंदर्य जी को भी आपा के मां तो ये दोनों ही भावनाएं जी की है बड़े ही सुंदर वर्णन आपा ने मिले दोनों भावना रो बारे बारे में भी बताओ।
1: अगर आप श्रृंगार गीत री सबू पहला अगर बात करा करी नारी रे तो सबू पहला अगर मार दिमाग में कोई गीत आवे मूमल गीत जन्मे मूमल एक स्त्री है अपने जैसलमेर जी है तो वणारो जो पूरो सौंदर्य है वणारे आंखा उल्लेन वणारे पगरे नख तक वणात्रो सुंदर विवरण कर रहा है क्यों तो अच्छा जो श्रृंगार रस है जन्म एक नारी की सुंदरता बतावे अपने बाईसा अगर आपने घर में वे तो वणारी भी करे की बाईसा लाडका गणा बताया जाता है जैसे अगर कोरे काजल री कोर तो इस प्रकार के जो गीत होते जन्मे काजल रो श्रृंगार भी अगर कोई नारी कर दे तो वनडे वाते भी एक गीत बनियो तको जी जी। तो जो विरह गीत है वन में अगर आप जावा तो पीपली गीत है जैसे कि पीपली गीत रे आपे बात पहला भी की दी ही कि कतर वो पीपली छोटी सी तो लारे की दी ही वन बात बड़ी वेगी तो आया नहीं आपने जो कुड़जा गीत है कि कुड़जा ही मारा भवर जी मिला दे रहे तो ऐसा ऐसा गीत जे वे आपने पूरी महिला री जो अतरी परेशानी है अतरो जो अकेलोपन है वन ने बतावे और अन्य सिर्फ एक गीत नहीं काफी काफी विरह गीत तो आपको मतलब राजस्थान की पूरा लोक गीता में विरह गीत सबू ज्यादा अगर आप देखा तो मिलेगा आप।

0: तो बिल्कुल काजल जी, अपन अठे तीज त्यौहार रा गणगौर रा सावन रा फागण रा जेड़ा त्यौहार रा रंग भी लोक गीतार मायने खूब देखने मिले है। तो एड़ा अवसर पर गाया जावन वाला जिका लोक गीत है वे अपने आप में कई महत्व राख्या करे।
1: देखो आपने राजस्थान में तो त्यौहार तिथि रो बदले वो ठीक है, लेकिन त्यौहार लारे आपने लोकगीत भी बदलता रहे। जैसे की एक बहुत सुंदर कहावत है की तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी की त्यौहार में जो अपने त्यौहार शुरू हुए वे सावन री तीज और खत्म हुए वे चैत्र के गणगौर तक तत्र त्यौहार रो सिलसिलो चालतो रहे और वन में गीत भी आता रहे। जैसे गणगौर रा गीत है कि गोरे गणगौर माता या खेलन दो माने गणगौर, तो ऐसे करके। और एक बहुत सुंदर सा अभी मैंने एक वीडियो भी डाला था कि गुल्लो घूमे लाजी, तो उसमें भी एक गणगौर की ही त्योहार की बात थी कि उसमें भी एक ऐसा रस था कि जैसे वीर रस और गणगौर का गीत ये दोनों मिल चुके थे कि कैसे सातल दे जी ने गुल्ले खा दो सर कर दी दो पार्टन दे दी दो तो वनु एक गाण मणी जो गुल्ले घूमे लाजी घूमेला। तो ना में भी कभी कहानियां रहे जैसे अब फागुन नहीं जा तो फागुन में अपने चंग गीत गावे दमाल गीत गावे, तो यूं करन हर त्योहार। तो ऐसे करके त्योहार जो देख लो चौमासो ही जो तो वन्य माते भी आपने गीत

0: जी हाँ, आप बार आप लोक गीता रे बात करें तो कुछ ऐसा गीत भी वाला जिका पारिवारिक रिश्ते री मीठी नोक झोंक से जुड़ोड़ा वाला जिका में अपनापन भी है और शिकायतें भी है।
1: ये मैं भी बिल्कुल कमी नहीं आपने राजस्थान में, जैसे कि एक तो बड़ो यो है कि अब तो मैं थाने लागू हूँ पुरानी, ऐसी बातें मत कर सुन ले शानी। तो ये जो है ये दाम्पत्य जीवन का प्रेम है, ये कैसे थोड़ी नोक झोंक भी चल रही है, कैसे चल रही है, देवर भाभी के भी हैं कि नानो सो देवरियो मारो, कि वनडे भी अगर लाडी लानी है तो ऐसे करके हैं। कुछ खेल कूद भी है जैसे कि कालो कूद पड़ो मेला में, साइकिल पंचर कर लाया, ऐसी कई सारी है।

0: तो काजल जी, जी हाँ, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो गीता रे बारे में। तो जी हाँ, कौंतल घुड़लो जी को गीत है ये, अरे पीछे कई कहानी है।
1: तो आपने जो कोतल गुड़लो वे तो शादिया में जो वे पहला यू वे तो कि एक जो एक्स्ट्रा गुड़ो वे तो जो बिंद्रा जला रहे आप तो वन कोतल गुड़लो के था। शुरुआत में तो यह यू वे तो कि जो आपने युद्ध वे था वन में एक एक्स्ट्रा घोड़ो जातो तो वने बाद जो अगर प्रिय नारी है, अगर प्रिय जो वनारी पत्नी है वनारे वाते अगर ब्याह करवा जा रहा है तो वनारे वाते कोतल गुल्लो एक्स्ट्रा आतो। कोतल गुल्ला रो यू मायनो कि अगर कोतल गुल्लो ब्याह में हीरो है बारात में दिखी रो है एक खाली घोड़ो है तो यूं कहता कि वाह नारी जाए वाह पत्नी जाए वाह राजा री प्रिय पत्नी है। तो अंदो यू एक सिग्निफिकेंट रोल हो कि एक कोतल गुल्लो है यानी कि वह क्या पत्नी है वह राजा की प्रिय पत्नी।

0: काजल जी अपन अट और भी गीत है जो राणे वर्रा काई पढ़नी जो उमराव गीत है उनरे मैंने काई ब्याव है जिका इन गीता रे माध्यम से प्रकट किया जावे।
1: तो जैसे कि राणे वर्रो है और उमराव गीत, तो अगर पहला बात करा उमराव गीत री तो अन्नो दो मतलब दे सके। सबो पहला तो उमराव जो वे आपने पहला राजा रे वे था कि उमराव 32 उमराव यात्रा उमराव वे था अलग अलग ठिकाने रा तो बना रहे बात है गीत मान सका। लेकिन जो मेन जो चंपा में थी आपने जो बहुत प्रसिद्ध गायक कलाकार है वना यो गीत गाय वो उमराव सिंह की बारहट माते जिकी बीका नहीं रहा वना आपने समाज रे वाते कुआ वना गरीब मन का वाते बहुत बढ़िया की गुण। तो वनु प्रसन्न वेन जे चंपा जे हा वना यो गीत वना वाते लिखियो और वने बाद यो गीत फेमस लिखियो। तो यू कहवे कि वो गीत जो वो उमराव सिंह के बारे माते हो कि वना सामाजिक कार्य बहुत सुंदर तरीकों की दा और वना रे जीवन काल में वना गरीबा ने मतलब बिल्कुल सहायता की दी अतरू बढ़िया की दू की वना वाते गीत जी क्योंकि उमराव थारी बोली प्यारी लागे है। कैसे उमराव सिंह जी जे हा वे कवि भी हा एक तरह रा तो वे जो लिखता वनु भी प्रसन्न वे यू गीत बनी थी और वने बाद यो गीत रो असल मायना तो यो ही कहवे है चंपा में की बना वाते लिखियो। बाकी आगे जिन जो है वो फेमस जो तो आगे जिन उमराव बत्तीस उमराव रे बारे में भी लोग सोचा करे कि हाँ ये 32 उमराव मिला। तो वैसे ही राणे वन जो राणे वन में कई पढ़नी जो जन्म जन्म मर जाए तो ये गीत तो आपने मीरा बाई रे ऊपर है कि मीरा बाई कहे कि मु एक अच्छा राजा ने कते पन्नु जो बार बार मर जावे मतलब मु तो सावरो पन्नु जो मतलब जीवन मरण बिल्कुल अलग है बिल्कुल पर है तो अशा वर उपन्नु जो कभी मरे ही नहीं। तो यू वनार पिछड़ो हो कि कैसे और अनी पूरा गीत में यू पूरी वनारी कहानी बतावे कि कैसे राजा विक्रमादित्य जो थे मीराबाई रे देवर वना वना ने जहरो प्यालो दीदो वना वना ने जहरीली खींच आई वो भी वह तीन अमृत मणि जो बना रहे बात है। तो यू सिर्फ आपने जो श्री कृष्ण हा वनारी बताई है कि अगर वना लारे कोई है तो अरे जीवन मृत्यु रो कोई दरस नहीं देगा। जय मीराबाई ने नहीं।

0: तो बिल्कुल काजल जी, अपने राजस्थान रे लोकगीता में एड़ा गीत भी है जो समाज ने जागरूक करे और सकारात्मक बदलाव लाने रो संदेश दिया करे है, तो उनारी जानकारी भी थोड़ी सी दिला दो।
1: आपने समाज में जागरूक करवा वाते कई गीत है, तो वन में एक ये पिनिहारी भी है जन में की महिला रे जे पानी भरवा जावती अत्रो दूर दूर, तो वना वाते यो दुख प्रकट करवा वाते यो गीत आयो। वने बाद आपने यो एक फेमस सो गीत है उस जो दोरा रे दोरा हमारे रेलगाड़ी चले, तो इस गीत में भी एक नारी अपना जो दुख है वो प्रकट कर रही है कि कैसे उसके जो ससुराल वाले हैं उसको पैसा नहीं देते, मैंने ससुराल वाला है वो रिपा मांगे वो पया नहीं देवे, ये सामाजिक तौर पे जो कुप्रथा है वो बतावे। तो अन्य तरीका अन्य बातें भी गीत बने थकाया आपने लोकगीता में।

0: काजल जी, आप आज बहुत अच्छी अच्छी है जिकी जानकारियां दे रहे हो, तो अंत में आपसे एक और सवाल करना चाहोना कि आज जिकी पीढ़ी है वारे वास्ते आप कहीं कहना चाहोला कि राजस्थान का लोक गीत जिका है इतना समृद्ध है आनी विरासत ने बचाने वास्ते आपने कहीं कहीं प्रयास है जिका करना चाहिए।
1: तो आज की युवा पीढ़ी जो है वह तो अतरी बिजी रह गई है, आपने जो वाइब करे तो वाइब करे, नहीं करे तो नहीं करे। मना लोक गीत महीने मना ने तो ध्यान भी नहीं रखे। तो अगर आपे यानी चीज में बढ़ावो दा, अगर आपे कोई चार जने शुरुआत करा और वो मनगाने बताओ तो वे भी होने, क्योंकि आजकल का जो है मना पतो नहीं है कि ये चीज रो मायनो कही है, ये चीज रो मतलब कही है। आप अपनी चीज ने बताऊं, अपनी चीज रो बखान करा तो वहां ने भी पतो पड़े तो वे भी आगे पहुंचावे। तो यू बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने बात है कि आप अपनी चीज ने और ज्यादा बताता रहा और वरने आज रे जमाने में डालता रहा, क्योंकि जमाना बदलिया करे तो थोड़ा सा आप भी बदलो चावे। भले लोक गीत और अनारी बात नहीं बदले, लेकिन मनो जो बतावा रो मतलब है वो थोड़ा सा बदली जा तो आपने जो युवा है वे भी आपने ज्यादा बतावा नहीं वे भी होते कि कई ज्यादा थ्रू है नहीं। जैसे कि अपनी राजस्थानी भाषा है वह आपने बोलवा में कतरा मना क्यों वे कि अरे बच्चा ने कहे कि नहीं आपने नहीं बोलनो नहीं करनो, तो वो आपने अपने फ्लो में नहीं आवे।
2: आपने रुचि किन प्रकार हुई इन क्षेत्र में? मैंने
1: देखो आपने तो बचपन ही यूं हाँ कि दादाजी और राणा सबारे लारे तो ये सब बत्रू मतलब राजस्थान जे वाता करता थ्रू वीर रस री वाता अपने महाराणा प्रताप री वाता तो अनारी जे वाता ही वणा ने सुने सुने ना अपने मतलब मारे मन में तो अत्रो आयो कि नी अन्य बारे में जानू और चावे। क्योंकि मु मेडिकल स्टूडेंट मु साइंस के स्टूडेंट और साइंस रा यूं कहवे कि साइंस रा स्टूडेंट ज्यादा रुचि रखे दूसरी चीजा में ज्यादा साइंस हूँ। तो अगर साइंस रा स्टूडेंट है तो फिर थोड़ो सो तो यू शोध में रिसर्च में तो गणो मन वे जा शुरुआत हुई रुझान तो पहलो से ही जा है। वने बाद अतरो प्रेम अपने राजस्थान लोक गीता में है, अतरो सुंदर है कि लोग जाने इतनी पही रहा है। तो अगर आप

0: बिल्कुल, देखो आप राजस्थान री ही नहीं बल्कि आप पूरे भारत री संस्कृति, इतिहास, बाणो पहनावो, बाणो खान पान सब पर आप है जिका एक कंटेंट है जिका तैयार कर रहे हो, आप शोध कर रहे हो, तो आप बहुत ही अच्छी बात है। और आज देखो आप फोन लाइन द्वारा बातचीत करी तो हम लोगों ने भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी।
1: तो बिल्कुल आज राजस्थानी संस्कृति की महक सुमहकता लोकगीता सुसजोड़े कार्यक्रम में आज अपना मेहमान आ काजल दुलावत, जो भारत रे अलग अलग राज्य की संस्कृति ने दर्शाने वाली कंटेंट क्रिएटर है। और आज अपा मरुधरारी माटी रा जो भी लोकगीत है, विड़ा रे पीछे जो भाव छिपियोड़ा है, उन्हारे बारे में जानकारी आप माने तक पहुंचाई। तो आज आपरो अनमोल समय जो मानसा आप साझा करियो उनरे वास्ते पूरी जोधपुर आकाशवाणी टीम री तरफ सु और सुनन वाला सगला श्रोतागण री तरफ सु आपरो घणो घणो आभार और धन्यवाद है।
2: धन्यवाद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर। यह आकाशवाणी केंद्र है। दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमरीका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित, समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़ से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की

0: उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओज के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्यवाहियों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
2: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
3: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज

0: कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
2: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में

0: भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आजाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: जोरू का भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। तलत महमूद की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, जयदेव का संगीत।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: जानिसार अख्तर के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। सी रामचंद्र का संगीत फिल्म यास्मीन के इस गीत में आपने सुना।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

0: वचन फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज थी, प्रेम धवन के बोल, रविशंकर का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज

0: education, nutrition, exercise, एंड वेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे. आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में सीआईडी फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत.

0: जमाना है पूरा।
1: गीता दत्त की आवाज में सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत। अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं श्री 420 फिल्म से गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की। इस गीत को सुनिए, मुझे दीजिए इजाजत।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाले हमारे सभी सखियों और सखा भाइयों को बहुत ही प्यारा सा हरा भरा खिलखिलाता मुस्कुराता सा नमस्कार।
1: क्या बात है, ये मुस्कुराता नमस्कार से लग रहा है कि मुस्कुराहट खिल जाएगी सबके चेहरे पर, वरना तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग बस बहुत गर्मी है,
2: इसीलिए हमने ऐसा बोला।
1: धरती तप रही है, धरती गर्म हो रही है,
2: बहुत सारी चीजें हो रही है, प्रकृति में बदलाव हो रहा है, तो उसकी मार तो सभी लोग झेल रहे हैं देखिए। और उससे निपटने के लिए हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस जो है उस पर चर्चा करेंगे।
1: मंजरी जी, हम कहीं जब बाहर जाते हैं, अपने शहरों से महानगरों से बाहर निकलते हैं, तो हरे भरे पेड़ हमें लुभाते हैं, जंगल हमारा मतलब मन मोहते हैं और हम ठहर जाते हैं, लेकिन वहीं पर दूर दूर तक अगर सूखा दिखता है, कहीं कोई पेड़ नहीं है, बंजर धरती दिखती है, तो मन थोड़ा खिन्न होता है ना।
2: बिल्कुल।
1: तो हमें क्या करना चाहिए वहां पर हरियाली रोपने के लिए? कुछ निजी स्तर पर कोशिशें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुहिम चलाते हैं हरियाली को, धरती की हरियाली को बचाए रखने के लिए, जाते हैं रस्तों में तो बीज ढेर सारे ले जाते हैं और बीज बोते हैं, फेंकते हैं जगहों पर जहां पर पेड़ पौधे नहीं है। तो ये सब हम सब भी कर सकते हैं,
2: बिल्कुल कर सकते
1: और
2: हैं।
1: घर के आसपास तो ये काम हम कर ही सकते हैं।
2: बिल्कुल। और हम लोग जब इस विषय पर और बातें करेंगे और चर्चा करेंगे तो आपने जो कहा है वो बहुत सही है बात है, ऐसा हम लोग सोचें तो हमारी धरती का कोना कोना हरा भरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो अगला विषय ममता जी वो बता देते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके, इसमें हमने आज लिया है प्रोत्साहन शब्द, तो इस पर हमारे सभी साथियों ने लिखकर भेजा भी है और जो सुन रहे हैं वो भी लिखकर भेज सकते हैं।
1: किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, खासतौर से बच्चों को प्रोत्साहन की बहुत जरूरत होती है, ना कि ये तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है, ये तो प्रोत्साहन की जरूरत बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी पड़ती है। अगर कुछ किसी से काम करवाना है तो हम जरा तारीफ कर देते हैं और कहते हैं कि अरे आपको ये काम बहुत अच्छा आता है, आप तो बहुत एक्सपर्ट है,
2: उत्साह।
1: तो ये आप क्या करते हैं, मतलब हम श्रोताओं से पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं जब आपको प्रोत्साहित करना होता है, तो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कौन से वाक्य प्रयोग करते हैं,
2: और माएं बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करती हैं ना,
1: और उसका असर क्या होता है ये भी बताइए। कहीं कई कोई घटना है कि आपने किसी को प्रोत्साहित किया और काम बन गया, वो भी बता सकते हैं
2: जी
1: विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, है ना।
2: और डायरी लिखने की आदत बड़ी खूबसूरत सी आदत होती है, तो आप लोग कितना लिखते हैं वो भी बताइए।
1: पूरा मन उड़ेल देते हैं
2: जी,
1: क्योंकि दिल में जो कुछ भरा है गागर वो सारा उड़ेल देना है, मन में जो सागर भरा हुआ
2: जी,
1: वो गागर में उड़ेल देना है। तो डायरी आपकी ऐसी दोस्त है कि डायरी से बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। कई बार हम डायरी में

0: वो लिख सकते हैं जो किसी से कह नहीं पाते हैं, कहना चाहते हैं लेकिन एक संकोच होता है, अरे लोग क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब निकालेंगे। कई बार अनबन होती है आपस में, रिश्तों में दरार आती है, कई बार बहुत खुशी के लम्हात होते हैं, तो ये सब कुछ हम डायरी में अंकित करते हैं। अब ये हम सब करते हैं, हमारे श्रोता क्या करते हैं वो अपने विचार हमें बताएं कि डायरी लिखने की जो आदत है वो उनकी कितनी आदत है, और आने वाली पीढ़ी को डायरी से कितना कितनी दोस्ती कराई है ये भी बताएं।
1: उनके लिए तो मोबाइल ही डायरी हो गई है।
0: ठीक है, तो मोबाइल की डायरी में एक नोटपैड बनाएं और उसमें भी डायरी लिख सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वो भी एक जरिया है, क्योंकि आप जबरदस्ती कागज कलम तो नहीं पकड़ा सकते।
1: ये बात तो सही है, लेकिन जो मजा कागज और कलम है डायरी में है वो मोबाइल में नहीं है। तो देखिए, अगली बात हम करने वाले हैं साड़ियों का संसार में। आज मैंने बांधनी साड़ी जो राजस्थान और गुजरात में काफी बनाई जाती, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब विषयों से पहले, चर्चा करने से पहले गीत
0: सुनते हैं, और श्रोताओं को क्योंकि इंतजार होगा गीत का, और हमें इंतजार है कि डायरी वाली जो बात है उसका कोई किस्सा, कि कोई डायरी यादगार डायरी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घर परिवार की, कई बार अपने राष्ट्रीय स्तर की डायरी बहुत चर्चित हो जाती है, किताब की शक्ल में आती है डायरी, तो वो भी आप बता सकते हैं कि क्या आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी है जिसमें जो डायरी की शक्ल में लिखी गई है। फिलहाल ये गाना।

0: पवन दीवानी न माने डॉक्टर विद्या फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत था। भाई मोबाइल की दुनिया से बाहर आई है मंजरी जी,
1: देखिए
0: श्रोताओं की टिप्पणियों में खो गई है पता है।
1: ममता जी देखिए उधर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब उनके विषय जो संदेश लिखते हैं उनको भी हमें वहां से निकाल के लाना है अपने पास और आपको भी देना है, तो उधर

0: उलझे हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है. मेरा दिमाग लगा हुआ है कि आज जो हम बात करने वाले हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के बारे में. तो देखिए, धरती पर जो हरियाली है उसकी सुंदरता को चार चांद जो है वो हरियाली ही, पेड़ पौधे ही लगाते हैं, और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी को जो भोजन मिलता है या पानी, औषधियाँ, फल फूल, सब इन्हीं वृक्ष पेड़ पौधों के द्वारा ही तो मिलता है ना ममता जी.
1: बिल्कुल सही बात है, प्रकृति है तो हमारा वजूद है, इसके बिना जीवन कुछ है ही नहीं, अधूरा है. हमारे पूर्वजों ने जो प्रकृति को संरक्षण के लिए जो कोशिशें की है उसका ख्याल हमें भी रखना चाहिए. असंख्य जो पौधे उन्होंने लगाए हैं पेड़ के रूप में फलित हो रहे हैं, जो जैसे आम है, जामुन है और तरह तरह के पेड़ हैं, और खेतों में जो फसलें उन्होंने उगाई हैं और वो खेत अब आज भी लहलहाते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बाग और खेत चले आ रहे हैं. लेकिन हमारी क्या भूमिका होती है उसे उपजाऊ बनाए रखने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए. आधुनिकता की दौड़ में इस कदर हम भागे जा रहे हैं कि सोचते भी नहीं कि शहरों के नवीनीकरण से जो धरती है वो चोटिल हो रही है. जंगलों में पेड़ की कटाई हो रही है, खेतों को शहरी विकास के चक्कर में खत्म किए जा रहे हैं. आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ेंगे ये आज ही सोचना होगा हमें, वरना जो धरती की उर्वरा क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी, बची नहीं रहेगी.
0: बिल्कुल सही बात है. और जब क्या कहते हैं कि जब धरती जो उपजाऊ शक्ति खो देती है तो उसमें ना भी आप पेड़ पौधे लगाने की सोचिए, उसमें से कुछ भी निकलता नहीं है, तो वो स्थिति बहुत हृदय विदारक हो जाती है. और जो प्रकृति है तो हमारा वजूद भी उसी से है, क्योंकि उसके बिना जीवन बिल्कुल संभव नहीं है कहा जाए. और इस दिन की जो मनाने की शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में की थी, जब उसने मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया और इसलिए एक मुहिम चलाएगी. और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाने के विषय में सोचा गया था.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और इस दिन की घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी. उस दिन के बाद जब मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का मसौदा तैयार किया गया था, जिससे बंजर होती भूमि, भूमि के क्षरण और सूखे के वैश्विक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1995 से यह दिवस घोषित किया था. और तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है. और इसका उद्देश्य भी है कि हम उन जगहों को पर भी ध्यान दें जहां पर सूखा है, तो वहां पर पेड़ पौधे लगाने का सोचें, और साथ में वहां पर पानी हम कैसे उनको देंगे इसकी भी व्यवस्था पूरी तरह से करनी चाहिए.
1: बिल्कुल. सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा अगर नहीं होती है तो वहां सूखा पड़ता है. कृषि, पशुपालन और जैविक विविधता और मानव जीवन पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं. लेकिन जो सूखे प्रदेश हैं जहां पर हम अपने हाथ से जो हरियाली रोप सकते हैं वो मुहिम हम चला सकते हैं.
0: बिल्कुल. और मतलब जी, जो हमारे जो खेत वगैरह होते हैं उसमें खाद का भी बहुत बड़ा योगदान होता है. जो प्रकृति के द्वारा जो बनाते हैं खाद, पत्ते गोबर वगैरह से डाल के जो खाद बनाई जाती है उससे ज्यादा अच्छा रहता है पेड़ पौधों को उगना. लेकिन उसकी जगह रासायनिक खाद का भी उपयोग करने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनकी पैदावार पर, फसलों पर असर तो पड़ता ही पड़ता है. और जैविक खेती को अगर अपनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है. और साथ में वर्षा का जल, जब वर्षा बरसती पानी का मौसम आएगा तो हमें जल संचय कैसे करना है उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि तालाब बनवाना है, कुएं है, बावड़ी, इस तरह की चीजों को हमें बनाना चाहिए.
1: पानी को बचाने के लिए और जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण होता है जब हम पहाड़ों की ओर जाते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा जो ग्रामीण इलाके हैं, पहाड़ों पर जो छोटे छोटे गांव हैं, वहां पर ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑन किया और गीजर चालू हो गया, स्विच ऑन किया पानी शुरू हो गया. तो वहां हमने देखा है कि टपरी बनी है, मान लीजिए छोटी छोटी चाय की दुकान है या कुछ समोसे बिक रहे हैं, बन रहे हैं, छोटी सी टपरी बनी हुई है, तो टपरी के नीचे बड़े बड़े बकेट रख दिए जाते हैं, बाल्टियां या ड्रम. तो जब बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ों पर तो बारिश बहुत ज्यादा होती है, और कब होती है ये बिल्कुल तय नहीं होता, अचानक बारिश, अचानक धूप हो जाती है, तो वो लगा रहता है, बाल्टी रखी रहती है, बारिश हुई तो वो जो बारिश का पानी है उस बाल्टी में इकट्ठा होता है. तो हमने कई बार पूछा भी लोगों से, तो उनका यही कहना है कि ये पानी हम इकट्ठा करके बाकायदा इसका उपयोग करते हैं और पानी एकदम स्वच्छ होता है, क्योंकि उधर पहाड़ों की ओर गंदगी कम होती है, तो ना के बराबर होती है, जो एकदम जहां पर लोगों की पहुंच नहीं है वहां तो बिल्कुल नहीं कूड़ा कचरा दिखाई

0: देता है।
1: बिल्कुल
0: तो ये सब हम अपने घर आंगन में भी कर सकते हैं, जो आंगन वाले घर हैं वहां हम कर सकते हैं।
1: अपने आप याद कीजिए कि हम लोग के घरों में भी ये चीज होती थी कि बारिश के पानी के लिए मतलब अपना लगा दी बाल्टी वगैरह रख दी और बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं छत से वो आ रहा है पानी उस जगह से ढलान से तो वहां इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो बर्तन धोने फर्श धोने इन सब के काम बहुत
0: बचपन में
1: था।
0: तो खेल खेल में भी पानी इकट्ठा किया जाता था, छोटे छोटे बर्तन रख दिए जाते थे, देखते हैं किसके बर्तन में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है। और ये कहा जाता था कि बादल हम पर ज्यादा मेहरबान है, पानी हमारे तसले में ज्यादा भर गया।
1: और हम बच्चे तो छाता उल्टा कर देते थे।
0: ये जो खेल खेल में पानी इकट्ठा करने की आदत है, ये आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना चाहिए कि पानी का उपयोग किस तरह से करें। बहुत सारे लोग हैं कि नल खोल देते हैं, क्या नल खोल दिया तो पानी बह रहा है। तो जब धरती जहां बंजर होती है, धरती जहां जहां पर हरियाली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो सूखा है, वहां उनसे पूछिए कि क्या अहमियत है
1: बिल्कुल
0: हरियाली की और पानी की।
1: बिल्कुल, और इन सब चीजों के पीछे हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, खेतों को नष्ट करते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत जिम्मेदार हैं।
0: आपने कहा कि खाद की बात कही थी
1: जी,
0: ना मंजरी जी, कि जैविक खाद और रासायनिक खाद भी इकट्ठा करें। अभी अभी हेलो फरमाइश में हेलो फरमाइश प्रोग्राम में एक श्रोता ने हमें बताया कि वो लोग गोबर से खाद बनाते हैं, मतलब गोबर एक गड्ढा बनाते हैं जहां पर गाय भैंस के गोबर इकट्ठा करते हैं, और ये गांव में होता है अमूमन। तो वो अपना अनुभव बता रहे थे कि वो इकट्ठा करते हैं और उसे ले जाकर खेतों में डालते हैं, और ये कॉल एक महिला का था
1: जी।
0: तो अब ये कृषक महिला भी हो रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और अब बहुत अच्छी बात ये होगी कि हमें गाना सुनवा दे अपने श्रोताओं को।
2: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
3: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणोजी का बाग, खोखरिया, वीरामंडो।
2: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
4: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: मंजरी जी, साड़ियों के संसार पर चर्चा हो रही है इन दिनों, और एक सेगमेंट है बाकायदा सखी सहेली में, तो आज हम चर्चा करेंगे। साड़ी वैसे भी पारंपरिक पोशाक है, और जब भी कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो कौन सी वाली साड़ी पहनी जाए, बहुत पहले से चयन किया जाता है, साड़ियों का बक्सा खुल जाता है। आप क्या करती हैं?
1: मेरा भी खुल जाता है और उसमें देखते हैं तरह तरह की साड़ियां देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जैसा मौसम होता है उस हिसाब से साड़ी पहनने का मन करता है। तो अगर जैसे बारिश का मौसम होगा तो लगेगा कि भाई हरा भरा मौसम रहता है, तो लगेगा कि भाई ऐसी साड़ी पहने जिसमें कलर बहुत चटक रंग हो। तो ध्यान तो मेरा तो सीधा इसी पे चला जाता है कि बांधनी की साड़ी, लहरिया की साड़ी, बंधेज वाली साड़ी पहना जाए। तो उनका पहनने का एक अपना अलग मजा होता है। और जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, तो इस समय बस याद आता है कि हल्के कलर पहने, आसमानी, गुलाबी, और सूती साड़ियां हो जो बहुत अच्छी लगे। और सूती साड़ी पर अगर बांधनी का काम हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर तो लगेगा ये भी पहन लेते हैं, है ना?
0: सही बात है।
1: तो जो कहते हैं ना ममता जी, बांधनी जो साड़ी है, इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, प्राचीन काल से इसका समझ लीजिए चला आ रहा है। और बांधनी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, बंध से लिया गया है, और बांधनी या बंधेज भी इसको कहा जाता है। साड़ियां ये जो है मुख्य रूप से भारत के गुजरात में जामनगर और वहां पर कच्छ, भुज और अहमदाबाद में बांधनी के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्र हैं। और वहीं राजस्थान में भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सीकर अपने बेहतरीन कामों के लिए, बंधेज के कामों के लिए, बांधनी साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जब हम वहां जाते हैं तो देखते हैं दुकानों पर इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां टंगी रहती है, और साथ में जो महिलाओं को हम देखते हैं विशेष त्योहारों पर, तो वो उनके जो रंग होते हैं बांधनी साड़ियों के, तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बारीकी तरीके से बांधा जाता है। और इन साड़ियों को ममता जी टाई डाई तकनीक से हाथों के द्वारा धागों से बांधकर बनाया जाता है, और जिसके रंग कार जो है बेहद आकर्षक डिजाइन तैयार करते हैं, और बिल्कुल हाथ से और पतला पतला करके बांधा जाता है। कई लोग चने बांधते हैं, कई लोग दाल बांधते हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर भी बांधते हैं उसमें डिजाइन अलग अलग तरह से देने के लिए।
0: मतलब काफी मेहनत लगती है, और समय भी लगता है, ऊर्जा भी लगती है। बांधनी बनाने की प्रक्रिया बड़ी मेहनत वाली होती है। सबसे पहले साड़ी के लिए कपड़ा चुना जाता है, और कपड़े पर हल्के निशान बनाए जाते हैं ताकि डिजाइन बिल्कुल सटीक बने। कारीगर कपड़े की छोटी छोटी पोटलियां बना लेते हैं, उन्हें धागे से कसकर बांधते हैं। अब कपड़ों को रंगों में इसके बाद डुबोया जाता है। कई बार तो अलग अलग रंगों के लिए ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। रंग सूखने के बाद धागे खोले जाते हैं और सुंदर गोल, लहरदार या फूल जैसे डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। और बांधनी साड़ी जो है वो कई प्रकार के कपड़ों पर बनाई जाती है, जैसे कि रेशम से आपको दिखेगी, जॉर्जेट, कॉटन, मलमल से भी बनाया जाता है, शिफॉन, क्रेप और सिल्क पर भी बांधनी का काम होता है। और राजस्थान में बांधनी में पारंपरिक राजस्थानी रंग और बड़े पैटर्न देखने को मिलते हैं, जबकि गुजरात में बंधेज में बारीक डिजाइन और चमकीले रंग खास माने जाते हैं। और ये बांधनी साड़ी विभिन्न रंगों और प्रिंटों में आती है, और खोम्बी, पटोरी, घरचोला और चंद्रोहानी, इसके अलावा ये काम साड़ी, कुर्ता, सलवार कमीज और चनिया चोली में भी पाया जा सकता है। यानी कि अब इसका जो काम है, इसका वर्क है, बहुत तरीके से बढ़ गया है, हर तरीके के, उसमें कांच से भी, सितारों से भी काम होगा, और जरी के भी गोटे लगे रहते हैं, तो बहुत खूबसूरत बना दी जाती है इन साड़ियों को।
0: गुजराती बांधनी रेशम या कपास से बनी इस शैली में मोर होते हैं, फूल और हाथी जैसे आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। ये नवरात्रि और शादियों के दौरान बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। और राजस्थानी बांधनी में जैसे कि बड़े चटकलाल, पीला रंग, लहरिया और जैसे चक्करदार रूपांकन होता है, मोथरा जिसे कहते हैं, ये खास पहचान है राजस्थानी बांधनी की। और बाकी राजस्थानी बांधनी या गुजराती बांधनी के और जो प्रकार हैं, और जो हमारे जो राजस्थान और गुजरात के श्रोता हैं वो भी बता सकते हैं कि क्या खासियत है साड़ियों की। भुज में खास तरह की बांधनी होती है। कच्छ के आदिवासी आकृतियां आमतौर पर काले और लाल रंग में, जिनमें बारीक ज्यामितीय बिंदु होते हैं। मॉडर्न बांधनी समकालीन सौंदर्य बोध के लिए डिजिटल प्रिंट के इस्तेमाल किए जाते हैं, और पेस्टल रंगों का उपयोग भी किया जाता है, और कुछ फ्यूजन डिजाइन भी बनाई जाती है
1: जी। और हमारे साथी

0: भी लिखते हैं कि बांधनी साड़ी प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में पहनी जाती है और उसका डिजाइन बहुत ही सुंदर होता है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथ में हमारे साथी और भी लिख रहे हैं कि बांधनी साड़ी भारत की सबसे प्राचीन और जीवंत डाई वस्त्र कलाओं में से एक है और मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान राज्यों में बहुत प्रचलित है और बिंदिया बहुत बारीक होती हैं और चटक रंग की होती हैं, तो इसका जो है सांस्कृतिक महत्व भी है, त्योहार उत्सव पर भी खूब पहनी जाती है।
1: और इन साड़ियों के साथ चूड़ी का भी कॉम्बिनेशन होता है,
0: बिल्कुल साज श्रृंगार तो बहुत जरूरी है।
1: और उसी रंग की अगर चूड़ी पहन ली जाए तो फिर और लुक एकदम अलग आ जाता है। अब ये बात तो ये इस गाने के साथ हम जोड़ रहे हैं, तो सुनते हैं ये गाना हरे कांच की चूड़ियां, फिल्म का नाम है

0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों की।
3: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
4: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
3: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
5: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
6: हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गए कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
8: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
7: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय सखियां सहेलियां और सखा सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम और बात अब डायरी की चल पड़ी है। डायरी लिखना एक कला भी है और डायरी लिखने से तनाव दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और एक फायदा और होता है कि कई बरस बाद, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई बात लिखी डायरी में, अब से 20 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उसे देखेगी पढ़ेगी तो आज क्या क्या हुआ वो जानेगी और क्या माहौल था घर का। माँ डायरी लिख रही, पिता डायरी लिख रहे हैं तो बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो वो एक जानकारी मिलती है और एक अलग अनुभव होता है।
9: बिल्कुल,
0: है ना,
9: बिल्कुल। डायरी जो लिखने की आदत है उसमें बहुत सारी बातें आपके जीवन की आ जाती है। उस वर्ष आपने, उस महीने आपने क्या चीज फेस करी अपने जीवन में, सुख दुख सब हंसी खुशी सब कुछ उसमें रहता।
0: सूखा पड़ा, बारिश हुई बहुत ज्यादा,
9: बिल्कुल,
0: और बहुत खुशगवार दिन था, शादी ब्याह, दुनिया भर की बातें आ जाती है। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने एक बात लिखी है, लिखा है कि 10वीं क्लास पास करते ही मुझे भी डायरी लिखने का खूब शौक चढ़ा था। एक युवा लड़की की डायरी में जो जो लिखा जा सकता था वो सब मैं रोज लिखती थी। जैसे कि आज शाम गजब की बारिश हुई, कल रात मेरे कमरे में घुप अंधेरा, एकाएक जानी पहचानी खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई, मेरी आंखों में चमक सी जागी। स्कूल जाते समय एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है, कल तक जो बेरंग था आज सब कुछ रंग बिरंगा लग रहा है। मेरे मन में एक कविता आकार ले रही है मगर शब्द साथ नहीं दे रहे। फिर मैंने कविता के ख्याल को झटक दिया। चाहतों से भरी जिंदगी में डायरी अपनी किसी सहेली की तरह होती है और जब हकीकत के थपेड़े पड़ते हैं तो डायरी लिखने में बड़ा सुकून मिलता है। डायरी में फिल्मी गीत भी बहुत लिखे हैं पर अब डायरी नहीं लिखती। भाई क्यों नहीं लिखती है?
9: जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मैं तो उसी में डूब गई थी।

0: सवाल ये है कि क्यों नहीं लिखती है,
1: लिखना चाहिए,
0: लिखना चाहिए बिल्कुल। हाँ ये जरूर है कि अगर कागज कलम साथ में नहीं होता है तो आपके पास बड़ा अच्छा यंत्र है, मोबाइल यंत्र, आप कहीं बाहर हैं, रस्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में है, विमान में है, या फिर कार में, गाड़ी में, बस में, ऑटो रिक्शा में, तो वहां भी आप डायरी लिख सकते हैं, बोल के टाइप करने की भी सुविधा है। तो
1: जी बिल्कुल, और हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना अच्छा भी है और कुछ हद तक नहीं भी अच्छा, इसलिए कि दिन भर की अच्छी बुरी बातों को

0: भी अच्छा इसलिए कि दिन भर की अच्छी बुरी बातों को लिख कर रख देना और मन को हल्का कर लेना। 6 महीने पहले का पन्ना पलटा पलटो तो लगता है उस समय की यही बात कितनी बुरी लगती थी कि, लेकिन समय की धूल ने उस पर पर्दा डाल दिया। डायरी लिखने से यादें जिंदा रहती हैं। बच्चे की पहली हंसी से लेकर पिता की आखिरी नसीहत मानो सब कुछ कह रही हो, लेकिन यही आदत तब बुरी बन जाती जब डायरी में सिर्फ दुख नफरत और शिकायतें लिखते रहो, तो यही डायरी जिंदगी को दलदल बना देती है। वाकई सही बात आपने कहा है और व्यक्ति उसी में धंसता चला जाता है, इसलिए हर दिन जैसा व्यक्ति व्यतीत होता है उसको स्वीकार करो और डायरी में लिखो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब भी पिछले पन्ने पलटो तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिनों को बराबर सम्मान दो। उन पन्नों में सिर्फ सुख के ही पन्नों को महत्व ना दो। मुझे डायरी लिखने की आदत है पर व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, सिर्फ अपनी कृषि भूमि में किस सीजन में कौन सी फसल बोई थी उसकी और शाप की हर दिन के आय और व्यय का हिसाब भी लिख।
1: कहा जाता है कि डायरी और संस्मरण ईमानदारी से लिखा जाता
0: बहुत
1: है,
0: ईमानदारी से,
1: और उसमें डायरी में जो भी बात लिखे सच लिखे, क्योंकि झूठ लिखने का कोई मतलब नहीं होता।
0: नहीं।
1: कुछ लोग डायरी भी आत्मश्लाघा में लीन होकर लिखते हैं पर अपनी तारीफ, तो उससे कोई मतलब नहीं होता,
0: नहीं होता।
1: सच को सच की तरह लिखे, झूठ को झूठ लिखे कि ये गलत था,
0: तो उस समय का पता चलेगा कि आपने जीवन में क्या बिताया।
1: अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। एक बार उनकी सीट पर बैठा तो उनकी डायरी हाथ आ गई। मैंने खोल कर देखी तो जो पढ़ा वो सच में गजब ही था। नाना जी का स्वतंत्रता संग्राम में जेल के दिन, उनके साथियों के साथ क्रांति के दिन, मैं तो एक्साइटेड हो गया था। और खोजा तो वो डायरी भी मिली जिसमें मेरी माँ की शादी के बारे में भी पूर्ण ब्यौरा लिखा गया था। उसे पढ़ा तो लगा जैसे मैं उन दिनों के लम्हों को जी रहा था। सच में डायरी लिखना बहुत बड़ी बात है, वर्षों बाद भी आपके पुराने दिन जीवित रहते हैं। आजकल जो मोबाइल में नोटपैड पर लिखना डायरी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल 5-7 साल में बदलना ही पड़ता है, जबकि डायरी आपके साथ है तो उसके बाद भी रहती है। बिल्कुल सही है, डायरी का तो कोई मुकाबला नहीं है, कागज और पन्नों का कोई मुकाबला नहीं है। वो कलम से जो बैठ के लिखते हैं
0: उसका
1: तो
0: नहीं मजा
1: जो
0: है।
1: हौले हौले जज्बात निखर के आते हैं, कागज पर चमकते हैं, तो वो बात निराली होती है, लेकिन न से तो बेहतर है कुछ। तो इसलिए कि अगर आप लिखते ही नहीं तो कम से कम मोबाइल के नोटपैड पर लिख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और
0: जी
1: डायरी अगर लिखने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल, और देखिये हमारी साथी लिखते हैं कि डायरी लिखने मैंने 8th क्लास से शुरू किया था। मुझे क्लास और घर की दिन भर की सभी घटनाओं को रोज लिखा करती थी और आज भी कायम है। सोने से पहले डायरी लिखकर बड़ा सुकून मिलता है। बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है और मुझे लगता है कि आपको भी डायरी लिखने का शौक है।
1: भाई अगर डायरी लिखने से कई बार लिखने की ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए हम सबको डायरी लिखनी चाहिए। हमें आपको भी लिखनी चाहिए।
0: लिखते
1: फिलहाल गाना सुनना चाहिए।

0: लिखे जो खत तुझे, खत लिखना भी एक आदत है और आजकल खत लिखने का चलन भी खत्म हो रहा है, तो उसे भी जिंदा रखना चाहिए। इसीलिए विविध भारती ने जिंदा रखने के लिए शुरुआत की है मन चाहे गीत की। मन चाहे गीत कार्यक्रम में फिर से चिट्ठियां आनी शुरू हो गई और एक दो नहीं, बहुत ढेर सारी चिट्ठियां आनी शुरू हो गई हैं और अब फिर वही स्थिति हो गई कि कौन सी वाली चिट्ठी ले पहले, कौन सी वाली बाद में ले, तो बस वो आंख मूंद के उठाने वाली नौबत आ गई। तो हमें चिट्ठियों से प्यार होता है, इससे ये जाहिर है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है, जब हम पन्ने पलट कर पढ़ते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। डायरी के अंदर मैंने कुछ पुराने पत्रों को भी संजो कर रखा है, उसे पढ़कर भी बहुत अच्छा लगता है। डायरी तो जरूर लिखनी चाहिए, मन में नए विचार भावनाएं जागृत होती हैं, दुख लिख देने से वो कम होने लगता है। डायरी हमारे मित्र है जो हमारे राज किसी से नहीं कहती है और हम पूरे विश्वास के साथ उसे अपनी सारी बातें कह देते हैं, लेकिन कई बार अपनी प्रेम कहानी जब लिखते हैं और छुपाते हैं तो वो जब उजागर होता है तो फिर वो दोस्त नहीं रह जाती है डायरी।
1: देखिए ममता जी, एक ऐसा भी उस समय भी ऐसा चला था, भाई लिखते तो थे ही डायरी सब लोग, लेकिन उसमें भी अपने दिल की बातें लिखते थे प्यार भरी।
0: आपने लिखी है कभी?
1: तो ये बात तो बताई जा सकती है क्योंकि ये बात को रहने
0: उजागर, राज को राज रहने,
1: राज को राज ही रहने देते हैं। तो लेकिन हम वो ये कह रहे थे ममता जी कि जो उस समय भी डायरियां बड़ी डिजाइनर डायरियां आती थी और कुछ डायरियां ऐसी आती थी ममता जी उसमें लॉक होता था, तो मैंने खुद देखा है कि वो लॉक वाली रहती थी, उसमें वो स्पेशल खास
0: वो अभी भी आती है।
1: हाँ,
0: बस शौक होना चाहिए डायरी खरीदने का, डायरी लिखने का और डायरी तोहफे में देने का भी एक अलग मजा है।
1: सोचते हैं हम आपको दे देते हैं, आप मुझे। फिलहाल तो हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो एक साथी लिखते हैं कि मुझे डायरी लिखने का शौक है। कोई आवश्यक कार्य नोट करता हूँ। 2005 में हमारे पूरे परिवार करीब 45 लोग और सहायक बस चलाने वाला रसोई मैनेजमेंट 6 लोग कुल 50 व्यक्ति ने बद्रीनाथ तक का 21 दिनों का प्रवास किया था। उनका सभी वर्णन मैंने लिखा हुआ है। आज भी कभी डायरी देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो पूरा प्रवास के स्थलों, कहाँ रुके, भोजन का मेनू सभी विवरण पढ़ते हैं तो नजर समक्ष पूरा प्रवास याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल सही लिखा है आपने।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आपका मन हल्का होता है एक तो डायरी लिखने से। वैसे मैं लिखती हूँ कुछ लेन देन की बातें, कुछ वैसी बातें जो मुझे याद रखनी चाहिए, यानी मैं पेन जरूर उठाती हूँ। आजकल स्लेट और पेंसिल पर सुरीला सफर के इबारत पढ़कर गाने और क्या कुछ कहना है लिखती हूँ। क्या बात है भाई, जब मैं लिखती रहती हूँ तो मेरी हेल्पर आ जाती है तो पूछती है कि चाची अब आप क्या पढ़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं, तो मैं हंस के कह देती हूँ बस ऐसी कुछ कुछ बातें लिखते हैं और फिर मिटा देते हैं। और ये जो लिखी है कि लेन देन की बातें लिखते हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो बाकायदा कागज कलम लेकर जो घर की जरूरी चीजें हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और उस लिस्ट को देते हैं अपने बच्चों को कि ले जाओ ये सामान लेकर आओ। हम अमूमन क्या होता है कि सीधे स्टोर में जाते हैं या मॉल में जाते हैं और चीजें दिखती हैं, सामान रखते जाते हैं, भरते जाते हैं, कई बार अनावश्यक चीजें आ जाती हैं।
1: हमें याद है ममता जी, जो आपने बुजुर्गों की बात की आदत बताई है, तो वो लोग इसलिए भी लिखते थे कि महीने में हमने कितना खर्च किया, अगले महीने हमें कहाँ पे कटौती करनी है, तो वो एक पूरा बजट बना के चलते थे। तो हमने भी अपने बड़ों से यही सीखा है, तो वो डायरी उस तरह का हम भी नोट बनाते हैं घर पे कि हम अगले महीने किस चीज को माइनस करते हैं, तो एक बजट बना के जब चलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है और गृहस्थी में तो बहुत जरूरी होता है।
0: पढ़ाई की बातें और गानों की बातें, संगीत की बातें और तो और संगीत सरिता जो प्रोग्राम

0: प्रसारित होता है आज भी, हम जब छोटे थे सुनते थे तो अपनी डायरी में संगीत सरिता से जुड़ी जो बातें होती, जानकारियां, वो डायरी में नोट करते थे और उन जानकारियों के आधार पर अपनी बातें लिखा करते थे।
1: तो
0: ये हम सबकी आदत में शुमार है ये सब डायरी लिखना, लेकिन अब कहीं विलुप्त हो रहा है ये चलन।
1: बिल्कुल, लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायरी लिखना एक बहुत अच्छी उपयोगी आदत है, ये हम अपने दैनिक अनुभव, विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर देती है। डायरी लिखने से आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है और हम अपनी गलतियों तथा उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये हमारी लेखन कला को भी निखारती है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाती है। कई वर्षों बाद जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो जीवन के अनेक यादगार पल फिर से ताजा हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत लाभदायक है।
0: और साथ में संगीत सुनते रहें तो ये और ज्यादा लाभदायक होता है। सुनिए ये गाना।

0: छाया फिल्म का ये गाना था और डायरी लिखने पर हमारे श्रोता बहुत सारे टिप्पणियां लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर डायरी लिखने की बात है तो महात्मा गांधी जी के जो सचिव हैं उनको कैसे भुला सकते हैं। उन्होंने साल 1917 से 1942 तक नियमित रूप से डायरी लिखी थी जिसमें स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के जीवन का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज दर्ज है।
1: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं कि एक जमाना था, मुझे भी डायरी लिखने की आदत थी जो मेरे ससुर जी से प्रेरणा मिली थी। अब तो डायरी लिखना छोड़ दिया है, भले ही अब डायरी लिखना छूट गया है, लेकिन वो शौक आज भी दिल के

0: किसी कोने में एक मीठी सी याद बनकर जिंदा है। डायरी लिखना छोड़ देने से शायद हम अपनी रोज की बातें दर्ज करना भूल गए हों, लेकिन ये वो आदत हमें अपने विचारों को गहराई से समझना सिखा गई है।
1: मंजरी जी, एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि डायरी लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पतिदेव डायरी लिखते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्हें बहुत पसंद था डायरी लिखना। आज जयपुर में वो नहीं है, उनके न रहने पर जब मैं डायरी उठाकर देखती हूँ तो एक एक दिन का हाल दर्ज है। जब हम लोगों की लव स्टोरी चलती थी तब से लेकर जब बच्चे हुए, घर की कोई बात हमेशा उसमें दर्ज है, जो पढ़कर ऐसा लगता है कि पुराने सालों में जिंदगी पहुंच गई है। वाकई बहुत अच्छी आदत है डायरी लिखना।
0: बिल्कुल। और हमारे जो और साथी हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो हमने शब्द दिया था
1: प्रोत्साहन, डायरी लिखने के लिए एक तरह का
0: प्रोत्साहन भी था ये, और हमने प्रोत्साहन लिया है। तो ममता जी, प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने, बेहतर करने और कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने की प्रेरणा देती है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी निराश, असफलता और कठिनाइयों का सामना करता है, और ऐसे में यदि हम किसी का उत्साह बढ़ाने वाले शब्द, सहयोग या विश्वास मिल जाए तो वही प्रोत्साहन उसके लिए एक नई ऊर्जा बन जाता है।
1: बिल्कुल। अब प्रोत्साहन हमने डायरी के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी लिखनी चाहिए पर जब उसको उठाओ पढ़ो तो पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं, तो दुख कुरेद जाता है तो मैंने छोड़ दिया। आज भी कभी मन होता है तो लिखने बैठ जाती हूँ, बस अपने भाव सहज लेती हूँ। ये तो दोनों सकारात्मक नकारात्मक दो पहलू होते हैं, तो आपके दुख, अगर दुख को पलटेंगी बार बार तो वो तो आपके मन में भी वो घाव ही पैदा करेगा।
0: बिल्कुल सही बात है। तो कुछ अच्छी बातें भी सोच के आप लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोत्साहन, तो हमारे साथी भी लिख रहे हैं देखिए प्रोत्साहन पर, कि प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और उत्साह का संचार करती है। जब कोई हमारा हौसला बढ़ाता है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं, और एक छोटा सा प्रशंसा का शब्द या विश्वास भरा साथ किसी के जीवन की दिशा भी बदल सकता है, हमारे साथी लिख रहे हैं। और प्रोत्साहन जो है वो केवल बड़े कार्यों के लिए आवश्यक नहीं होता है ममता जी, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चे को पढ़ाई के लिए, खिलाड़ी को जीत के लिए, और कलाकार को अपनी कला के लिए, और कर्मचारी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और जब किसी व्यक्ति के कार्य की सराहना की जाती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अधिक मेहनत करने के लिए भी प्रेरित होता है। जैसे कि हम लोग करते हैं प्रोग्राम, तो अगर हमारी प्रशंसा होती है या प्रोत्साहन दिया जाता है कि इसको और अच्छे से करो, उत्साह बढ़ता है, तो लगता है कि नहीं अगली बार हम और अच्छा करेंगे। तो ये चीज हर के साथ होती है।
1: प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार तो लोग बहुत अच्छे काम में भी कुछ न कुछ मीन मेक निकाल ही देते हैं कि अरे इसमें ये कमी रह गई, तो वो सही चीज बताने के, सही गलती की ओर इशारा करना अच्छी बात है, आपकी सही निंदा करना अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से मीन मेक निकालना ठीक नहीं होता है, बल्कि काम को प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि प्रोत्साहन एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाकर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि प्रेरणा का वह पुंज है जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का संबल देता है।
1: और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि बच्चों को प्रोत्साहन देने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना की जाए। जब बच्चे कोई अच्छा कार्य करें, मेहनत करें, नई चीज सीखने का प्रयास करें तो उनकी प्रशंसा करें, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि गलतियां सीखने का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। माता पिता और शिक्षक बच्चों की बात ध्यान से सुने, उन्हें प्यार और सम्मान दें और उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज में पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है ना, कि
0: बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है उस तरह से। और हमारे एक साथी लिखते हैं, पौधों को और खेत में पानी देने से प्रोत्साहन मिलता है, वो फूलता फलता है। जी हाँ, प्रोत्साहन यानी एक स्फूर्ति, पुरस्कार या उत्साह भरे शब्दों में शाबाशी देना, जो किसी व्यक्ति या समूह को खास काम करने या व्यवहार में कार्यक्षम और सकारात्मक बनने में प्रेरित करती है। याद रखें, पौधों को उतना ही खाद पानी दे जितना जरूरी है, अधिक मात्रा से वो मुरझा जाता है। अत्यधिक प्रोत्साहन से काम बिगड़ने की संभावना रहती है। बहुत गुड़ बात इन्होंने अच्छी बात लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का एक

0: महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: और अब देखिए, डायरी लिखने के लिए भी एक टिप्पणी हमारे श्रोता ने लिखी है कि बचपन में दी डायरी, आप सबने पूछा कि कोई ऐसी डायरी भी पढ़ी है, तो लिखा है कि बचपन में दी डायरी ऑफ यंग गर्ल पढ़ी थी, जो एक किशोर वय बच्ची एनी फ्रैंक द्वारा लिखित बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति है। वे एक यहूदी थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के समय अपने परिवार के साथ छिप कर रही थी। उन बिताए समय का वृत्तांत उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो डायरी किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार, और एक लंबा दस्तावेज होता है। अब प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं ये गाना।

0: मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें थी और अब बिल्कुल भी वक्त नहीं कि गाना सुनवाएं या कुछ बोलें बतियाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज रही है बचपन से, कहीं आपके भीतर कुछ पैदा कर देता है। वो लगता है जैसे कि आप ही के भीतर से कोई आवाज आ रही है और मैं यहाँ पे हूँ। मैं पहली बार आया हूँ रेडियो में।
1: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
1: लेकिन रेडियो के साथ में बतौर श्रोता आपका रिश्ता पुराना रहा है।
2: मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था रेडियो का और पैसे चूंकि होते नहीं थे तो मैंने एक दो बार पैसे इकट्ठे किए और मैं रेडियो लेके आया था, छोटा पॉकेट रेडियो 110 रुपए, जो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। रात को मैं सुनता था उसको और वो सुबह खर खर करता हुआ पाया जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली 10 बजे कोई कार्यक्रम आता था छाया गीत। करेक्ट
1: जी। हाँ, और उसमें हम पुराने पुराने गाने
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: विद कॉमेंट्री पेश करते हैं। तो ये जो उसमें आप कॉमेंट्री वगैरह भी, क्योंकि उन दिनों तो हॉकी और क्रिकेट की कॉमेंट्री के लिए रेडियो बड़ा सहारा हुआ।
2: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
1: और कौन कौन से रेडियो स्टेशन सुना करते थे विविध भारती के अलावा?
2: मेरे ख्याल से वही एक ज्यादा
1: पॉपुलर
2: हुआ करता था उस समय। और चूंकि जैसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था तो कमेंट्री उस पर आती थी, वो सुनते थे। और टेलीविजन तो उन दिनों बहुत कम हुआ करता था, किसी के घर में पाया जाता था तो वहां इतने सारे लोग जमा हो जाते थे कि भाई चलिए टीवी देखा जाए।
1: आपके टीवी कब आया पहली बार?
2: हमारे यहाँ आया 83 में, जब ये एशियाड हुए थे।
1: कलर आए थे ब्लैक एंड व्हाइट?
2: ब्लैक एंड व्हाइट।
1: अच्छा, चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं हम। हाँ। और रेडियो के स्टूडियो में आए हैं आप, विविध भारती के स्टूडियो में आए, क्यों ना आपकी फरमाइश के गाने से?
2: मुझे एक्चुअली पुराने गाने यार बहुत बहुत अच्छे लगते हैं।
1: और विविध भारती के पास विजय भाई पुराने गीतों का जबरदस्त खजाना है।
2: हाँ, तो मुझे एक मन्ना डे साहब का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन, जो मन्ना डे साहब क्या क्या गाया है,
1: अद्भुत,
2: बाप रे। और
1: लेकिन जो कुछ भी गाया, कव्वालियां गाई, भजन गाए, रोमांटिक सॉन्ग्स गाए और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जो उन्होंने गाए हैं वो भी अद्भुत हैं। उनका गाना ये काबुली वाला फिल्म का गाना है, प्रेम धवन साहब का लिखा हुआ है और सलील चौधरी साहब का संगीत है। सुनवा दिया जाए।
2: बिल्कुल।
1: ऐ मेरे प्यारे वतन,
3: ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े।

0: और इस समय सिर्फ वतन में ही नहीं, वतन के बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं। विजय भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि पहली विजय कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों के लिए, कहाँ मिला?
1: मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे, और मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके। तो मैं ऐसा कह लें कि मुझसे ये सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा। मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहां शायद ही कभी बच्चे से ये सवाल किया जाता है। इट्स अ वेरी ग्लैमराइज्ड क्वेश्चन एक्चुअली कि क्या बनेंगे आप। इस सवाल तक तो ध्यान जाता ही नहीं है, बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं, वहां ध्यान कुछ और ही रहता है कि खाना आज मिलेगा कि नहीं।
0: बस
1: तो सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होते हैं।
0: और कई परिवारों में तो थोपा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं पूछता।
1: हाँ, और ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं है, और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी उस मेरे ख्याल से उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस सवाल को झेल पाए, जो इतना बड़ा सवाल है।
0: जी जी।
1: और छोटा सा बच्चा नन्ना वो भी जी रहा है, और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है। अभी तो जीने का समय है, अभी तो जी ले कम से कम,
0: रास्ते में है अभी तो।
1: मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा। मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या। जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे कि यार अब तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली है, अब तो फ्री की रोटी मिलेगी नहीं।
0: पढ़ाई में थे कैसे यार?
1: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब मन मेरा लगता नहीं था पढ़ाई में,
0: मन कहीं और लगता था।
1: मन मेरा खेलने कूदने में, और अकेले बहुत समय बिताया मैंने। मैं घर बहुत बाद में जाता था, कह लें कि सिर्फ सोने के लिए जाता था।
0: इस आवारगी का ताल्लुक किससे था? मतलब अपने आसपास के, कभी मौसम से बात करना, पेड़ों से बात करना, हवाओं से बात करना, कुछ ऐसी बात थी क्या?
1: जहां

0: मैं पैदा हुआ पूसा इंस्टीट्यूट, वो खेत खलियान वहां बहुत है, हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप वहां अगर गए हों कभी या जाने का मौका मिले आपको तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में, बड़ी शांति है वहां, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन और पता नहीं क्या क्या मतलब बाग बगीचे वहां पे हैं, लोगों की संख्या बहुत कम है। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई थी। उसने शायद कह लें आप या मैं पीछे से कुछ लाया होऊंगा, मुझे एकांत बड़ा पसंद था हमेशा ही।
1: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शख्सियत को देख रहा हूं, मैंने पर्दे पर तो आपको कई फिल्मों में देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मलंगपना जो है वो आपको बड़ा पसंद है। वो
0: हाँ वो है
1: कड़पन, वही जिंदगी की जो होती है अलमस्त, जो एक स्वभाव सा होता है। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा भी कि इस वक्त जो है उसे हम जी लें।
0: बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा सच मेरे ख्याल से है नहीं। जैसा कहा भी आता ना, इस सच को हम उसका सामना करने में बड़ा कतराते हैं कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाए, हम पहले तय कर लेना चाहते हैं जबकि वो हो नहीं पाता कभी। ये अजीब सा भ्रम है जो हमेशा बना रहता है हमारे हमको कि हो जाएगा तय, जबकि होता नहीं। तो मैं खुद वैसी प्रवृत्ति का आदमी हूं, वैसी प्रकृति है मेरी, मुझे अच्छा लगता है। जब भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके हाईवे पे, कहीं गाड़ी रोक के फिर खेत वेत में थोड़ा घूम लिए, वहां चेयर डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मजा आता है।
1: ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो झीलें, और इस पल में मैं समझता हूँ कि जब हम पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को सुरीला बनाता है, उसके साथ जीना भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसके उसकी नदी में बस बहते चले जाएं। तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है आपको।
0: हाँ, चूंकि बात अब चल रही है पलों की, हाँ, तो एक गाना तो बन गया।
1: कौन सा?
0: पल पल दिल के पास तुम रहते हो।
1: क्या बात बहुत खूबसूरत गाना है और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है, हाँ। ना ब्लैकमेल फिल्मा गाना है।
0: फिल्मों के बगैर मुझे नाम नहीं मालूम है, बट गाना वाकई बड़ा खूबसूरत।
1: आइए सुनते हैं।

0: हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि पल पल विविध भारती के साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता विजय राजवी। विजय भाई, परिवार की आपने बात की और अपनी तबीयत के बारे में भी बताया, लेकिन एक्टिंग जो होती है वो सबकी तबीयत में नहीं होती, और उसके लिए वो भी एक साधना है, बहुत बड़ी कला है। मैं समझता हूं कि तरह तरह के चरित्र जो आपके आसपास रहते हैं जिंदगी में, उनको पर्दे पर जीना, इतना विश्वसनीय बना देना कि लोग डूब जाएं उसमें, वो सच में एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। तो एक्टिंग जो थी, इसका आपके बचपन से कहीं कोई रिश्ता है, या बड़े जब आप हुए तब आपके भीतर कहीं ना कहीं उसका अंकुरण हुआ?
1: मैं बड़ा शर्मीला किस्म का व्यक्ति रहा हूं बचपन से, अब शायद नहीं हूं, थोड़ा बेशरम हो गया। तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली कि मैं अभिनेता बनूं। ऐसा मैंने पहले कहा कि मैंने तो खैर कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनूंगा।
0: घर में भी कोई नहीं था इस फील्ड में?
1: नहीं, घर में पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मम्मी हमारी हाउसवाइफ। पिताजी से बड़े जो हमारे दादा थे उनका संग मुझे बहुत ज्यादा मिला नहीं, इनफैक्ट मुझे बुजुर्गों का संग मिला ही नहीं बहुत ज्यादा। मैं शायद 8-10 साल का रहा हूंगा जब दादाजी हमारे चले गए, और चूंकि वो गांव में रहते थे तो उनसे मुलाकात तभी हो पाती थी जब हम गांव समर वेकेशन में जाते थे। तो उन 10 सालों में भी बहुत ज्यादा संग रहा नहीं, सुना है मैंने बस कि वो थोड़े मलंग टाइप थे, तो हो सकता है वहां से मुझे ये मलंगपना मिल गया हो, मेरी तबीयत में वहां से आ गया हो। कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब ये घटना अचानक घट गई मेरे साथ कि वहां पे थिएटर करते थे लोग, और मैंने उनसे पूछ लिया यूं ही कि हमको भी यार कोई रोल वोल दे दो यार, क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया और वो मैंने पढ़ दिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो लाइने है ना, ये इंस्पेक्टर जहां यहां लिखा है, सारी याद करके लाना। जब उन्होंने ये बात कही कि याद करके लाना, वहां से मुझे थोड़ा दिल एकदम टूट गया। मेरे यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया, ये अगर मैं ये याद करूं तो यार मैं पढ़ पढ़ा के थोड़ा कुछ थोड़े ठीक ठाक नंबर ले आऊं, 40-42 नंबर आते हैं 100 में से, तो थोड़े बेहतर हो जाएं, पिताजी खुश हो जाएं। लेकिन जवान थे आप, 18-19 साल की उम्र में, तो उस समय होता ना कि आपकी जुबान से जो बात निकल गई अब तो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन घर आके वापस मैं आया और मैं सोचता रहा खाना खाने में, यार अब तक की बहुत बड़ी गलती की लाइफ में, ये मुझे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कैसे मना करूं मैं अब। और अगले दिन शाम को हम लोग गए, तो मैं अब ढूंढ रहा हूं जगह कि कहां मैं कोई बहाना ऐसा मिले कि मैं मना कर दूं।
0: कोई नर्वसनेस नहीं थी?
1: नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी मुझे, सिर्फ ये था यार मैं क्यों
0: कहां फंस गया,
1: ये बात इतनी लंबी चली जाएगी मुझे।

0: मालूम था, वो बस ऐसे ही मजाक था कि यार हमें रोल दे दो और बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं। ये मेरे लिए अभी समस्या का कारण हो गई। खैर वो रिहर्सल होने लगी एक दिन दो दिन, और मैं फिर ये सवाल भूल गया पूछना या उनको कहना कि यार मैं नहीं करूंगा। मुझे अचानक एक रस पैदा हो गया और मुझे मजा आने लगा। और फिर एक डेढ़ महीने के बाद शो हुआ उसका, और कैसा हुआ होगा, हमने कैसा किया होगा वो तो खैर हम समझ सकते हैं क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, बिल्कुल पहला नाटक। लेकिन जब वापस आए तो कॉलेज में मतलब कह रहे विजय यार क्या बात है यार। मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है। तो वहां से वो कब पैदा हो गया, उस रस की वजह से
1: कुछ कुछ होने लगा,
0: कुछ होने, मैंने यार नहीं इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक तो खेलने में मुझे बहुत मजा आता था कि कोई मुझे ना रो, मुझे रात को भी बॉल दिखाई देती थी। मतलब सब लोग चले जाते थे यार अभी कहां जा रहे हो यार खेलते ना, मैं थकता नहीं था, मुझे इतना मजा आता था खेलने में। या फिर मैं अकेला रहता था, अकेला घूमता था, हमको एक छोटी जमीन मिली हुई थी यहाँ पे हम सब्जियां उगाया करते थे, मैंने बहुत सारी सब्जियां हर तरह की सब्जियां उगाई हैं बचपन में, वहीं पे कुआं था वहां से पानी निकाल के उसमें देते थे, या वो काम करता था। इतना कहें स्वाद मुझे किसी भी चीज में मेरे इतिहास में आया नहीं था, और सिर्फ इसी बात ने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात मुझे एक दिन बॉम्बे ले आएगी, यहां तक जा सकते हैं इस बात से, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था और मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था।
1: तो बॉम्बे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उसके पहले एक गाने को छेड़ा जाए, आपकी पसंद के गाने को।
0: गाना मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, आप भी सुना दीजिए अपनी पसंद का।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो

0: विजय भाई अब कैसे आना हुआ आपका मुंबई?
1: वो भी बड़ा एक अजीब सा किस्सा है। मैं एनएसटी रिपेट्री में था और किसी बात को लेकर तनातनी हो गई, आपस में हो जाती है बिना

0: तनी के कुछ मजा भी नहीं रह जाता कई बार, ऐसा लगता है अच्छे पैसे मिलते थे, थिएटर करने को मिल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा काम मिल रहा था मुझे, रिपेटरी ने बहुत काम दिया मुझे करने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए, मैनेस्ट्री रिपेटरी का। जब वो बात वाक्य हो गया तो वो उसके बाद फिर एक ही चाह रहा था कि आप बम्बई चले आए। तो 98 में मैं बॉम्बे आया, पिछले सितंबर की 13 तारीख को मुझे पूरे 11 साल हो गए। जब नए नए आया तो एकदम समझ में नहीं आया यार यहाँ पे करें क्या मतलब करें क्या, कैसे जाएं और काम मांगे और जाएं कहाँ, सड़क पे तो कोई घूमता नहीं है, तो पड़े रहे मतलब घर में और सिर्फ यही सवाल कि यार कैसे मतलब करें कैसे क्या करें। तो कुछ पुराने दोस्त थे यहाँ पे, उनसे पूछा गया भाई कैसे होता है, कि होता कुछ नहीं, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचा के बांटो। मैंने हाँ ये तो अच्छा तरीका है यार तो फोटो वोटो खिंचवाई गई, शक्ल आपकी चाहे जैसी भी हो फोटो चाहिए, फोटो वोटो खिंचवाई और जो है उसके बाद फोन करके लोगों से एड्रेस मांगे और एड्रेस आके वहां फोटो वोटो बांट दी गई, हो गया जैसा होना था। मेरी समझ में मैं ऐसा मानता हूं कि किस्मत बड़ी चीज है, कहां पे आपका क्या होगा, आप अपनी तरफ से चीजें करते जरूर हैं क्योंकि वो करनी होती हैं, बट तमाम चीजें मेरे ख्याल में हर चीज किस्मत एक वर्ड है, एक नाम दे दिया, एक ऐसी शक्ति को नाम कह लें, उसके बिना कुछ होता नहीं।
1: डेस्टिनी को आप मानते हैं?
0: बिल्कुल मानता हूं। और टैलेंट एक बड़ी अजीब सी चीज है, ये एक अजीब सी बहस का मुद्दा भी हो सकता है अगर हम बात करें तो, अगर आप टैलेंट के हिसाब से बात करते हैं, और मैं अपनी ही बात को काटूंगा कि हमको वो बहस नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना अपने जाने पैदा हो जाते हैं तो बिना वो जो टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना वो हुए भी हम बहुत बड़े कलाकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम ही तय कर रहे हैं कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, और हम तय कर रहे हैं जो हम ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी किस्मत की बात कह लीजिए कि चीजें बन गई, वरना ऐसा आपने कहा कि जाने माने कलाकार हैं वो सब, यार मुझे नहीं लगता कि वो उस बहस में हमको पढ़ना चाहिए। किस्मत थी मेरी, मुझे काम मिल गया, और किस्मत ही कह लें उसे कि लोगों को वो अच्छा लगता है।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया, एक अलग पहचान भी है आपकी, लोग देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं आपका काम देख करके, बड़े प्रभावित होते हैं। रेपर्टरी का आपने जिक्र किया, मैं ये बात पीछे छूट गई थी, थोड़ा सा फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जरा, वहां कैसे, किसने किसी ने प्रेरित किया आपको या कहीं से आपको जानकारी मिली?
0: कॉलेज में जब शुरू हो गया सब कुछ तो उसके बाद हम लोग मंडी हाउस आ गए। मंडी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूल भी है और थिएटर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो साक्षी कला मंच एक एमेच्योर थिएटर ग्रुप वहाँ पे है, और वहाँ पे मैं कॉलेज से आप वहाँ एक थोड़े से प्रोफेशनल तरह के लोगों के बीच में एंट्री हो गई, तो उनकी बातें समझ में ना आए, कह रहे बात क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं वो विदेशी नाम, जो हमारी समझ से और हमारी जानकारी के हिसाब से बड़े दूर के कोई हैं, और इसका ये एक्चुअली आदमी का नाम ले रहे हैं या किसी चीज का नाम ले रहे हैं उतना तक समझ में नहीं आता था। एक्चुअली जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया तो थिएटर का मुझे आज भी मतलब नहीं मालूम, एक्चुअली पहले भी नहीं मालूम था, मुझे तो बस मजा आता था यार, मैं एक्टिंग कर रहा हूं मुझे मजा आ रहा है, इतना ही मेरे लिए था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, क्या होता है ये, क्या करना है, और हम कौन है, ऐसा कुछ मेरे ये सब मुझे इससे कोई लेना देना था नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है बस, बात खत्म हो गई। छोटा छोटा रोल मिलने लगा, फिर एक प्ले हुआ रोमियो एंड जेनेट, बाहर का प्ले है, जिसमें मुझे अचानक एक बड़ा रोल मिल गया। अचानक यूं कि पहले कोई और कर रहा था जो बड़ा एक्टर था, पुराना एक्टर था, तो उन्होंने दे दिया, तो मैंने यार चलो, तो हम करने लगे, और वो मेन रोल था मतलब उस नाटक में, बाकी जितने भी लोग थे वो सब सीनियर लोग थे, तो मैं ही एक था जो सबसे छोट भैया इसको कह लें, तो इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला पहली बार, और प्ले बड़ा बढ़िया हो गया और मुझसे बड़ा बढ़िया हो गया काम मतलब ऐसा कहा लोगों ने। जे एन कौशल एक व्यक्ति रहे हैं जिनका जो रेपर्टरी चीफ हुआ करते थे, उन दोनों बड़े प्यारे इंसान, उन्होंने वो प्ले देखा था, दो तीन बार देखा था, और उनको बड़ा पसंद आया, मुझे उन बुलाया रेपेट्री में कि सुनो तुम रेपेट्री ज्वाइन करना चाहोगे, 3000 रुपए मिलेंगे, और तो 3000 सुन के मैं बाकी सुनना ही बंद कर दिया मेरे कानों ने शटर डाउन कर लिया कि 3000 के बाद मैं 3000

0: के हिसाब लगाने लगे, 6 महीने के लिए बुलाया है तो 6 18 18 18 हजार में इतना इतना इतना ना, मैं वो आंकड़े में चला गया बाकी वो क्या बोल रहे मुझे कुछ नहीं मालूम फिर ये था कि यार ये क्यों पूछ रहे हो, करोगे क्या? हाँ मैं करूंगा। ऐसे वहां मेरी एंट्री हो गई तो मुझे गेस्ट आर्टिस्ट उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप परमानेंट होने के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि मेरे लिए तो उतना काफी हो गया था कि 6 महीने उन्होंने मुझे रख लिया, बड़ी मेहरबानी, 18 हजार रुपए मिल गए, बस 1 1.5 साल लाइफ का और कट जाएगा, बाकी अपना घूमते रहेंगे। क्योंकि मैंने कभी माना ही नहीं अपने आप को कि मैं, जो टैलेंट की आप अभी जिक्र कर रहे थे कि वो मुझे समझ में कभी आया नहीं, क्या अच्छा हो गया पता नहीं, कैसे हो गया मुझे पता नहीं, अगर इसी को कहते होंगे टैलेंट तो ठीक है। कौशल साहब ने, आखिरी समय था, आखिरी दिन था कि आप भर दें, तो मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। मुझे कुछ आता नहीं था, जो थिएटर मैंने पढ़ा नहीं था, क्या क्या इतिहास में किसने किया मुझे कुछ नहीं मालूम था, जो आज भी नहीं मालूम है, और जो मुझे समझ में आता था वैसा मैंने एक इंटरव्यू दे दिया और मुझे सेलेक्ट कर लिया उन लोगों ने, यार पता नहीं कैसे। तो पहले वो लोग 1 साल के लेते हैं, 1 साल के बाद 2 साल का रिन्यूअल होता है, फिर 2 साल के बाद 3 साल का, तो मैक्सिमम आप 6 साल तक रह सकते हैं वहां पे। तो 1 साल के लिए जैसे उन्होंने लिया तो मैंने फट से, फिर तनख्वाह होगी 4 हजार, तो 12 चौक 48 मैंने 48 हजार का हिसाब लगा लिया मैं यार आगे रखे नहीं रखे निकाल देंगे, और ऐसा हुआ नहीं। फिर 2 साल के लिए मिल गया और फिर मुझे कुछ कुछ छोटा छोटा काम उन्होंने दिया, जो इत्तेफाक से वापस ठीक हो गया। फिर उन्होंने बड़े रोल देना मुझे शुरू किया, और उसके बाद एक समय ऐसा था कि काफी इम्पोर्टेंट काम रिपेटरी ने मुझे दिया, और इत्तेफाक से वो सभी अच्छा हो गया और लोग पसंद करने लगे।
1: किन किन कलाकारों के साथ में, निर्देशकों के साथ में, खासतौर से थिएटर की जो पर्सनालिटी की हम बात करें, आपको काम करने का मौका मिला?
0: एमके रैना साहब, रंजीत कपूर साहब, डी आर अंकुर साहब, बजाज साहब, बीएम शाह, मोहन उप्रेती साहब, बापी बोस, कई सारे नाम हैं जिनका सानिध्य मिल पाया मुझे। काबिलियत थी नहीं, लेकिन होता है कई बार चलता है कि आप नहीं हैं काबिल, लेकिन होता ना कि गेहूं में घुन भी पिस जाता है और टेस्ट गेहूं का ही आता है
1: विजय भाई, अभी मौका है एक और गाना अपने सुनने वालों के लिए पेश करने का, आपकी तरफ से आपकी पसंद का गाना, वो सुनवाएंगे और उसके बाद में फिर किस्सों पे फिर चलेंगे जी।
0: अभी किशोर साहब का गाना है, शराबी फिल्म का, हालांकि फिल्म बहुत ज्यादा पुरानी, बट बहुत अच्छा गाना है वो।

0: किशोरदा भी कुछ ऐसे ही जिंदगी में मलंग जैसे, उनका भी बड़ा स्वभाव वैसे ही रहा। उन्होंने खास रूप से सिंगिंग के करियर को तो बहुत बाद में सीरियसली लिया, शुरू में थे वो एक्टिंग पे ही जोर देते थे। उनकी फिल्में आपने देखी?
1: मैंने एक्चुअली फिल्में बहुत कम देखी हैं, मतलब ओवरऑल एक आध दो, जैसे जिसमें एक गाना है एक लड़की भीगी भागी सी
0: चलती का नाम,
1: हाँ वो फिल्म देखी है मैंने, लेकिन वो सब बचपन की बात है। बचपन में मैं काफी फिल्में देखा करता था, जब टीवी किसी किसी घर में पाया जाता था तो आप लटक के खिड़कियों से लटक के बड़ा मजा आता था। रात रात तक घर से बाहर रहने की परमिशन है भाई, 10-11 बजे रामलीला खत्म होगी, थोड़ा जो आवारगी थी उसको थोड़ा और वक्त मिलेगा, तो उस वजह से ज्यादा वो समय बड़ा अच्छा लगता था जो अब चल रहा है दिवाली के आसपास का समय।
0: विजय भाई आपने कहा, हालांकि बहुत ही हल्के ढंग से आपने उसको मजाक में कह दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात भी है। पैसे की आपने कहा कि बात, जब से पहली बार बताया कि 3,000 रुपए महीने के मिलेंगे, मैंने हिसाब लगाया फिर पता चला कि 4,000। मतलब कैसी थी जिंदगी, हालात कैसे थे?
1: जब थिएटर कर रहा था मैं तब वाकई हालात बड़े गड़बड़ थे, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, मैं दिन में एक नौकरी किया करता था अकाउंट्स की पार्ट टाइम।
0: ये जरूरत थी एक?
1: हाँ जरूरत थी, क्योंकि मैं एक मतलब बहुत पैसे वाले परिवार से बिलोंग करता नहीं, पिताजी सरकारी नौकर थे और एक मॉडेस्ट सी तनख्वाह की, जिसमें एक 2-3 बच्चों का परिवार सिर्फ पल सकता है और एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं। ख्वाहिश नहीं थी मेरी कभी भी कि ऐसा ऐसा हो, पैसों से पूरे हो, ऐसे सपने मैंने कभी देखे नहीं।
0: अब भी
1: वैसा ही है ऑलमोस्ट, हालांकि कुछ जरूरतें जो होती हैं बेसिक वो सारी हैं आसपास, ये कर दूंगा मैं जो पैसे के बल पे जो चीजें होती वो ख्याल नहीं आते हैं कि यार इतना मिल गया काफी है, तो कई बार देने में बड़ा मजा आता है मुझे, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। अब थोड़ा एक्स्ट्रा जब आता है तो मुझे लगता है यार ये अगर यहाँ चला जाए तो ज्यादा मजा आएगा।
0: विजय भाई वापस मुंबई हम लौटते हैं,
1: कुछ कुछ काम मुझे मिला, कैरियर में मोड़ आया कहें कि ज्यादा चर्चा।

0: जिस बात की हुई वो मॉनसून वेडिंग पिक्चर का बहुत बड़ा हाथ है। और वो फिल्म नसीर साहब मुझे कहा था कि आप मीरा जी से जाके मिल लें, और नसीर साहब से हमारी मुलाकात रेपिट्री के दौरान हुई। एक प्ले वो देखने आए थे, अग्नि और बरखा एक प्ले था जो प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था
1: जी।
0: वो उनको बड़ा पसंद आया और वो हमसे मिले भी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नसीर साहब मतलब आपका इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए। और वो हमारी पहली मुलाकात वहां पे हुई, और वहीं से पता नहीं क्यों हमको लगा कि यार हम इस व्यक्ति को जानते हैं। दूरी नहीं थी कोई, मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति के पास बैठा रहूं। जो मैंने शेयर की पिछले समय में एक फिल्म में दोबारा हमको मौका मिला काम करने का बारह आना, तो मैंने नसीर साहब को बताया। मॉनसून वेडिंग और बारह आने के बीच में ऑलमोस्ट आठ नौ साल का अंतर है। इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, न फोन पे न मुलाकात हुई। और मैंने ये बात शेयर की उनसे कि सर 8 साल हो गए लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं
1: आपसे दूर हूं,
0: आपसे मिला नहीं। और उन्होंने कहा एकदम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं भी कह सकता हूं। तो मीरा जी को उन्होंने कहा था कि हालांकि कास्टिंग वो कर चुकी थी पहले उस रोल में किसी को, जो बात उन्होंने मुझे बताई कि भाई मैं कास्ट ऑलरेडी कर चुकी हूं और बट वहां से मुझे जवाब आना है, लेकिन आप जब आए तो ऑडिशन दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है।
1: कहां दिया था आपने? बॉम्बे में।
0: बॉम्बे में।
1: तो मुझे बड़ी इसकी इच्छा है जानने की कि वो कैसी रही वो मुलाकात, उन्होंने बुलाया आपसे फिर वो।
0: मैं गुवाहाटी में था उस समय जब मुझे फोन आया था। मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, उसके लिए मैं वहां पे था। और जब मैं लौट के आया तो मुझे जिस पर्टिकुलर डेट में आना था मैं उस समय नहीं आ पाया। तो नेक्स्ट डे मैं आया, तो मैंने उस दिन फोन किया कि मैं अभी यहां हूं और ऐसे ऐसे हो गया है तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा आज, मैं तो कल है मुझे आना है। कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, शाम का टाइम था तो वो ऑलमोस्ट सबसे मिल चुकी थी या मैं ही आखिरी था जिससे मिलना था। और होटल में मुलाकात होनी थी तो मैं नीचे बैठा रहा काफी देर तक कि मैं कैसे पूछूं, मतलब किससे यार कि क्या। तो मैंने कहा मीरा नायर जी ओ आया। तो ऐसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा शायद इनको पता होगा कि मैं आने वाला हूं, तो मैं बैठ गया कि भाई यही बुलाएंगे अब मिलने के लिए। बुलाया नहीं किसी ने, तो काफी समय बीत गया, मतलब आधा पौना घंटा। मैंने यार इतना तो देर नहीं लगना चाहिए। तो मीरा जी ने ही नीचे फोन किया कि कोई आया है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे भेजा, तो मुझे कहा यार तुम इतना वेट करवा दिया तुमने। मैं मतलब वेट कर रही हूँ 45 मिनट हो गए कि नहीं नहीं। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा कि बुलाया जाएगा समथिंग कि एनीवे। तो थक गई थी काफी, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं था, ऐसा ऐसा किस्सा हो गया कि ओह सॉरी चाय पियेंगे। मैंने हाँ हाँ बिल्कुल। हम करीबन 1-1.5 घंटे रहे साथ में। उस दौरान मतलब कैमरे में इंटरव्यू भी ले लिया उन्होंने, मतलब जो इंटरव्यू कर रहा हूँ मतलब ऑडिशन। और
1: आपसे कौन सा वही जो जिस करेक्टर को आप
0: उनके पास थी और मैंने कर दिया। बैठे रहे, बात बात होती रही, तो 1-1.5 घंटा उनके साथ रहना हुआ।
1: कुछ ब्रीफ किया था उन्होंने कि इस तरह का करेक्टर है और ये
0: हाँ ये सब बताया, तो मैंने कर दिया जैसा जितना मैं समझ पाता हूँ जैसा हुआ। और ये सारी बातें भी बताएं कि भाई ऐसा ऐसा है, हो चुकी है, एक आदमी से बात चल रही है और ऑलमोस्ट फाइनल है, तो लेकिन ठीक है। जब मैं कमरे से निकला बाहर तो पता नहीं क्यों मुझे लगा यार ये रोल तो मैं मेरे अलावा बड़ा कठिन है किसी और के लिए। ऐसे ही होता है ना, आप मन में कई चीजें उठती हैं। कई बार आपको मन में उठता है मैं उड़ जाऊं, कई बार आप प्लेन में सफर कर रहे हो तो मुझे कई बार लगता है मैं प्लेन के ऊपर लेट जाऊं। तो वैसे एक ये ख्याल था कि यार ये तो मुश्किल है यार मेरे अलावा। खैर मैं आ गया।
1: कभी कभी ये भी होता है ना कि कहीं कोई ऐसा लगता है कि कोई सवाल हमें उसका हल मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो कैरेक्टर आपके अंदर पढ़ते ही समा गया।
0: हाँ, जिसको हम इंस्टिंक्ट जो एक वर्ड ईजाद किया है मेरे ख्याल से वो वही है कि तमाम चीजें आपके कंट्रोल में होती नहीं, हमको लगता रहता है ऐसा कि कंट्रोल में है, वहीं से वो आपके भीतर टपकती हैं चीजें और वो एक ख्याल पैदा करती हैं, वो पकड़ना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना यार आपने मेरे बारे में सोचा उस समय, टेलीपैथी इसको बोलते हैं। तो खैर वो समय चला गया, जितना समय उन्होंने देखा यार उन्होंने मुझसे समय मांगा है 7 दिन का, उसके बाद वो बताएंगे मुझे, अगर वो नहीं होते हैं तो हम बात करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो समय पीरियड चला गया, मैं भूल भी गया बात। उसके बाद एक दोस्त था मेरा उस पिक्चर में, जो मेरे साथ 3 लोग जो काम करते हैं उनमें से एक, वो आया रिहर्सल के लिए बम्बई, तो मेरे घर पे ठहरा। उसने कहा यार ऐसे मीरा जी की फिल्म कर रहा हूं। मैंने कहा अरे वो वाली फिल्म? हाँ। तो मैंने वो रोल कौन कर रहा है? कि वो परेश रावल साहब कर रहे हैं। मैंने अरे यार तो कमाल हो जाएगा यार, बड़ा मजा आ जाएगा वो तो। मैं ये सोच रहा हूँ, रिहर्सल हो गई, वो लोग वापस चले गए। मुझे एक फोन आता है कुछ समय के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद मोबाइल पे, और नंबर पहले कोड 011। मैंने यार ये तो दिल्ली का फोन है और ये मीरा जी का फोन है, लैंडलाइन से नंबर है। जबकि मैं फोन उठाता हूँ और एक लड़की कहती है कि मीरा जी आपसे बात करना चाहते हैं। और मीरा जी फोन पे आते हैं।

0: कहती हैं विजय हाय कैसे हो, ये सब वो करके कि मैं चाहती हूँ कि आप वो रोल करें। मैंने नहीं मैडम, परेश जी बहुत अच्छी कास्टिंग है।
1: क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं था आपको।
0: कि नहीं, दैट आई नो, बट या मैं चाहती हूँ आप करें। मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे। रोल हो गया, हम दिल्ली चले गए।
1: शूटिंग कहाँ हुई इसकी?
0: दिल्ली में। और
1: उसी में आपने पहली बार फिल्म कैमरा फेस किया?
0: नहीं, उससे पहले मैं फिल्म कर चुका था। उससे पहले मैं जंगल फिल्म कर चुका था। अच्छा। अक्स भी कर चुका था। भोपाल एक्सप्रेस मेरी पहली फिल्म थी।
1: भोपाल एक्सप्रेस,
0: हाँ, ये मेरी चौथी फिल्म थी। फिर शूटिंग शुरू हो गई और कब शूटिंग खत्म हो गई, कब क्या हो गया पता ही नहीं चला।
1: लेकिन वो रोल आपका बड़ा चर्चित हो गया, दुबे जी वाला।
0: हाँ, वो अच्छी बन पड़ी। और फिल्म जब अच्छी बन जाती है तो उसमें छोटी छोटी चीजें भी काउंट हो जाती हैं
1: जी।
0: और वाकई बड़ी खूबसूरत फिल्म, मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा को वेस्ट में जो पहचान बननी शुरू हुई है, जो अब दिख रही है आपको
1: जी,
0: उसमें दो फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है, मॉनसून वेडिंग और बैंडिट लाइक बेकम। ये ऑलमोस्ट एक साथ की फिल्म है कि वेस्ट में इंडियन सिनेमा को एक जगह दी गई, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। उसमें काफी घुमा हूं, जो फेस्टिवल सर्किट होता है उसमें मेरी, जैसे मॉनसून वेडिंग, रघु रोमियो मेरी एक फिल्म है जो फेस्टिवल्स में काफी गई, हरिओम एक फिल्म है जो भाग्य या कह लें दुर्भाग्य कह लें वो रिलीज नहीं हुई है, एक बहुत अच्छी फिल्म भरत बाला ने बनाई थी, वो काफी रही है फेस्टिवल्स में।
1: उसमें आप ऑटो वाले बनते हैं?
0: हाँ, तो मैंने वो सब देखा है। तो अभी वो एक स्पेस जो मिला है इंडियन सिनेमा को, उसमें इन दो फिल्मों का बहुत हाथ है। मैं बड़ा आभारी हूँ मीरा जी का और नसीर साहब का कि मुझे ऐसा मौका दिया उन लोगों ने। गुजारा हो रहा है।
1: लेकिन हमारा गुजारा नहीं होगा अगर हम संगीत नहीं सुनवाएंगे। तो गाना सुनाना बड़ा जरूरी है। आपकी पसंद का गाना है?
0: गुलजार साहब मुझे बहुत पसंद है। गुलजार साहब ने कमाल लिखा है, मतलब उनके लिए मैं अगर तारीफ करूं मेरे जैसा व्यक्ति, तो वो बड़ी अजीब सी बात होगी।
1: गुलजार साहब की एक फिल्म है खामोशी, बहुत पहले आई थी, उसमें हेमंत कुमार साहब ने संगीत दिया है, लता जी ने उसमें एक बढ़िया गाना गाया है, हमने देखी है उन आंखों की महक।
0: क्या बात,
1: कही हो बजाय।

0: मानसून वेडिंग के बाद क्या चेंज हुआ, उससे क्या फर्क पड़ा?
1: फर्क अभिनेता के तौर पर, चूंकि फिल्म चल पड़ी, लोग जाने लगे, थोड़ा काम देने लगे, और एक मेरे ख्याल से जिस फील्ड में आप हैं वहां ये आपके लिए काफी अहम होता है कि आपको काम मिले, तभी आप चीजें आगे कर पाएंगे। और चूंकि आपकी रोजी रोटी भी यही है, आपका प्रोफेशन भी यही है, तो वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए भी। उस पिक्चर ने बड़ा, मतलब वो सिनेरियो थोड़ा सा बदला, थोड़ा काम मुझे मिलने लगा और मैं थोड़ा ज्यादा काम करने लगा।
0: लेकिन जो आपने अरसा बताया, उस अरसे में आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये सारी जितनी फिल्में मैं देख रहा हूँ, इनमें जितने भी नाम मैं देख रहा हूँ, उनके टाइटल जो है पढ़ना, बड़ा ऑफ बीट सी है सब।
1: हाँ, कमर्शियल जो फिल्में आती हैं वो फिल्में कम हैं, उनकी तादाद कम है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा करने के लिए मिलता है जहाँ पे मैं कुछ कह सकूँ।
0: ये तो आप मानिएगा कि ये सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सारी के सारे धारा से हटकर के बनी फिल्में हैं, और जाहिर है कि इसमें बहुत सारी फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में हैं, क्योंकि सिनेमा में इस बीच हम देखते हैं एक बहुत बदलाव सा आया है। मुख्य धारा का सिनेमा तो है, उस मुख्य धारा की सिनेमा में भी रहते हुए लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, और अब नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कहानी को नए आयाम दे रहे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे आए हैं, कहानी कहने की कला जो है खासतौर से सिनेमा की वो बदल रही है। पहले जैसे एक कन्वेंशनल तरीका था, कुछ चीजें तय थी कि ये रहेगा, ये सारी चीजें फिक्स थी, अब नई तरह की कहानियां जो है उनको भी कहने का खतरा मोल ले रहे हैं लोग, बेशक कि भाई फिल्म में चले ना चले, लेकिन अच्छा सिनेमा इस बहाने कम से कम आते रहा हमारे सामने। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी एक फिल्म है जो ईस्ट इज ईस्ट, एक फिल्म आई थी
0: जी, जी,
1: उसका सीक्वल बन रहा है वेस्ट इज वेस्ट, जो अगले महीने मैं उसके लिए जा रहा हूँ। इंग्लिश फिल्म है, चंडीगढ़।
0: अच्छा अच्छा, इसको कौन निर्देशित कर रहा है?
1: एंडी डायरेक्टर का नाम है, चूंकि फिल्म जिन्होंने पहले प्रोड्यूस की थी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को दोबारा। फैमिली ड्रामा है, रिलेशनशिप की कहानी है, तो एक बार दोबारा मौका मिलेगा बाहर के लोगों के काम करने के तरीके के साथ, दोबारा काम करने का मौका, मजा आएगा।
0: क्या फर्क कुछ महसूस किया? इतनी सारी फिल्में की हैं और बाहर के लोगों के साथ में भी काम किया है।
1: फर्क तो है, फर्क ये है काम करने का तरीका अलग है, उनकी जो स्क्रिप्ट पे जो वो लोग काम करते हैं उस पर काफी समय वो लोग लगाते हैं, तमाम चीजें वो, ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% आप पहले से तय कर लेते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, बट 90% चीजें तय होती हैं, स्क्रिप्ट तैयार होती है उनकी, उस पर काफी काम वो लोग कर चुके होते हैं, बट कुछ चीजें इम्प्रोवाइज हो जाती हैं सेट पे, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। हमारे यहाँ उस तरह के सिनेमा की संख्या अब होने लगी है, अब बढ़ने लगा है वैसा, कि अब स्क्रिप्ट पे काम करने लगे हैं लोग, वरना सेट पे ही लिखा जाता है सब कुछ, कई बार एक आइडिया होता है किसी दिमाग में, चूंकि कमर्शियल सिनेमा की जो बात करें वहां पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कहानी से, कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं तो 50 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि कहानी इम्पोर्टेंट। पब्लिक जिन लोगों को देखने जाती है वो लोग बड़े इम्पोर्टेंट है ना कि कहानी इम्पोर्टेंट है, कपड़े वो क्या पहनेंगे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि वो कपड़े क्या कहते हैं या क्यों पहने गए हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उस सिनेमा से क्या कहना चाहते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक इट्स अ बिजनेस, व्यवसाय है, और वहां कि कैसे बेचना है, बेचना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अब बदल रहा है।
0: विजय भाई, आपके लिए भी तो ये एक रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन थिएटर भी आपको संयोग से मिला, सिनेमा में भी काम संयोग से ही आया।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इस सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सिनेमा आपके लिए क्या है, कितनी गंभीरता से आप उसे लेते?
1: मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ा स्ट्रांग मीडियम है, असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये बड़ा मुश्किल है इसके बारे में बता पाना है। कुछ मुद्दों को लेकर इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, बट वो बेचा जा सकता है, उसको बेचना ही क्यों बंद नहीं किया है, उसको बनाना ही बंद क्यों नहीं किया जाता है? अगर आप इतनी सीरियसली लेते हैं इस बात को, समाज के लिए आप एक विचार हैं, आप एक सोच, आप हैं जो सोचते हैं।

0: समाज के लिए, तो ये क्यों नहीं सोचते हैं आप? वो क्या चीज है जो रोकती है?
1: आपने असर की बात की, अगर असर नहीं होता तो लोग, सिनेमा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा आकर्षण है आज भी, शायद वो आकर्षण ही उसे सिनेमा हॉल तक खींच करके लाता है। सिनेमा का जादू, उसका तिलिस्म, तो मैं समझता हूँ कि लगातार बढ़ता चला गया है। टिकटें महंगी हुई हैं बावजूद इसके लोग
0: नहीं, लोगों ने जैसे कहा ना कि, जैसा मैं कह रहा था कि जो बुरी चीजें हैं वो सिनेमा ने सिखाई हैं समाज को, ऐसा मानते हैं लोग। बड़ा फिल्में उठाए हैं, बुराई को कभी जीतते हुए दिखाया नहीं, अंत में सच की ही जीत होती है। हर सारे मुद्दे उठाए, वो चाहे राजनीति का हो, चाहे वो भूख का हो, प्यास का हो, रिलेशंस का हो, वहां से तो सोसाइटी ने कुछ नहीं सीखा।
1: विजय भाई, कुछ और आने वाले प्रोजेक्ट्स के नाम जानना चाहेंगे?
0: एक फिल्म है डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी, जो बन रही है, अभी आएगी, रिलीज होगी। एक है फिल्म अता पता लापता, इसकी शूटिंग चल रही है, वेस्ट इज बेस्ट, जो शूटिंग करूंगा मैं। और रिलीज होने वाली दो तीन फिल्में हैं, द फ्लैग एक फिल्म है जो अगले साल जनवरी में रिलीज होगी, बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्री इंडिपेंडेंट की कहानी है। फितरत चूंकि मलंग है मेरी, इसलिए मैं भूल जाता हूँ करने के बाद चीजें, बहुत ज्यादा मैं याद रखता नहीं हूँ, और उनको चूंकि बहुत बोझा हो जाता है यार।
1: शुभकामना देते हैं कि लोग हमेशा याद रखें, और आपका तो नाम ही ऐसा है, मैं तो यही कहूंगा कि विजय भाई आपको जीवन में हर समय विजय मिले और पर्दे पर राज करें। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
2: आज के मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत ये थी फिल्म अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम में सहयोग PKA नायर ने दिया, संयोजन शकुंतला पंडित ने किया, कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग विजय दीपक छिब्बर ने दिया, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है, नमस्कार।
3: आज के मेहमान।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था, और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
7: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
6: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
7: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
6: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे, उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
7: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
9: आप सुन रहे हैं
10: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। शाम के 5 बज चुके हैं, अब आप सुनेंगे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

तावड़ो लाई पड़े है जोर की, अंबर उगड़े आग, धोरा धग धग तापिया, पंची छोड़िया बाग। साधना राजस्थानी प्रोग्राम युवाणी कार्यक्रम में आप रो घणे मानसू स्वागत है। आज है बुधवार रो दिन और आज व्याकरे निम्बोड़ी फरमाइशी कार्यक्रम जगह आप फाने भेजो फरमाइशा और मैं सुनावा आपने राजस्थानी लोकगीत। आज आप रे सागे इन कार्यक्रम में मैं जुड़े हाँ दो राजस्थानी दोस्त, आप रो इन कार्यक्रम में घणे मान स्वागत। आपने सुनावा ओ चौकसो प्रोग्राम रे शुरुआत में राजस्थानी गीत।

0: 1 घंटे के कार्यक्रम में मैं आपने सुना वाला चौका चौका रास्ता ने गीत और एक चौकसी भेंट वार्ता। आप वहाँ से जुड़न वास्ते व्हाट्सएप रहे नंबर माते मैसेज भेज सको। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9481239359। कई फरमाइशा हैं जिनकी माँ दूर पहुँचती हुई है। पदमपुर जिला गंगानगर सु लिखन वाला है मेहर अरोड़ा, ममता कृति और सारा अरोड़ा परिवार वाला।
1: तो साथी ने 1 घंटे रे कार्यक्रम में कोशिश करा आप सगला री फरमाइशा ने शामिल करने री, देर ताई सुनता रहो
0: कार्यक्रम

0: झालावन जोधपुर से फरमाइश लेकर भेजी है भागीरथ बरवड़, पिंटू, जयराम और सुनील।
1: हाँ फरमाइश आई है मेघवंश नगर भादुकला जोधपुर से, भेजन वाला है दिनेश सोडा, दिव्यांशी, रुद्राक्ष, भाव्यांश, साक्षी, रमनदीप, निशा और प्रिया सोडा।
0: बाड़मेर से फरमाइश लेकर भेजी है अशोक कुमार और भार्गव।
1: कोकरिया बन्नाड सू जबर सिंह खींची, देवेंद्र सिंह, तरुण सिंह और लाडू सिंह।
0: खेतेश्वर से फरमाइश लेकर भेजी है नाग सिंह, तनवीर, दिनेश और खेतेश्वर नाग सिंह।
1: और कतायो है मुरादाबाद यूपी सू, भेजन वाला है मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, लक्षदीप, सोनी, मोहिनी, रितिक और बलवीर सिंह।
0: आप सबने सुना हो चौको राजस्थानी गीत।

0: साधना अब आपने एक सुनावा भेंट वार्ता जकी है जीवराज श्रीमाली सामाजिक कार्यकर्ता सो नितेश देवड़ा की बातचीत इंड्रो विषय है सेवा स्वच्छता और सामाजिक कार्य।
1: जो खुद से बढ़कर समाज का सोचते हैं वही इतिहास के पन्नों में नाम लिखते हैं, जो तालाबों में फिर से जीवन भर देते हैं असल मायने में वही भविष्य सवारते हैं। नमस्कार श्रोता, आप सुन रहे युववाणी और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आरजे नीतीश। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद है जिन्होंने वर्षों से जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। तालाबों को नई पहचान दिलाना और हजारों लोगों को जागरूक करने वाले जीवराज श्रीमाली आज हमारे साथ है। तो सबसे पहले उनका हमारे कार्यक्रम युववाणी में करते हैं स्वागत। आप अपने बारे में सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं और बताएं कि आपकी जो ये सफर है उसकी शुरुआत कहां से हुई।
2: मेरा नाम पंडित जीवराज श्रीमाली है और मैं पाली जिला गांव गहरी का रहने वाला हूं। यहां पर जोधपुर में 29 सालों से रह रहा हूं और फिर बाद में यहां पर गुरो के तालाब में मैं शिफ्ट हुआ और वहां पर मैं तालाब के ऊपर गया और वहां पर देखा मछलियां तड़प रही थी। मछलियों के लिए, जलचर जीवों के लिए हमें कुछ करने का सोचा। हमने 5 पेड़ लगा करके शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद में हमने सोचा कि इसको क्यों नहीं ठीक किया जाए। आसपास में जो लोग रहते थे वो लोग लगातार उसके अंदर कोई तस्वीर डालता है, कोई घर का कचरा डालता है, कोई अपना शौच करने जा रहा है, तो उस तालाब को इतना गंदा किया पूछो मत बात। तो हमने ठानी कि इसको ठीक करना है। फिर हमने सफाई शुरुआत की तो 2016 से 2018 तक मैंने 60 ट्रैक्टर जो है 59 ट्रैक्टर, मेरे साथ में 2-4 जन भी थे लेकिन वो हम सब निकाल करके उसको बार किया। 2025 के बाद में हमने निर्माल्य कलश के नाम से हमने 5 उधर वो कलश लगाए, तो उसमें कलश के अंदर पहले नारियल विसर्जन का, दूसरा है मूर्ति और तस्वीर विसर्जन का, तीसरा है पुष्प विसर्जन का, चौथा है पुस्तक और ये जो कुंकू पत्री है या इस तरीके से भगवान की जो चीजें हैं वो उसमें रखने का। तो वो उसका हमारा उद्देश्य था, एक था भगवान के कपड़े, फिर बाद में जो लोग लाएंगे एक सामान लाएंगे उसके अंदर डाल देंगे, तो उसके लिए हमने प्लास्टिक के भी जो पॉलिथीन लाता था उसका भी हम लोगों ने वहां पर एक ये रखाया। तो इस तरीके से हमारे पास 6 जो है कलश विसर्जन कलश लगाए हुए लोगों में। अब जो आज की पोजीशन है वो 95% जो है वहां पर गुरो के तालाब के अंदर बहुत ही मान्यता के अनुसार, जैसे कि हम एक तो सीसीटीवी कैमरे का भी डर है, किसी को डालने की कोशिश भी करेंगे तो उसका वीडियो हम डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, और दूसरी बात है कोई समझदार लोग थे तो ऐसा करके कुछ भय से या कैसे भी तरीके से जो है लोगों ने सहयोग करके हमारा साथ दिया। 95% वो गुरो का तालाब है वो बढ़िया अच्छी तरीके से है। फिर बाद में हमने शुरुआत तो वहां से की और जो कपड़े थे उस कपड़े का हम जो मोबाइल कवर है और छोटी मोटी जो भी चीज है, माता की जो चुंदरी है तो उसकी पोटली बना दी, तो इस तरीके से हम रिसाइकलिंग करके लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपना रिसाइकलिंग करें ज्यादा से ज्यादा और तालाबों का उपयोग जो हो, प्रदूषण हो रहा है तो उसका उपयोग कम से कम करें।
1: अब मैं पूछना चाहूंगा जीवराज जी आपसे कि तालाब और बावड़िया हमारे समाज और संस्कृति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बात करें आज से 50-60 साल पहले तो जो हमारा जल का जो मुख्य स्रोत था वो यही बावड़िया और यही तालाब थी, इन्हीं में से पानी लेके आते थे, वही पानी हम इस्तेमाल करते थे, वही पानी पीते थे, और आज की स्थिति में देखें तो इन तालाब और बावड़ियों का पानी पीने लायक भी नहीं है, और देखा जाए तो इन सबका ऐसा हाल करने वाले हम सभी हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: एक इंसान ऐसा व्यक्तित्व तो है जो खुद को अच्छा मिले वैसा काम कर रहा है। अभी जो उनको अच्छा पानी कायलाना से मिल रहा है और बाहर से आ रहा है पानी, तो ये जो तालाब है बावड़िया है इसको दूषित करने का जो काम कर रहे हैं वो गलत है।

0: ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको साथ में मिलकर के आने वाले समय में जल संकट होगा, और ये तो बाहर से आ रहा है, बाहर से कितने दिनों का पानी आप उपयोग में लोगे। खास करके हमारा जो जल स्रोत है, हम इसको भी ठीक कर रखेंगे तो आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी जो है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो हमें याद करेगी और अपना आने वाले समय में हमें कोसेगी कि हमारे पिताजी, हमारे जो परिवार के जो सदस्य है, वो क्या करके गए।
1: और वही मैं साथ ही साथ जानना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे काफी समय से वायरल हो रहे आयरलैंड के कैरन हैं, वो भी जोधपुर के जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनको वो लगातार सफाई कर रहे हैं और यूथ तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि जितने भी जो भी हमारी बावड़िया है, जो भी हमारी धरोहर है प्राकृतिक, उनको स्वच्छ रखना क्यों जरूरी है, और वो लगातार मैसेज देते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यूथ भी इस चीज में आगे, उनको आना चाहिए?
0: देखिए, यूथ को तो आना ही चाहिए। साथ साथ में मैं कैरन जो है अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, और जो जालरा है और जो विरासत है पुरानी, उसको बचा रहे हैं, और आने वाले समय में ये हमारे काम आने वाले हैं। आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, हम नहीं तो हमारे बच्चे हैं, वो इसका उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ में चल करके जो कार्य करना चाहिए, मैं सबसे ये कहूंगा।
1: और वही देखा जा रहा है कि लगातार जो भी बावड़ी है, तालाब है, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। देखा जाए तो उनको लगभग गंदा आसपास के लोग ही कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, उन बावड़ियों का जीर्णोद्धार सरकार को कराना चाहिए, या फिर जो लोग उन्हें गंदा कर रहे हैं उनको खुद उस तालाब में उतर के उसकी पूरी सफाई करनी चाहिए?
0: नहीं, मेरी धारणा तो यही है कि जो अगर मेरे तालाब के अंदर अगर डाल रहा है और मैंने देख लिया, तो उसी से उठवाता हूँ मैं। जो गंदा करता है उसको उठाना चाहिए। और मैं तो ये सबसे पहले आपसे यही कहूंगा भाई साहब कि आप सफाई नहीं कर सकते हो तो गंदगी फैलाने का अधिकार भी आपको नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा अजीवराज जी। वही मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि आपके अभियानों में हजारों लोगों ने भाग लिया। लोगों को एक सामाजिक उद्देश्य से जोड़ना का आपका तरीका क्या था? लोगों तक आपने कैसे मैसेज पहुंचाया कि अपनी जो भी ये झील है, जो भी ये तालाब है, उनको हमें आगे आके उनको सफाई करनी पड़ेगी?
0: ये कायलाना के अंदर तो विचित्र है भाई साहब। पहले हमने सबसे आह्वान किया था, मैंने सोशल मीडिया भी डाला था कि आपको इस तारीख को हम अपना अभियान लेकर चलेंगे और कायलानों को साफ करेंगे। सवेरे गए तो हमारे चार जन आए तो हमने सोचा कि क्या हम चार जन ये और मैं पांचवा ये इतना सफाई कर पाएंगे। और वापिस क्या है कि 22 तारीख को 21 तारीख को जो पानी छोड़ने का था प्लान उनका, तो ये पानी भी छोड़ने का था और इसको सफाई भी करना था, तो ये दोनों चीजें एक साथ में नहीं हो सकती। तो मैंने सबसे पहले 10 मजदूर लाए और 10 मजदूर से मैंने काम करवाया। फिर बाद में तीसरे दिन भी वापस 10 मजदूरों से काम करवाया, तीसरे दिन 10 मजदूरों से काम करवाया। और फिर मेरा विचार था कि भाई हमने तो ये इतना काम कर दिया, आगे करने का विचार नहीं है। लेकिन मेरे थोड़ा जीव में ऐसा थोड़ा ये था, जहन में था कि ये झील पूरी साफ नहीं हुई है, प्लास्टिक मुक्त नहीं हुई है, कपड़ा से मुक्त नहीं हुई है। ये यहाँ पर कोई मिट्टी के जो कूलड़ है, मिट्टी के जो बर्तन है, वो बायोडिग्री करके कोई कहता है कि ये बायोडिग्रेबल है, इससे पर्यावरण को दूषित नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि पर्यावरण से दूषित नहीं होता है, लेकिन आप पाटने का तो काम कर रहे हो, तो ऐसा है ना कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो हम अपना फिर हमारा विचार हुआ कि नहीं, हम आगे अभियान चलाएंगे। फिर बाद में दूसरा अभियान कराया, 2 दिन जुड़े, फिर तीसरे दिन, दूसरे दिन 11 जन जुड़े, 28 जन जुड़े, फिर 52, फिर 78, फिर 85, फिर 100, ऐसे करके 250 और 300 तक ये हमारी संख्या पहुंची। और हमने करीबन 12,000 किलो जो कपड़ा और प्लास्टिक जो निकाला है उसके अंदर से, मलबा नहीं निकाला है, जो मिट्टी वगैरह उसको नहीं छेड़ा है हमने सिर्फ 12,000 किलो जो है प्लास्टिक और कपड़ा निकाला है उसके अंदर से हमने।
1: मतलब जब कायलाना का जब जल स्तर कम हुआ, जो आसपास जो बाउंड्री है उस लेक की, उसके पास लोगों ने 12,000 किलो तक का कचरा इकट्ठा कर दिया। अगर हम मलबे की बात करें तो वो हजारों टन वो है, जो वो अलग है। आपने वो चीजें सारी सफाई की, ये सब चीजें की। और जीवराज जी, वही देखते हैं, जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो कोई ना कोई बड़ी चुनौती हमारे सामने जरूर आती है। तो इस अभियान के दौरान कुछ ऐसी चुनौतियां है जिसको आपने फेस किया?
0: फिर तो वो जो पहली बार जब हमने अभियान लेके चले तो हम चार जन आए और फिर मजदूरों से काम करवाया, और फिर बाद में कारवा बढ़ते गया और सबका सहयोग मिलता गया, और तन मन और धन से सबका सहयोग मिला। और जोधपुर वासियों का जो आए हैं पर्यावरण प्रेमी, जो बहुत ही तरीके से काम किया है, और जो सीनियर सिटीजन है वो भी आए थे, तो उनको भी देखा कि 78 साल के, 82 साल के और 55 साल के ऊपर जो थे वो सब आए। तो उनको मैंने हाथ जोड़ के कहा, आप पधारे, आप ठीक है, लेकिन तालाब के पास में नहीं जाए। लेकिन वो रोक नहीं पाए, वो तालाब के आसपास में प्लास्टिक चुगा, तो मेरे हृदय में ऐसा

0: आया ऐसे जो है वृद्धजन सीनियर सिटीजन लोग भी हमारे साथ में जुड़े, तो बहुत ही आनंद आया। और अभी भी आज 17 तारीख है तो आज भी हमारा अभियान नित्य, मैं वहां पर जाता हूं और रविवार रविवार जो अभियान चालू रहेगा वहां पर अपना क्लीन कायलाना करके ही छोड़ेंगे।
1: क्या बात है, और ऐसा ही धारणा सबके अंदर होनी चाहिए कि भाई जो हमारे जो प्राकृतिक जल स्रोत है या फिर जो हम डेली रूटीन में जिस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें स्वच्छ मिले, और स्वच्छ तभी मिलेगा जब हम उसकी सफाई रखेंगे, ना उसमें कचरा डालेंगे ना किसी को डालने देंगे। और वही साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इस अभियान के दौरान स्थानीय लोगों और युवाओं का इस अभियान में कितना योगदान था।
0: युवाओं का योगदान तो था ही कि तालाब नदियां जल और जो पर्यावरण है वृक्ष है उसकी सेवा करना हम सबका कर्तव्य है। आने वाले समय में अभी जो 45-40 जो डिग्री तापमान है उसका अगर हम प्रकृति का संतुलन नहीं कर पाए, ग्रीन हिंदुस्तान नहीं कर पाए, तो आने वाले समय में 55 डिग्री का जो है तापमान होगा तो हमारे लिए खराब होगा।
1: बिल्कुल, जो कहा है आपने टेम्परेचर वो बिल्कुल बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे आसपास देखा जाए तो काफी सारी लेक है, काफी सारी बावड़ियां हैं, काफी सारे ऐसे जंगल है जिन्हें हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। और मैं वही साथ ही साथ जानना चाहूंगा कि क्या कोई एक ऐसा अनुभव है जिसने आपको इमोशनल किया हो कि हाँ भैया इस जर्नी के दौरान मैं यहाँ पे जाके इमोशनल हुआ हूँ।
0: इमोशनल तो बहुत हुआ, गुरु के तालाब के अंदर भी बहुत सी मुसीबतें आई है। लोग जब हम पेड़ लगाते थे तो कई बार गायें गिरा देती थी, कई बार अपना पेड़ लगाया, लोगों का सामना तो करना पड़ता है। लेकिन एक बात है, सोना को जितना तपाएंगे उतना उजला होता जाएगा। तो वैसे के वैसे हमारे साथ में जो कारवा है, जो हमारे साथ में जो लोग है वो अच्छे अच्छे लोग है, तो इसके लिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं रही।
1: और वही मैं साथ ही साथ जानना चाहूंगा कि जल संकट को कम करने के लिए तालाब और बावड़िया किस रूप से हमारी मदद कर सकती है आने वाले समय में।
0: आने वाले समय में तालाब और बावड़िया जो जल का है वो हमें मुख्य रूप से इसका उपयोग करना पड़ेगा। अभी कायलाना का जल स्तर कम हुआ था तब अपने हैंडपंप और कई तरीके से जो मशीन लगा करके ये लोग गली गली में भर रहे थे। मैंने जो ट्यूबवेल खुदवाई है तालाब के ऊपर तो वहाँ पर करीबन ये जल संकट के अंदर 20 घरों में पानी हमारे तरफ से दे रहे थे, हम लोग दे रहे थे वहाँ पर।
1: और इतने बड़े सामाजिक कार्यों के बीच आपको ऊर्जा और सकारात्मक सोच कहाँ से मिलती है, आपका जीवन का मंत्र क्या है?
0: मंत्र यही है, झील तालाब और नदियाँ आपकी आंखें हैं, रखना चाहे तो गंगा जल रखो और गंदगी रखना चाहे तो गंदगी रखो, ये आप पर निर्भर है। गंदगी रखोगे तो बीमार पड़ोगे और गंगा जल रखोगे तो स्वच्छ रहोगे, सुंदर रहोगे, यही मेरा मंत्र है।
1: वही मैं जीवराज जी साथ ही साथ जानना चाहूंगा कि युवानी के माध्यम से जितने भी अपने को युवा साथी सुन रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: उन्हें यही कहता हूं कि आप कसरत करने जाते हो, योग करने जाते हो, या क्रिकेट खेलने जाते हो, या बहुत सी माता बहने हैं जो घूमती है, ऐसा डॉक्टर कहता है कि आप अपना घूमो, तो घूमना नहीं है, जो कमजोर पेड़ है उसके साथ में 1 लीटर पानी लेके जाओ, 1 लीटर पानी पिलाएंगे तो कमजोर पेड़ खड़ा हो जाएगा। और जो युवा है उनसे भी कहता हूं कि आप 20-25 जनों की टीम रहती है तो आप अपना 50 पेड़ लगाओ और आपने हफ्ते में एक बार पानी पिलाएंगे और उसकी देख रेख करोगे तो भी अपना आप अपना प्रकृति के प्रेमी हो जाओगे और प्रकृति का जो तापमान है उसके कमी आएगी और हम सबके सहयोग होगा तभी ये हो पाएगा, प्रकृति बच पाएगी, नहीं तो नहीं बच पाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा, पेड़ हो, पानी हो या अपनी धरती की शान, इससे ही बचती है हर इंसान की पहचान। जो प्रकृति की सेवा में अपना जीवन लगाते हैं वो जाते नहीं, आने वाली पीढ़ियों के दिल में बस जाते हैं। हमारे साथ थे जीवराज रिमाली, आपने अपना अमूल्य समय दिया और अपने अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं को इसी संदेश के साथ मैं कहता हूँ, मैं आपसे आपका रेडियो दोस्त आरजे नितेश फिर मिलूंगा, तब तक के लिए स्वच्छ रहिए, जल बचाइए, प्रकृति से अपना रिश्ता निभाइए। धन्यवाद, धन्यवाद जीवराज,
0: धन्यवाद।
2: सदन आप आभार सुन रहा भेंट वार्ता जीवराज श्रीमाली सामाजिक कार्यकर्ता से नितेश देवड़ारी बातचीत इन विषय हो सेवा स्वच्छता और सामाजिक कार्य।

0: सर साधना, हर निमोड़ी फरमाइसी कार्यक्रम में आपने एक राजस्थानी शब्द दिया, चुनौतों में आपने हिंदी अर्थ पूछा, आज रो राजस्थानी शब्द है ब्याड़ू। इन अर्थ आप माने मारा व्हाट्सएप रे नंबर माथे लिखने भेज दे रहा हो। मारा व्हाट्सएप रे नंबर है 94-133-29-359।
1: जी हाँ सत्यदा, और अगली फरमाइश आई है बड़ा जिसलमेर सू, बेजनवाड़ा है मुल्ताज सिंह भाटी, हर चांसमन सू वीरेंद्र सिंह करनोत।
0: गांव तापू सू में लिखन भेजो है विष्णाराम, विदामी देवी, सुनील, पूजा, सुरेश, सुभाष और श्याम सुंदर।
1: मोती नगर दिल्ली सू कविता, अनिल, गौरव, अरमानसी, अरोरा।
0: मोखा बाड़मेर सू फरमाइश लिखन भेजी है प्रहलाद सारण।
1: कलानौर सू नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन, अरमयंक शर्मा।
0: अनुसरणाओं चौको सौ राजस्थानी लोक भजन।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: खारिया खुर्द आड़ेल सुब फरमाइश लेकर भेजी है कमरा राम सारण और सतीश सारण।
4: हांडी खेड़ा सिरसा सु भेजने वाला है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा।
3: अगली फरमाइश पहुंचती हुई है प्रताप नगर जोधपुर से, लिखने वाला है मनोहर और पंकज।
4: गांव धुंदाड़ा लोनी सु अलादीन धुंदाड़ा।

0: छत्तीसगढ़ सो फरमाइश लेकिन वेजी है जानवी पिंकी और नरेंद्र डोम।
1: देवाद्रा सो जबर सिंह भाटी, उमा कंवर, ओम विजयपाल सिंह और शोभा कंवर पड़ियार।
0: डोंडी लोहारा सो फरमाइश लेकिन वेजी है हरिशंकर बेलदार।
1: गांव बागोरिया सो राजेंद्र और गणपत मंगलाराम।
0: जेल रोड रायगढ़ सो फरमाइश लेकिन वेजी है उमा राज और जगदीश राज।
1: होंडू बालोतरा सो उमेदाराम, सुरेश कुमार, मदन चौधरी।
0: प्रतापनगर सुपर मैच लेकिन भेजी है पंकज करण और अर्जुन।

0: साधना हिंदू पंचांग के अनुसार महाराणा प्रताप रो जो जन्म है वो आज रिज दिन हुई हो। महाराणा प्रताप रो जीवन उन्हारे त्याग और पराक्रम से जुड़ी कई ऐसी खासा खास बात हैं जो आप जिती करा बत्ती का मैं और करा तो आप जो को सीनो है वो गर्व से चौड़ो हो जाए। पहली बात तो है वे कदे अधीनता नहीं मानी, स्वाभिमान री मिसाल है जी की कायम करी, मेला रा सुख छोड़िया, अकबर री मूछ नीचे करण वाला प्रताप कदे मुगल सल्तनत रे सामी माथो नहीं झुकायो। घासरी रोटियां खाई उन महिला रा ऐसा आराम छोड़ जंगला माए रेवणो मंजूर करियो। घासरी रोटियां खाई पण अपनो स्वाभिमान और मेवाड़ री आण बाण माथे आँच नहीं आवण दी। महाराणा प्रताप री कद काठे भी अपन सुनने ने मिले कि वे घना मोटा और लंबा जका है वह मिनखा उनारो वजन है जो को भला रो उनारा हथियारा रो वजन है जो को भी घणो हो। सेनाओं ज़्यादा जरूरी बात है कि उनारी जकी युद्ध नीति है छापा मार जकी घनी है जकी अपार बीच के मान हुई प्रसार और जंगला माए से लड़ाई लड़ी। महाराणा प्रताप भारत माए छापा मार युद्ध करण वाला पहला मुखिया राजा हा।
1: तो साथी आज रे कार्यक्रम रो भगत हो रही हो पूरो एंड कार्यक्रम की प्रस्तुति करी ही राजेश लाम रोड। मैं आप रे साथ है आप रेडी दोस्त बोम सिंह, मारे साथ है
0: देवी सिंह, माने देरो सिंह राम राम सा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सनसिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्य सत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्ज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
3: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और

0: और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 178,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 154,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।

शफक की सुर्खी अब आहिस्ता आहिस्ता किलों की इन कदीम दीवारों के पीछे दम तोड़ रही है। दिन का शोर अपने अंजाम तक पहुंच चुका है और अब वक्त है इस आते हुए अंधेरे की संजीदगी को ओढ़ लेने का। अंधेरे और उजाले के इस आखिरी सरहद से एफएम सन सिटी पर मैं हूं आपका रेडियो हम सफर, और आलम शाम की संजीदगी में आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग जोधपुर।

क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाएं।

सदियों से इंसान इस कश्मकश में रहा है कि आखिर उसकी सबसे बड़ी ईजाद क्या है, पहिए का आविष्कार या आग की खोज। मगर हकीकत तो यह है कि इंसान की सबसे अजीम और सबसे बड़ी ईजाद सिर्फ एक है, उसके अल्फाज। कायनात की शुरुआत में सिर्फ एक सदा थी, उस सदा ने जब आकार लिया तो वो हर्फ बनी। इन्हीं हर्फों से बुनी है हमारी और आपकी पूरी हस्ती। एक आम सा शब्द जब दिलों के दरमियान से गुजरता है

किसी की ज़हनियत को मुकम्मल तौर पर आबाद कर सकता है या फिर उसे हमेशा के लिए वीरान। आज रात की ये गुफ्तगू उन अल्फाज के नाम जो हमारी रूह का आईना है।

0: 3 प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

संगीत और खामोशी का यह रिश्ता बड़ा अजीब है। एक अजीम संगीतकार जानता है कि साज बजाने से ज्यादा जरूरी क्या है, यह जानना कि कहां साज को रोककर खामोशी की फसाहत को बोलने देना है।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अल्फाज की सबसे बड़ी खूबसूरती इस बात में पोशीदा है कि उनकी तासीर तब तक समझ नहीं आती जब तक आप खामोशी को पढ़ना ना सीख लें। अक्सर जो दर्द, जो एहसास जुबान से अदा नहीं हो पाते, वो निगाहों की नमी और दरमियानी चुप्पी कह जाती है। हम पूरी जिंदगी नए नए शब्द सीखते हैं ताकि हम अपने एहसास को दुनिया के सामने बयां कर सकें, पर सच तो यह है कि जो शख्स आपकी रूह से वाकिफ है उसे आपके अल्फाज की दरकार ही नहीं होती, वो आपके चेहरे की लकीरों में पूरी दास्तां मुकम्मल पढ़ लेता है।

0: अपना सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

वक्त बड़े से बड़े जख्मों को भरने की ताकत रखता है। शमशीर या तीर से लगे हुए निशान भी वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, पर जुबान से अदा हुआ एक तल्ख लफ्ज अगर किसी के दिल की जमीन पर गिर जाए तो वो नासूर बन जाता है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए, हरा भरा पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणो जी का बाग, खोखरिया विराम मंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरी, आप कुछ समय हरियाली में बिताओ।

इंसानी जहन आम बातें भूल सकता है, पर वो उस कशिश या उस अजियत को कभी नहीं भूलता जो किसी के अल्फाज ने उसके अंदर बेहतर की थी। तैश में निकले चंद शब्द सदियों की कुर्बतों को खाक कर देते हैं, और वही शफाकत से बोले गए दो बोल संग दिल इंसान को भी मोम कर देते हैं। आइए इन अल्फाजों की तासीर को संगीत की जुबान में महसूस करते हैं, उन सदाओं में जिन्होंने लफ्जों को हमेशा पूरी शिद्दत के साथ अदा किया है।

सफर चाहे जिंदगी का हो या इस कार्यक्रम का, इसकी सार्थकता सिर्फ इस बात में है कि इसने आपके जहन में कौन सा बीज बोया। कल की सहर जब तुलू होगी और आप अपने दिन का आगाज करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी जुबान से निकला हर अल्फाज किसी के वजूद को संवार दे। FM Sun City के सांगन से मैं जतिन अब अपनी इस गुफ्तगू को यही विराम देता हूँ। फिर एक शाम आपसे इसी संजीदगी के साथ मुलाकात होगी। शब्बा खैर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर, आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सन सिटी चैनल है। सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला विविध भारती मुंबई से।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: अभी आपने मोहम्मद रफी और बलबीर के स्वर में देशभक्ति गीत सुना। साहिर लुधियानवी के लिखे गीत की धुन बनाई थी उपेन अय्यर ने। फिल्म का नाम था नया दौर। अब सुनिए सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत संगीत कैलाश खैर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: सक्सेना।
1: फौजी भाइयों को अब हम सुनवा रहे हैं बंधन फिल्म का गीत कुमार शानू की आवाज में, बोल लिखे हैं देव कोहली ने, संगीत आनंद राजा।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण को फिल्म गुलाम में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत जतिन ललित का।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77, 78।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।
1: उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल का गाया सड़क फिल्म का गीत, तर्ज नदीम श्रवण की, बोल सुरिंदर साथी के।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

जयमाला कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनिए दीवाना फिल्म का गीत, बोल समीर के आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये है विद भारती, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम राग अनुराग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राग भैरवी से। फिल्म का नाम है श्री 420। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आपने राग भैरवी पर आधारित श्री 420 फिल्म का गीत सुना। अब हम आपको सुनवा रहे हैं राग पहाड़ी पर आधारित वक्त फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। रवि के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

राग पहाड़ी के बाद अब बारी राग अहिल्या बिलावल की। परिचय फिल्म से ये गीत है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीत गुलजार के, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: अभी आपने राग अलहैया बिलावल पर आधारित परिचय फिल्म का गीत सुना। इसी के साथ ही राग अनुराग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, हवा महल में आइए आज सुनते हैं नाटिका मेनू कार्ड। ये नाटिका ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एला कार्ड का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। नाट्य रूपांतरकार हैं मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद।
1: शायद आपने सुना होगा कि एक सज्जन ने दावा किया था, दुनिया एक बंद सीप के समान है और वो एक दिन अपनी तलवार से उस बंद सीप का मुंह खोल देगा। उसके इस दावे से लोग स्तब्ध रह गए थे, लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है। तलवार की मदद से सीप का मुंह खोला जा सकता है, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी लड़की की कल्पना की है जो एक टाइपराइटर की मदद से इस सीप रूपी दुनिया का मुंह खोल दे? जी हाँ, टाइपराइटर की मदद से शायद नहीं सोचा। तो आज सोचिए, एक शहर के एक छोटे से ढाबे नुमा होटल में खाना खाने बैठी एक लड़की, नाम है सारा।
2: ओहो, ये मेनू कार्ड है या किसी डॉक्टर द्वारा लिखा गया दवा का पर्चा? ये भी पता नहीं चलता कि भाषा अंग्रेजी है या जर्मन।
3: आप पहली बार यहाँ खाने आई हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। अजी मैडम, यहाँ तो अक्सर ये होता है कि खाना स्वीडिश से शुरू होकर सूप पर जाकर खत्म होता है। पता ही नहीं चलता कि किस जगह सूप लिखा है और कहाँ पुडिंग।
2: तो क्या सभी मेज के मेनू कार्ड इसी तरह के हैं?
3: जी हाँ, सभी इसी तरह के हैं। और तो और, मैनेजर के काउंटर पर जो मेनू रखा है वो भी इसी भाषा में लिखा गया है।
2: दूसरा कोई होटल इतने पास है नहीं और रोज कहीं दूर जाकर खाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसे क्या खाया जा सकता है?
3: देखिए, मेरी सलाह लीजिए, ये जिम्मेदारी आप बैरे पर डाल दीजिए और जो कुछ वह ले आए उसे आंख मीच कर चुपचाप खा लीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ।
2: यही करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता भी क्या है?
3: ओके मैडम, मैं चलती हूँ। उम्मीद है शाम को फिर खाने पर मुलाकात होगी। बाय बाय।
2: बाय बाय। बैरा।
4: यस मैडम, कमिंग।
5: क्या खाइएगा?
2: मैं क्या बताऊँ, अपनी मर्जी से ले आओ।
5: ओके मैडम।
2: बड़ा बुद्धू लगता है इस होटल का मालिक। अगर इसी मेनू कार्ड को साफ साफ लिख कर रख दे तो कम से कम खाने वाले को यह तो पता चल जाए कि वो

0: आज क्या क्या खाने वाला है?
1: यही ठीक रहेगा, शायद उसकी समझ में बात आ जाए। एक प्लेट चावल, दो स्लाइस सूप, सलाद।
0: हेलो सर।
2: यस मैडम।
1: शायद आप ही यहाँ के मालिक हैं।
2: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
1: देखिए, ये आपके यहाँ का मीनू है, मैं इसे दोपहर अपने साथ ले गई थी और साफ साफ टाइप करके ले आई हूँ। अगर इस तरह आप अपने मीनू कार्ड मेज पर रखें तो ग्राहकों को ऑर्डर देने में आसानी रहेगी, साथ ही आपके होटल की साख भी बढ़ेगी।
2: थैंक यू मैडम, आप ठीक कहती हैं, मगर हमारे यहाँ रोज नई नई चीजें बनती हैं, इसलिए कम से कम आधा मीनू तो हमें रोज ही बदलना पड़ेगा।
1: तो इसमें मुश्किल क्या है? देखिए, मैं टाइपिंग का काम करती हूँ और रोज यही खाना खाने आती हूँ। अगर आप हर शाम मुझे दूसरे दिन बनने वाले खाने की लिस्ट दे दिया करें तो दूसरे दिन सुबह ही मैं उसे टाइप करके भिजवा दूंगी।
2: ओह, वंडरफुल वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेल मैडम, इस मेहनत के बदले हम आपसे खाने के पैसे नहीं लेंगे। ओके
1: ये तो आपने बड़ी मेहरबानी की, लेकिन इसके साथ ही अगर एक और बात मान ले तो बड़ी आभारी रहूंगी।
2: यस।
1: खाना मेरे कमरे में ही भिजवा दिया करें, बस इसी होटल से लगा मेरा कमरा है, रूम नंबर 87।
2: मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, मैं जरूर आपका खाना पहुंचाने का इंतजाम करवा दूंगा।
1: थैंक यू वेरी मच। आपको तो ऐसा करिएगा कि जब आप शाम का खाना भिजवाएं तो दूसरे दिन का मीनू भिजवा दिया करिए, और जब सुबह चाय लेकर बैरा आएगा तो उसके हाथ में टाइप किया मीनू भिजवा दूंगी और शाम के मीनू के बारे में भी पूछताछ कर लूंगी।
2: ठीक है ठीक है।
1: अच्छा, कुल कितनी मेज है यहाँ?
2: मेज 12।
1: तो 12 यह है, एक आपके लिए और दो फालतू, कुल 15 मीनू कार्ड, ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
1: एक बहुत बड़ी समस्या कितनी आसानी से सुलझ गई। आज ही वॉल्टर को पत्र लिखूंगी तो वो बहुत खुश होगा। मगर जब से मैं इस कमरे में आई हूँ उसके पत्र ही आने बंद हो गए। पता नहीं वह किस तरह से है, इतनी मेहनत कर रहा है, कभी कभी कितनी अजीब घटना घट जाती है। क्या पता था मुझे कि वॉल्टर से प्रेम हो जाएगा, लेकिन वॉल्टर कितनी मेहनत करता है उस फॉर्म में, रात दिन उसी में जुता रहता है। काश उसके अनाज के गोदाम में उस दिन आग नहीं लगती तो फिर मुझे इस तरह शहर थोड़े ही आना पड़ता। क्या भयंकर आग थी उस दिन। वाल्टर,
3: सारा अब क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, लूट गया मैं तो सारा, सब कुछ चलकर खाक हो गया।
1: अब इस तरह रोने से क्या होगा वाल्टर, हिम्मत न थारो, मेहनत करो और फिर से इस फॉर्म को अनाज से भर दो।
3: क्या सोचा था, क्या हो गया सारा, भविष्य के सारे सपने मिट्टी में मिल गए।
1: सपने तो बनते बिगड़ते रहते हैं वाल्टर, उनसे क्या घबराना, हम नए सपने दोबारा बुन लेंगे, तुम मेहनत करो।
3: मगर अब हम कैसे सब कर पाएंगे, सारी पूंजी सारा अनाज आग ने चलाकर खाक कर दिया है, और सारा एक महीने से तुम्हारी नौकरी भी तो नहीं।
1: देखो वाल्टर, वक्त का हाथ कौन पकड़ सका है, गोडाउन जल गया है तो इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। उठो, पहले हाथ मुंह धो लो, उसके बाद कुछ सोचेंगे। मुझे एक बात सूझिए, सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए।
3: कहो।
1: देखो वाल्टर, अगर हम इसी तरह गांव में बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा,

0: करते हैं कि तुम तो यहीं रहो, वापस उस फॉर्म को खड़ा करो और मैं शहर चली जाती हूँ। वहाँ कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करूंगी, बस जनवरी तक हमारे दिन फिर जाएंगे और बसंत की बहारों के दिन हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे।
1: लेकिन बसंत का मौसम आने में तो अभी 10 माह बाकी हैं और 10 महीने तक तुमसे अलग नहीं सह रहा, ये नहीं हो सकता।
0: वाल्टर, मैं लड़की होकर हर मुसीबत से जूझने को तैयार हूँ और तुम मर्द होकर इतने परेशान हो रहे हो, सिर्फ 10 महीने की तो बात है।
1: हा?
0: और मैं टाइपराइटर ले जाऊंगी, जिसे और कुछ काम न मिले तो कम से कम टाइपिंग करके ही कुछ न कुछ कमा लूंगी।
1: 10 महीने सारा, सोचकर ही मन कांपने लगता है।
0: लेकिन 10 महीने बाद की तो कल्पना करो वाल्टर। और एक बात और भी है वाल्टर, कुछ दिन अलग रहकर हम अपने प्यार की सही कीमत आंक सकेंगे।
1: सारा
0: वाल्टर, आठ महीने बीत चुके हैं, सिर्फ 2 महीने बाकी हैं और वाल्टर ने लिखा था कि वह उस दिन स्वयं मुझे लेने आएगा। ओह, कितना सुहाना दिन होगा वो, पता नहीं कितना बदल गया होगा वाल्टर।

0: आपने बुलवाया था मुझे?
1: यस मैडम, प्लीज हैव योर सीट।
0: थैंक यू।
1: देखिए अब बसंत का मौसम शुरू हो रहा है, इसलिए हमारे मेनू कार्ड भी पूरी तरह बदल जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में कुछ नई चीजें ग्राहकों को दी जाएगी।
0: जी हाँ, कल मौसम का पहला दिन है। ओह वाल्टर
1: जी, क्या कहा आपने?
0: कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। आप क्या नई डिशेस बनाते हैं?
1: बस जरा हरी सब्जियों पर ज्यादा जोर रहता है। हमारी खास डिश है हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
0: उसे भी यह सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है।
1: जी किसे?
0: ओ माफ कीजिएगा, मैं कुछ और ही सोचने लगी थी। हाँ तो ये सब्जी आप रोज बनाएंगे?
1: जी हाँ, करीब करीब रोज ही, कल से ही हम इसे बनवाना शुरू कर देंगे। आप भी देखिएगा, ये सब्जी हमारे यहाँ एक खास ढंग से बनती है।
0: तो ऐसा करते हैं कि इसे बड़े टाइप में काफी स्पेस देकर टाइप कर देती हूँ।
1: वंडरफुल वंडरफुल।

0: गाजर की सब्जी सूखी, मूली का रायता, आलू, पनीर। ओह वाल्टर, तुम कहाँ हो? कल से बसंत का मौसम शुरू हो रहा है। ये देखो, तुम्हारी मनपसंद सब्जी नहीं, उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी। वाल्टर, कल जरूर आ जाना। वाल्टर, तुम्हारे पत्र भी बहुत दिनों से नहीं मिल रहे हैं। वाल्टर, कल जरूर आना, जरूर आना, जरूर आना।
1: मैम साहब, आपका खाना
0: रख दो यहाँ। हाँ, आज तो नई सब्जी लाए होगे।
1: जी हाँ, और हमारे यहाँ की सबसे मशहूर सब्जी भी है। ये देखिए, उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
0: तुम ये सब्जी ले जाओ, वापस ले जाओ।
1: बट मैडम, ये तो हमारे यहाँ की खास डिश है, आप चक्कर तो देखिए।
0: नहीं, तुम नहीं जानते, मैं अभी इसे नहीं खा सकूंगी, नहीं खा सकूंगी।
1: ओके, जैसा आपका हुक्म।
0: ओह वाल्टर, बसंत का पहला दिन तुम्हें मुबारक हो। लेकिन तुम कहाँ हो वाल्टर? तुमने वादा किया था कि तुम इस दिन मुझसे मिलने जरूर आओगे। काश तुम आज यहाँ होते तो हम दोनों साथ साथ तुम्हारी मनपसंद सब्जी खाते। वाल्टर, कौन है?
2: सारा।
0: वाल्टर, ओह वाल्टर, तुम सच ही वाल्टर हो ना? बेरा, बेरा।
2: यस मैडम।
0: उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी वापस लाओ।
2: ओके मैडम।
3: सारा।
0: वाल्टर,

0: तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं डाला कि तुम आ रहे हो?
1: वाह, ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। पिछले हफ्ते ही मैं यहाँ आ गया था, लेकिन जब तुम्हारे कमरे में गया तो पता चला कि तुमने बहुत पहले ही वो जगह छोड़ दी है। बस तभी से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ।
0: लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही खत डाल दिया था और उसमें नया पता भी लिख दिया था।
1: नहीं, ऐसा कोई खत मुझे तो नहीं मिला।
0: अच्छा, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे?
1: असल में मैं अभी तुम्हारे वाले होटल में खाना खाने गया। वहाँ जब मैं मेनू देख रहा था तो आलू पनीर के बाद वाली सब्जी देखकर चौंक उठा। बस फौरन मैनेजर से तुम्हारे बारे में पूछताछ की, उसने तुम्हारा पता दिया और मैं यहाँ।
0: हाँ, मुझे याद है कि उसके बाद तुम्हारी मनपसंद सब्जी का नाम था।
1: साथ ही मुझे ये भी मालूम था कि तुम्हारे टाइपराइटर का वह अक्षर कुछ आड़ा टाइप होता है।
0: लेकिन उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी में वह अक्षर कहाँ से आया?
1: लेकिन सारा डियर, तुमने जो सब्जी टाइप की है उसे जरा पढ़ो तो।
0: क्यों, क्या टाइप किया है? देखूं, उबले हुए अंडों के साथ प्रिय वाल्टर। असल में मैं उस वक्त तुम्हारे बारे में सोच रही थी।
2: मेनू कार्ड हवा महल में आज आप सुन रहे थे ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एलाकार्ड का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण। नाट्य रूपांतरकार थे मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं श्रेया घोषाल और टूची रैना की आवाजों से। फिल्म का नाम है शॉर्ट इन द सिटी, संगीत सचिन जिगर का, बोल समीर के।

रंग दे बसंती। अब सुनिए इस फिल्म का गीत, मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाज में। धुन बनाई है ए आर रहमान ने, बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिंग इज किंग, अब सुनिए इस फिल्म का गीत राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीतकार मयूरपुरी, संगीतकार प्रीतम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपके

0: इस सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती
0: है। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश डेली सिक्स फिल्म से, जिसे आवाज दे रहे हैं मोहित चौहान। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है AR रहमान ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेयर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की दो दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार सातवीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे

0: के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 213,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के

0: अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है सुबोध मिश्र।
4: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
2: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया।

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सबसे पहले सुनिए येसुदास की आवाज में सुनैना फिल्म का गीत, संगीत रविंद्र जैन का।

अभी आपने सुनैना फिल्म में यशोदास को सुना। अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में प्यासा सावन फिल्म से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है संतोष आनंद ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगली पेशकश अनुरोध फिल्म से आवाज किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

मुकद्दर का सिकंदर। अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों को। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। दीजिए इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।
1: ये कौन है? कबाब में हड्डी।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
2: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया।
3: ए देवदास, तुम कहां चले? घबराने की क्या बात है?
4: बैठो बैठो बैठो।
3: हाँ तो शुरू हो जाओ उस्ताद।

0: है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थे। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
1: देखते हुए रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
2: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दी।
1: क्या काम करते हो?
2: बेकार।
1: नौकरी चाहते हो?
2: मुझे नौकरी मिलेगी।
1: इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
0: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थीं। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थीं। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की, इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आप।

0: मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ। जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सैलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
2: आपका आइडिया?
1: ऑफ कोर्स।
2: टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज।
1: पास।
2: क्या मैं देख सकता हूँ?
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
2: कौन शर्मा?
1: अरे भाई, वो तुम्हारे DTS।
2: आपका मतलब वर्मा जी से है?
1: वर्मा जी, वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
2: 125 रुपए।
1: 125 रुपए। और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
2: 50 रुपए।
1: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं। और दिन रात बैल की तरह से काम करते हो। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
2: रामप्रसाद।
1: रामप्रसाद, मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: सन 1954 में HS रवेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: भाई कलकत्ता हमें राज नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पे जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हो?
1: ये भी कुछ तय नहीं किया।
0: मकसद?
1: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
2: तुम रहे वही देवदा। अच्छा ठहरो,
0: इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किए जाए। लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला लो।
1: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
2: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
1: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
0: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा, ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
1: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
0: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
3: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है।

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास, अरे चुनिंदा हो तुम, ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबर है?
2: खबर बस यही है कि जिंदा है। तुम यहाँ कैसे?

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आज ही इस घर में हो क्या रहा? तुम बैठो, मैं भी आता।
2: ये क्या गाने खुशी हो रही तुम लोग?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
1: तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
1: आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी खाएंगे, बताओ ना।
1: हाँ, डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो। क्या हुआ?
3: सॉरी।
1: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
3: हाँ और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
1: अच्छा,
3: मुझे आशा ने बताया।
0: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म

0: सन 1960 बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे काम के लिए गया था मन।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्हें ने कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया की नौकरी कर दी और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देख कर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
2: डर लगने लगता है क्यों माँ?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गांव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है।
2: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुझे तमाशा क्या क्या होता है।
0: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी।

0: कहता है।
1: ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मोतीलाल पर। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चाय गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

0: प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्यार की पहली मुलाकात और उसका पहला एहसास जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभवों में से एक होता है। वो पहली नजर, किसी को चुपके से देखने की वो आदत, नजरें चुराकर बार बार देखने का वो मीठा सा एहसास, न जाने कैसा जादू होता है उस पहली नजर में, है ना?
1: उनकी पहली नजर क्या असर कर गई।

पहले प्यार की यादें और इसका खुमार जिंदगी भर जहन में ताजा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल देता है।

ये प्यार पहली नजर में प्यार का वो जादुई एहसास क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना संवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजानी सी घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया रहता है ये मन।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी, बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच लेता है।

प्रेम के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

वो पहला प्यार जो अब आपका संसार बन चुका होता है, इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह पाते।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है. उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके.
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी.
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है. गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है.
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले.
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है.
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खोला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेयर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता की सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्टा के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।